0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, रियलिटी सच्ची रॉयल्टी है। आधुनिक जगत में क्या होता है कि महंगे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगा खान पान और बड़े बड़े महंगे घरों में रहने वाले लोग जो होते हैं वही समझते हैं, उनके मन में यही होता है कि हम रॉयल बन गए। अपने आप को रॉयल बनाने और दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं आजकल, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की सोचते हैं। कभी कभी तो इंसान इसके लिए भी अपने नैतिक मूल्यों के साथ भी समझौता कर बैठते हैं। इंसान सोचता है कि जिसके पास सारी सुख और सारी भौतिक सुविधाएं हैं वही रॉयल हो सकता है, उसी का समाज सबसे अधिक आदर सम्मान करता है। लेकिन सच्ची रॉयल्टी यह नहीं है। विचार कीजिए, कोई व्यक्ति इज्जत पाने के लिए, स्वयं को रॉयल दिखाने के लिए, अधिक धन कमाने की लालसा में गलत मार्ग पर चलता है, किसी को दुख देता है, व्यापार में किसी को धोखा देकर आगे जाने की कोशिश करता है। यदि उसके पास अथाह धन मतलब आ भी गया हो और उसके कारण समाज में ऊंचे व्यक्ति का दर्जा मिल भी गया हो, तो भी वह खुद की दृष्टि में कभी रॉयल नहीं बन सकता। बंद कमरे में वो व्यक्ति कभी खुद से नजर नहीं मिला सकता, अंदर आत्मा ने उसको संतुष्टता का अनुभव नहीं होगा। नैतिक मूल्यों की बलि देकर कोई भी यदि रॉयल बनने या दिखने का प्रयास करता है तो वह वास्तविक रॉयल्टी नहीं है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए ये सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हम चर्चा कर रहे थे रियलिटी ही सच्ची रॉयल्टी है, इसके विपरीत क्या होता है कि सादा जीवन और उच्च विचार। जो होता है रियलिटी, वो रियलिटी ही सच्ची रॉयल्टी है। रियलिटी अर्थात सच्चाई। नैतिक मूल्यों में जो होता है मर्यादा में रहकर कर्म करना ही रियलिटी है। मर्यादा से बाहर रहकर किए गए कर्म आज नहीं तो कल दुख और पश्चाताप में बदल जाते हैं। व्यक्ति जो है स्वयं को वो दिखाने का प्रयास करता है जो वो है नहीं। कहते हैं कि मतलब वो जो भी सुखी होना इतना मुश्किल नहीं है जो जितना कि सुखी दिखना। एक कहावत है कि सदा ही सादा जो जीवन होता है और उच्च विचार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। वास्तव में जो महान और रॉयल होते हैं वे जो है वो सादगी को अपनाते हैं, अपने सादे जीवन और ऊंचे विचारों से समाज में प्रतिष्ठा बनाते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, गुण धारण कर हर कर्म करना है। सच्ची रॉयल्टी हमारी रियलिटी अर्थात सत्यता अथवा वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है, स्वयं को, स्वयं के गुणों की, स्वयं के कर्तव्यों की। हर कर्म के तीन चरण होते हैं। पहला होता है संकल्प करना, दूसरा है उस कर्म के अच्छे बुरे परिणाम के लिए निर्णय करना, तीसरा चरण में हम उस कर्म को अंजाम देते हैं। यदि हमें रॉयल बनना है तो वह हर कर्म जो है वो पहले चरण से ही श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। और रियल अर्थात जो वास्तविक गुण है आत्मा के, उसको धारण करके उसके अनुसार हर कर्म करना पड़ेगा। आत्मा के मूल गुण जो स्वयं परमात्मा ने बताए हैं वे है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। यदि इन गुणों को धारण करके इनके अनुसार हम कर्म करें, अपना जीवन भी ऐसा ही बनाए, तो हम रॉयल बन जाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सरल व्यक्ति आडंबर से दूर होता है। अपने मन में हम अपनी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी छवि, हाँ जो अन्य व्यक्ति है उसकी एक ऐसी छवि बनाए कि जिसका स्वभाव बिल्कुल शांत है, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान अनुसार जीवन बिताता है, हाँ प्रेम भाव से सबको सुख देता है, किसी के कठिन समय में हिम्मत, शक्ति और सहयोग देता है, अपना हर संबंध पवित्रता से निभाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को रॉयल दिखने के लिए धन वैभव की आवश्यकता होगी? नहीं, उसका जो व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। रॉयल बनने के लिए उपरोक्त गुणों के साथ साथ एक और गुण है सरलता का। जो व्यक्ति के रहन सहन, बोल, चेहरे और चलन, जीवन यापन के तरीके को और भी महान बनाता है, सरल व्यक्ति आडंबर से बहुत दूर होता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत करती हूँ आपको इस कार्यक्रम में। और आज जो हम चर्चा कर रहे थे, आज का हमारा विषय है रियलिटी सच्ची रॉयल्टी है। तो आइए आगे की चर्चा हम जारी रखते हैं। एक यहाँ पर क्या है, महंगी वस्तु नहीं बल्कि हमें क्या करना है, हाँ, महंगे विचार होने चाहिए। रॉयल जो व्यक्ति होता है, बाहर से अपने को बड़ा और महान दिखाने की जो होता है कोशिश नहीं करेगा, विचारों और व्यवहार से रॉयल होता है वो। आत्मा के सर्व गुणों को जब व्यक्ति अपनाता है तो वह शांति का दूत बन जाता है, भले ही उसके पास स्थूल धन ना हो, हाँ, ना भी हो, पर उसका सरल और शांत स्वभाव दिव्यता की झलक दिखाता है। अगर शाही सुख सुविधाएं ना भी हो, हाँ, तो भी वो व्यक्ति जो है संतुष्ट रहता है। लेकिन जो भौतिक सुख सुविधाओं की संपत्ति को ही रॉयल्टी समझते हैं, उनके मन में सदा और अधिक धन अर्जित करने की कामना रहती है। ऐसे कुछ व्यक्ति अपने से कम संपन्न लोगों से हीनता का व्यवहार रखते हैं, लेकिन जो रियल में ही रॉयल व्यक्ति होता है, उसका व्यवहार छोटे बड़े सबके साथ सभ्यतापूर्ण होता है। उनके हर कर्म में सभ्यता और सत्यता दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति के मन में सबके प्रति रहम भाव और प्रेम का भाव होता है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए उदाहरण मूर्त होगा। दुनिया में जो शाही और नवाब लोग हैं, वे महंगी वस्तुओं के बहुत शौकीन होते हैं, किंतु परमात्मा हमें बताते हैं कि महंगी वस्तु नहीं बल्कि महंगे विचारों के शौकीन बनो, यही तुम्हारी रियलिटी रॉयल्टी है। हाँ, जो रियल रॉयल्टी है वो हमें क्या करता है, हमें ऐसी रॉयल्टी धारण करनी करके सबके लिए सैंपल बनना है। तो इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को मैनेज करने का जब पूरा तरीका हमने समझा, उसमें जब रिश्तों को देखा तो ये बात समझ में आई कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जब रिश्तों की बात होती है तो उसमें दो लोग तीन लोग शामिल होते हैं और उन पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जब अध्यात्म या अगर हम देखें स्पिरिचुअलिटी, उसको समझते हुए, खुद को समझते हुए रिश्तों को देखा तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुई और पावर हमारे हाथ में आ गई कि हम हर रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। इन्हीं रिश्तों को कुछ और तलाशते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछले कुछ एपिसोड्स को देखते हैं, कुछ कड़ियों में देखें, रिश्तों को हमने एक नई नजर से देखा है कि अब हर चीज मेरे पर्सपेक्टिव से हो गई। यहाँ अगर मैं कहूँ कि पहले मेरा नाम आते ही मुझे लगता था मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन जब हर चीज को ठीक करने की पावर मेरे पास आ गई तो फिर मैं कर सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ।
1: एब्सोल्युटली। और उसके लिए हमने देखा कुछ एक बातों पर जिस पर ध्यान रखना है। फर्स्ट वॉज कि रिलेशनशिप को हम अपनी कॉन्शियसनेस में पहले क्रिएट करते हैं, तो ध्यान रखें कि दूसरे को हम किस दृष्टिकोण से अपने कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने याद रखना है कि नो वन एल्स कैन हर्ट मी,
0: I hurt myself.
1: You can say what you want, but I use what you say to hurt myself. No one can hurt me. I hurt myself. तो हम खुद ही अपने दर्द को क्रिएट करते हैं। कोई और मुझे दर्द नहीं देता है, कोई और धोखा दे सकता है, लेकिन दर्द फिर भी मेरी क्रिएशन है। तो जैसे ही मुझे वो रियलाइज होता तो उसको फिनिश करना आसान हो जाता है। और तीसरा हमने देखा कि सारा दिन में जो हम लेबल्स लोगों को लगा देते हैं, तो लेबल्स लगाकर फिर हम उसमें बहुत सारे बैगेजेस भरते जाते हैं कि वो ऐसे भी हैं, वो ऐसे भी हैं, तो उससे हमारे मन में गिल्ट, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, यू नो, ये सारे बैगेजेस भरते जाते, कहीं ना कहीं वो हमारी इमोशनल हेल्थ और फिर अगर जल्दी नहीं फिनिश किया गया तो फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है। तो हर थोड़ी देर के बाद रुक के या कम से कम रात को तो जरूर एक बार अपने सारे बैगेज को हल्का करें। तो नेक्स्ट टाइम जब उनको मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे,
0: क्लीन हम होंगे या फिर मैंने क्रिएट किया हुआ होगा। हमने कहा था कि घंटी बजे उससे पहले ही हम एक इमेज क्रिएट कर चुके होंगे कि जैसी इमेज मैं चाहता हूँ, हाउ आई वॉन्ट टू परसीव हिम एक्चुअली।
1: एब्सोल्युटली। एंड उसमें सोल कॉन्शियस, क्योंकि वो जो है जैसे हैं उनको अगर राइट परसीव करना है तो वो तो एक आत्मा है। अगर लेबल्स के आधार से परसीव करना है तो वो भी सत्यता नहीं है। सत्यता तो ये है कि वो एक आत्मा है एंड अ प्योर सोल। सो इफ आई वांट टू हैव द ट्रू परस्पेक्टिव देन इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। और एक बार सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर रिश्ता बना तो फिर उसमें तो कोई दर्द की मार्जिन ही नहीं। लेकिन ये सारे जो हमारे औरों के साथ रिश्ते हैं, इनको निभाना, इनको स्मूथ करना, इसमें एनर्जी फ्लो क्रिएट करने के लिए सबसे पहला रिश्ता किसके साथ क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप के साथ। आई विद माई सेल्फ। आज मेरा सारा अटेंशन इन रिश्तों पर है, बट आई एम नॉट क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, सब कुछ इज फॉर समवन एल्स, बट डू आई लव माई सेल्फ? क्या मैं अपने ऊपर विश्वास करती हूँ, अपने से प्यार करती हूँ? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक वो रिश्ता मेरे से नहीं जुड़ा तो औरों के साथ जुड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अपने आप से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
0: हाँ, अगेन यू नो, अपने आप से रिश्ता इन द सेंस, अगर मैं कॉन्शियसनेस पे भी जाती हूँ, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, आई द सोल क्रिएट्स अ रिलेशनशिप विद आई द बॉडी?
1: नो, दिस इज नॉट आई द बॉडी। दिस इज तो माई बॉडी।
0: आई द सोल, आई वो चैतन्य शक्ति, मैं वो चैतन्य शक्ति, किसके साथ रिश्ता क्रिएट कर, जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ?
1: नहीं, रोल के साथ भी नहीं रिश्ता। रिश्ता तो अपने आप के साथ, रिश्ता रोल के साथ नहीं, शरीर के साथ नहीं, रिश्ता अपने आप के साथ। वो मतलब क्या, आप देखो आत्मा के अंदर ये एक ताकत है दैट इट कैन रिफ्लेक्ट ऑन द सेल्फ। हमने पहले भी देखा कि व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्रिएट अ रिलेशनशिप विद यू, वेयर हियर। सिमिलरली व्हेन आई थिंक अबाउट माई सेल्फ
0: I create an image of myself. Okay.
1: I will create a relationship with myself. Self हम यहाँ बोल रहे हैं वो चैतन्य शक्ति को. तो when I the self reflect on myself, I am a pure soul. This is giving vibrations of purity to myself. You are a pure soul. This is giving vibrations of purity to you. I love you is giving vibrations of love to you. I am a loveful soul is giving vibrations of love to myself. तो इसलिए जब तक मैंने अपने आप को वो एनर्जी नहीं दी तो वो एनर्जी मैं औरों को दे पाऊं वो पॉसिबल नहीं
0: तो होगा. अच्छा ये जो मनन करना कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया
1: कुछ भी अपने बारे में कि ये जो दर्द हुआ ये क्यों हुआ, ये दर्द के जिम्मेवार कौन था, ये सारा जो अपने आप के साथ जो मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकती हूँ कि आपको दर्द हुआ क्यों हुआ, आपके दर्द का कारण कौन, चलो कोई बात नहीं ये करने से ये ठीक हो जाएगा. सो दिस इज ऑल कम्युनिकेशन विद यू. तो जब अपने आप से रिश्ता जुड़ेगा फिर औरों के रिश्ते तो बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप के साथ रिश्ता जोड़ना इज मेडिटेशन. What is meditation? Meditation first stage क्या है? Self awareness. Meditation सबसे पहले, क्योंकि हम meditation ये शब्द बार बार कहते आए हैं और हमने बार बार कहा कि हर एक घंटे के बाद meditation, रोज सुबह उठकर meditation या रात को सोने से पहले meditation. तो meditation का first result जो मुझे मिलेगा वो होगा self awareness. और self awareness ये कि मेरी कौन सी thoughts and feelings wrong है, कौन सी राइट है मेरे लिए या वेरी इम्पोर्टेंट, कौन सी रॉन्ग है कौन सी राइट है. लेकिन उनके लिए देखना तो पड़ेगा ना. इनफैक्ट सेल्फ अवेयरनेस मुझे ये रियलाइजेशन दिलाती है कि ये थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट भी कौन कर रहा था.
0: मैं कर रही थी
1: आज दिन तक, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं थी तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ. तो अपने आप से रिश्ता क्या था, मुझे ये ही नहीं पता था कि मैं खुद ही यहाँ बैठ कर क्या क्या क्रिएट कर रहा.
0: इनफैक्ट मुझे अभी तक यही पता था अपने साथ ये रिश्ता, मुझे ये चाहिए, मुझे ये तकलीफ दे रहा है, मुझे वो व्यक्ति हर्ट कर रहा है, मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं.
1: क्योंकि मेरा रिश्ता उन सब के साथ था तो मैं उनको देख सकती थी कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं और वो क्या क्या दे रहे हैं. मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ वो देखने के लिए तो मुझे अपने तरफ देखना शुरू करना पड़ेगा. तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब यू नो गोइंग थ्रू द डे विद दिस अवेयरनेस कि ये सारी जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ. ऑफिस में बहुत बड़ा केओस हो जाए, काम नहीं हो रहा, आई एम अवेयर कि प्रोजेक्ट खराब हो रहा है, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, मेरा भी कंप्यूटर क्रैश हो गया, आई एम अवेयर ऑफ ऑल दिस. आई एम आई अवेयर कि ये सारी सिचुएशन में यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है. ये ध्यान रखना. मुझे ये अवेयरनेस है कि कंप्यूटर को क्या हो गया, मुझे ये अवेयरनेस है कि लोगों को क्या हो गया, मुझे ये अवेयरनेस है कि यहाँ क्या हो रहा है. तो बेसिकली उस पर ध्यान देना कि यहाँ क्या हो रहा है. सो जब सारा दिन यहाँ देखना शुरू कर देंगे तो अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी. एंड फिर उनमें से कौन सी थॉट्स और फीलिंग्स मेरे लिए हेल्दी है और कौन सी मेरे लिए ही डैमेजिंग है. क्योंकि हमने कितनी बार देखा कि अपना दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं थी तो क्रिएट करते ही जा रहे थे. लेकिन जब अब ये जागृता आ जाएगी कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फिर फिनिश करने का प्रोसेस अपने आप आ जाएगा. अवेयरनेस होती है तब हमें रियलाइज होता है कि मैं लेबल्स नहीं हूँ, मैं रोल्स भी नहीं हूँ, मैं रिलेशनशिप्स भी नहीं हूँ, मैं हूँ कौन.
0: मैं वो चैतन्य शक्ति.
1: मैं वो चैतन्य शक्ति.
0: और जहाँ मैं पावरफुल सोल कहता हूँ ना, समवेयर इट एक्चुअली एम्पावर्स यू.
1: एब्सोल्युटली.
0: यू नो लाइक इट्स एंड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ रियलिटी.
1: एब्सोल्युटली.
0: व्हेन यू सी इट हैपनिंग, एक एक चीज को जब आप जीतना शुरू करते हैं, इट गिव्स यू दैट रियल इमेंस हैप्पीनेस.
1: लेकिन जीतने वाले को ये पहले पता होना चाहिए ना कि मेरे पास शक्ति कौन सी है. See, the whole process is not going like this, लेकिन it's going like this. तो मुझे स्मृति आई, I am a powerful soul. मुझे स्मृति आई कि हर thought, हर feeling मैं create कर रहा हूँ. Then मैं सारा दिन कल ऑफिस में उस awareness से साथ रहा. मुझे स्मृति आई कि भले आप कुछ भी कहें, मेरा दर्द मैं create कर रहा हूँ. अब मैं उस awareness में चल रही हूँ सारा दिन ऑफिस में. So what will happen to the relationships? वो तो अपने आप ठीक होते जाएंगे, क्योंकि मुझे अवेयरनेस है कि सारी एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रही है. तो मुझे ध्यान किसका रखना है? अपना रखना है. तो मेडिटेशन में जो सबसे पहला हमें बेनिफिट मिलता है ये कि मुझे कॉन्स्टेंटली एक इनर कनेक्शन, जो हम आज दिन तक सुनते आए थे कि अपने आप को देखना, अपने आप को खोजना, लेकिन आई डोंट थिंक वी वर वेरी श्योर व्हाट वी वर लुकिंग फॉर.
0: अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी गोइंग इन मींस लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड.
1: देखना मतलब सिर्फ धीरे धीरे ये संकल्पों को देखना, फीलिंग्स को देखना और इस स्मृति से देखना कि हम क्रिएट कर रहे हैं. शुरू में कई बार ये हो सकता है कि हम सोचे नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा, ये तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमने देखा नहीं है. अभी सिर्फ देखते जाए, सिचुएशन आने दो, सिचुएशन आएगी, आप अपने रिस्पॉन्स को देखो और फिर देखो ये कहाँ से शुरू हुआ था रिस्पॉन्स. इट स्टार्टेड विद अ थॉट. प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब लोग अपसेट हो रहे हैं, आस्क योर सेल्फ आई हैव अ रिस्पॉन्स. अगर मैं डिस्टर्ब हो गई तो आस्क योर सेल्फ ये किसने क्रिएट किया. दिस इज अवेयरनेस. फिर धीरे धीरे रियलाइज होगा मैं ही तो डिस्टर्ब हुई थी, नेक्स्ट टाइम लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. थर्ड टाइम फोर्थ टाइम करते करते मुझे रियलाइज हो जाएगा कि कंट्रोल का स्विच कहाँ है, यहाँ है, बाहर नहीं है. पहले हम वेट कर रहे थे बाहर ठीक हो
0: तो मैं ठीक हो जाऊंगी,
1: मैं ठीक हो जाऊंगा.
0: वेरी ट्रू. ये सिचुएशन थोड़ी हैंडल हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा.
1: अगर कोई बहुत डिस्टर्ब होता है ना ऐसे वायुमंडल में, बच्चे मान नहीं रहे या काम ठीक से नहीं ऑफिस में हो रहा, उनको आप बोलो अच्छा दो मिनट आप तो बैठो सब ठीक हो जाएगा. बोले पहले सब ठीक तो हो जाने दो
0: तभी मैं
1: बैठ जाऊँ. सो वी आर लुकिंग एट इट ऑलवेज द अदर वे अराउंड. तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आई एम द मास्टर ऑफ द सिचुएशन. मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना है, परिस्थिति अपने आप हो जाएगी. तो मेडिटेशन का ये सबसे पहला हमें बेनिफिट मिलता. एंड सेकेंड जो बहुत इम्पोर्टेंट हमें बेनिफिट मिलता दैट इज सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल,
0: अब मैं रिएक्ट नहीं करूँगा.
1: देखो आज दिन तक कंट्रोल शब्द जैसे ही हम सुनते थे द इमेज दैट कम्स इज लाइक होल्डिंग ऑन टू समथिंग और ओवर पावरिंग समथिंग या किसी चीज को बड़ा टाइट पकड़ कर रखना. लेकिन जहां अंदर की बात आती है, इमोशंस और थॉट्स और फीलिंग्स की बात आती, वहां कंट्रोल मतलब एक्चुअली क्या? टू लेट गो. टू लेट गो. इफ आई वांट कि मेरे मन की स्थिति इन कंट्रोल चले
0: तो जाने देना.
1: तो जितने डैमेजिंग थॉट्स है, हर्ट वाली थॉट्स है, लेट देम गो. थॉट्स को हम रोक नहीं सकते, सप्रेस नहीं कर सकते, चैनलाइज कर सकते हैं. और जैसे ही हम इस अवेयरनेस से चलते हैं कि आई हैव टू लेट गो, ये थॉट, ये बैगेज मैंने पकड़ा है, लेट गो लेट गो, तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता जाता है. तीसरी बात जो बहुत अच्छा हमें बेनिफिट करती है वो होता है कम्युनिकेशन पर. हमारे जो कम्युनिकेशन है, आज दिन तक हम समझते थे कम्युनिकेशन इज एट वर्ड लेवल, कि हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो एक दूसरे के लिए करते हैं वो कम्युनिकेशन है. अब हमें समझ में आता कम्युनिकेशन वाइब्रेशंस के आधार से होता है कि मैं एनर्जी जो आपको ट्रांसमिट करती हूँ. अब मुझे अपने वर्ड्स पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. पहले क्या
0: करना ही पड़ेगा. वेरी ट्रू.
1: कई बार क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं और बोलते कुछ और हैं तो हमें बहुत अटेंशन रखना पड़ता है. सपोज आई डोंट लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग राइट नाउ बाय चांस, बट आई एम सेइंग आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये तो आपके ऊपर कलर बहुत अच्छा लग रहा है. तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, कि मेरी थॉट कुछ और है, अब मैं उसको कन्वर्ट करके बोल रही हूँ.
0: और फिर उसमें डर रहता है कि कहीं निकल ही ना जाए कि अच्छा ये रंग जो है ना कभी भी निकल सकती है वो.
1: अब कम्युनिकेशन फिर कैसा हो गया, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा और फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक तनाव क्रिएट होता है क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है. अब इसी में अगर कभी गुस्सा आ गया मुझे गलती से तो वो कन्वर्टर काम करना
0: बंद कर देगा और मैं कहूंगी आप तो गंदे लग रहे थे, मैंने फिर भी कहा कि आप अच्छे लग रहे थे,
1: तो वो सारा ऐसे का ऐसे बाहर निकलने लगता है और फिर हम कहते हैं मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया. क्यों? क्योंकि मेरा कन्वर्टर बीच का काम करना बंद हो गया था. तो कम्युनिकेशन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है. वी आर सेइंग के लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं, या कई बार हम कहते मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूँ. व्हाई, वेयर इज द प्रॉब्लम? यहाँ क्लैरिटी नहीं है. यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट डू आई थिंक एंड व्हाट डू आई फील. जो यहाँ क्लियर होगा उसको यहाँ एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लगेगा. तो मेडिटेशन से क्योंकि हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आती जाती है, तो फिर वर्ड्स में ऑटोमेटिकली आती जाती है.
0: एक्चुअली हमें भी तो कभी कभी नहीं पता होता. यस, मेडिटेशन रियली हेल्प्स इन दैट. हमें पता ही नहीं होता कि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं. हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता. हम सोच तो रहे हैं कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमें बहुत सारी चीजें बुरी लग रही होती हैं.
1: तो इसलिए अंदर से अगर बुरी लग रहे हैं, सोच रहे हैं नहीं लेकिन अच्छा है, बोलना चाहते हैं बहुत बहुत अच्छा है, तो बाहर रिजल्ट क्या निकल
0: बहुत
1: कर
0: बड़ी
1: आएगा?
0: कंफ्यूजन. यस,
1: एंड फिर सामने वाले को आप भले बहुत बहुत अच्छा बोलो, लेकिन उनको फिर भी वाइब्रेशंस कौन से आ जाएंगे? नहीं, समथिंग इज नॉट कंफर्टेबल. और फिर हम कहेंगे मैंने इतना अच्छी तरह से बोला, इतना सब कुछ किया, फिर भी वो तो मेरे से खुश नहीं है, क्योंकि मैंने वाइब्रेशन कौन सी ट्रांसमिट की. तो मेडिटेशन क्योंकि वाइब्रेशन लेवल पर हमें वर्क करने में मदद करता है, तो कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है. बहुत बार भाई बहने जब ब्रह्मा कुमारीज में आश्रम में आते हैं या माउंट आबू में आते हैं, तो कहते हैं यहाँ सारे भाई बहने ऐसे ही बात करते हैं क्या? दे आर ऑलवेज सॉफ्ट एंड वेरी स्लो एंड यू नो हाउ कम दे डू इट. दे नीड टू नो दैट नो वन हैज बीन ट्रेन्ड हाउ टू डू इट. मेनी पीपल ऑल्सो आस्क मी, आपको ट्रेनिंग मिला ऐसे कैसे बोलना है, इतना धीरे आप लोग सब बहने कैसे बोलते हो? नो, नो वन हियर हैज वर्कड एट द लेवल ऑफ द वर्ड्स, लेकिन एवरी वन इज वर्किंग एट द लेवल ऑफ द थॉट्स. वो वर्ड्स तो अपने आप हो जाते हैं. आजकल बहुत एम्फेसिस है कम्युनिकेशन स्किल्स पर, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर, आपकी जॉब प्रोफाइल में, बिजनेस में, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन, सब कुछ कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हम सब उसको वर्ड लेवल पर देख रहे हैं. और हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल. थिंकिंग में जब तक
0: कोई नहीं
1: क्लैरिटी नहीं आएगी,
0: करता.
1: थिंकिंग में जब तक फोकस नहीं आएगा, थिंकिंग पर जब तक अटेंशन नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है. इट विल नॉट हैपन. वो होगा भी अगर आप ट्रेन करके उसको करेंगे भी, इट्स आर्टिफिशियल, क्योंकि वाइब्रेशन तो फिर भी कुछ और ही है. लेकिन अगर उसको रूट लेवल पर, थॉट लेवल पर कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, फोकस कर देंगे, यू नो क्लियर कर लेंगे और स्लो डाउन कर देंगे थोड़ा.
0: एक्चुअली यू नो, जहाँ हमारा थिंकिंग पे अवेयरनेस भी आ जाती है, हम कभी भी कुछ नहीं ऐसा बोल रहे होते जो हम नहीं बोलना चाहते.
1: एब्सोल्युटली,
0: हमारा ये कंट्रोल हो जाता है अपने ऊपर.
1: दैट्स व्हाई वी सेड सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, कम्युनिकेशन. सी, ऑल थ्री आर फॉलिंग इनटू प्लेस. आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल ही नहीं सकती अब, क्योंकि एक तो आप थॉट्स, अभी क्या हुआ था, वो कबर्ड बंद था, बहुत सारी थॉट्स वहां पे थी, वो कब खुल जाता था और बाहर निकल जाता था हमें ही नहीं पता चलता था. लेकिन अब वो अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट ही नहीं होने वाले हैं, तो बाहर निकलने का क्वेश्चन ही नहीं उठता. यहाँ तक कि भी अगर आपको किसी को डिसिप्लिन करना है, बच्चों को करना है, ऑफिस में अपने स्टाफ को करना है, क्योंकि एक टीम है, तो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको करेक्टिव मेजर्स तो देने ही पड़ते हैं. लेकिन सोच समझ कर अगर बोला गया होगा एक एक शब्द और बिना रिएक्ट किए बोला गया होगा, देन इट्स गोइंग विद द राइट एनर्जी. हम जो एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते या अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि मेरे को आपकी ये पर्टिकुलर बात नहीं ठीक लग रही है, इट कैन बी ट्रू, बट आई हैव टू डू इट व्हेन आई एम स्टेबल एंड व्हेन आल्सो यू आर स्टेबल.
0: यस, यू नो, एंड इट हैज हैपेंड. यू नो, मैंने इसको पूरा ट्राई करके देखा कि डेफर कर दो. मैंने एक घंटा, आधा घंटा डेफर किया. उस आधे घंटे में मैं कूल ऑफ हो गई. आई कुड सी द सिचुएशन.
1: एब्सोल्युटली सिंपल है. आप देखो, अगर मैं यहाँ से चलकर आ रही हूँ और मुझे चलते चलते यहाँ चोट लग जाए और मेरा पैर को दर्द होने लगे, अब आप क्या करेंगे तुरंत?
0: हाँ, मैं आपको सहलाऊंगी.
1: पहले आप मुझे उठाएंगे, फिर आप यहाँ ठीक करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी, दर्द करूंगी, फिर आप मुझे समझाएंगे. आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि जब मुझे यहाँ चोट लगे है,
0: बोलती जाऊंगी आपको
1: ऐसे थोड़ी चलना चाहिए था, ये कोई चलने का तरीका है? उससे क्या होगा, अगर आप मुझे बेस्ट मैसेज भी दे रहे हैं, मेरे लिए मेरे फायदे की भी बात कर रहे हैं, मैं सुनने की हालत में कहूं, मैं तो दर्द को देख रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है कि कोई मुझे उठाए, उस समय आप बोलो चलने का तरीका ये था, आई हैव नॉट हर्ड यू. एंड मोस्टली क्या होता, जब सामने वाला दर्द में है तब हम उसको सारा मैसेज दे रहे होते हैं कि राइट तरीका क्या है, उस टाइम उसने शायद सुना ही नहीं.
0: इट गोज ऑन द डेफ इयर्स एक्चुअली.
1: एंड जब वो ठीक हो जाता है तब नहीं बताते हैं.
0: और तब क्या है, तब तक हम भी तो दर्द में ही होते हैं. जब हमारा कोई नुकसान हुआ तो तो तब हम जब समझा रहे होते हैं बेसिकली हम खुद दर्द में होते हैं.
1: यस, सो व्हाट विल हैपन. तो अब उसमें क्या हुआ, मैं गिरी तो मैं दर्द में, आपको गुस्सा आया मुझे ऐसे देखकर तो आप दर्द में, और इस दर्द में, मुझे दर्द में आप समझाते हैं कि चलने का तरीका क्या है. इट वोंट वर्क. दिस हैपेंस इन द ऑफिस. अगर किसी से गलती हो जाती है, आप टीम लीडर हैं, आई हैव टू अंडरस्टैंड एज अ टीम लीडर कि सामने वाला ऑलरेडी दर्द में है, उसको पता है कि गलती हो गई है, गिल्ट है, ऑलरेडी स्केर्ड, फियर, एवरीथिंग उसमें हम, और उस समय उसको सारा डांटते हैं. लीडर, राइट कम्युनिकेशन स्किल, उस समय आप उसको एम्पावर करें, उसके कॉन्फिडेंस को जो बिल्कुल उस समय क्रैश हो गया है फिर से उधर लेकर आए, एंड देन व्हेन बोथ आर स्टेबल देन टॉक. पेरेंट एंड चाइल्ड, दिस इज हाउ इट हैज टू हैपन. आज बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आया है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं है या शायद वो फेल हो गया है, उस दिन डांटना जस्ट डजंट वर्क. वो तो ऑलरेडी इतने दर्द में है, एक दर्द में व्यक्ति को और दर्द देना,
0: क्योंकि हम दर्द में आए ना तो मैं किस पे निकालूं.
1: बट हाउ फेयर इज इट कि वो बच्चा अभी तो ऑलरेडी दर्द में है ना, उसने क्लास को फेस किया कि वो फेल हो गया, वो गिल्ट में है, वो हमें नहीं फेस कर पा रहा, वो तो अपने को भी नहीं फेस, उसमें उसको और डांटते हैं. जितने बच्चे आज दिन तक फेलियर के बाद सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं,
0: फियर
1: ऑफ फेसिंग द पेरेंट्स. हाउ मच फियर दिस इज डीप रूटेड. क्यों, वी आर कम्युनिकेटिंग इन अ स्टेट ऑफ पेन. सो वो कम्युनिकेशन कभी भी राइट रिजल्ट नहीं क्रिएट करेगी. तो मेडिटेशन से, क्योंकि माइंड में अवेयरनेस आ गई, कंट्रोल आ गया, तो कंट्रोल सिर्फ मन पर नहीं आया, फिर सारी कर्म इंद्रियों पर आ गया. तो मन पर कंट्रोल आया तो मुख पर भी तो कंट्रोल आ
0: और
1: गया.
0: वो कंट्रोल नहीं हुआ ना,
1: दैट्स अ नेचुरल थिंग ना,
0: अपने आप ही हो गया वो.
1: या, जैसे आपने कहा कि मैं उसको डेफर कर सकती हूँ, अगर पहले रियलाइजेशन नहीं था तो कोई बोले कि अभी नहीं, आप एक घंटे के बाद बोलो, तो नहीं.
0: ओ, कैसे एक घंटे तक, क्या मतलब क्या करेंगे फिर एक घंटे तक.
1: और वो रियलाइजेशन भी नहीं होता था, हमें लगता था अभी ही बोलना है, लेकिन दिस इज अवेयरनेस ही, दिस इज द जर्नी. अब अवेयरनेस है, हम कहते हैं मुझे पता है ये हो गया है, बट वील टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर. एंड वो जब फिर आप डायलॉग करोगे, वो एक आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, वो एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होगा, बिकॉज एनर्जी जो फ्लो कर रही होगी, that will be positive.
0: And then we'll be actually looking for reasons.
1: Absolutely.
0: Why that happened, you know? Because हम intelligently handle कर रहे होंगे.
1: Absolutely.
0: हम उस वक्त बर्सर्क होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या react कर रहे हैं.
1: तो लेट्स रिमेम्बर कि जब भी किसी से कोई गलती हो जाए, whether it's in office or at home, that's not the time to talk about it. Let everyone get okay. उस समय नहीं करने से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा. Just let everyone get okay. वो भी जिनसे हो गया है, एंड मैं भी जो हर्ट हो गया हूँ, मुझे अपने हर्ट को ठीक करना है, फिर हम उस पर कम्युनिकेट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा.
0: तो सिस्टर शिवानी, जिस तरह से हमने सेल्फ के साथ, रिश्ते के बाद की रिलेशनशिप अपने साथ, और उसमें जहाँ जब हमने समझा, तो मेडिटेशन एक्चुअली डजंट लुक लाइक मेडिटेशन, यू नो, इट्स अ सेल्फ टॉक बेसिकली. और वो जो रिश्ता है, तो हम थोड़ा सा अनुभव क्यों ना अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करें.
1: सुबह उठकर अपना दिन शुरू करने से पहले कुछ एक मिनट्स अपने साथ इस तरह से हम बैठ सकते हैं, एंड जस्ट गिव द राइट काइंड ऑफ थॉट टू माई सेल्फ. ना परिस्थिति के बारे में सोचना है, ना लोगों के बारे में सोचना है, ना अपने आप को उस परिस्थिति में देखना है, नॉट दैट काइंड ऑफ टॉक, वो तो सारा दिन ही चलती रहती है, बट द राइट काइंड ऑफ थॉट आई हैव टू गिव टू माई सेल्फ. लेट्स ट्राई इट राइट नाउ. अपने आप को देखें, इन रोल्स, रिलेशनशिप्स, लेबल्स, इन सब से परे, इन सब को निभाने वाला मैं, आई द एनर्जी विच इज मास्टर ऑफ दिस बॉडी, चैतन्य शक्ति, मन और बुद्धि की मालिक, कर्म इंद्रियों की भी मालिक, आई tiny star shining in the center of the forehead. अपने आप को विजुअलाइज करें कि यहां से बैठकर मैं इन कर्म इंद्रियों को और इस पूरे शरीर को चलाती हूं. मैं चलाने वाली शक्ति हूं. I am the creator of every thought and feeling. And today, I choose happiness. कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, मैं कैसे रहूंगी? Stable, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. I am a happy being. This is already my nature. अब मुझे आज सारा दिन में, अपने संबंधों में, इसे सिर्फ एक्सप्रेस करना है. इसे मांगना नहीं है, ढूंढना नहीं है, छीनना नहीं है. ये तो ऑलरेडी मैं हूं ही. आई एम अ हैप्पी बींग. वाइब्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस मुझ आत्मा से निकल कर चारों तरफ फैल रहे हैं. एंड टुडे आई जस्ट नीड टू टेक केयर कि इस स्थिति को रखते हुए मुझे हर संबंध और कर्म में आना है. ओम शांति.

हम चाहते। और जिस तरह से आज हमारे साथ के रिश्ते को ही आपने बताया, और कहीं ना कहीं जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे अपने ही थॉट्स स्लो डाउन होने लगते हैं, तो वो सब कुछ हमें करना नहीं होता जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अध्यात्म हमें ये सिखाता है जीवन जीने का सही तरीका ये है कि इंद्रियों पे कंट्रोल करें। आई थिंक इट स्टार्ट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली, वी बिकम पावरफुल, वी स्टार्ट रियली बिकमिंग पावरफुल। थैंक यू सो मच सर शिवानी आज की इस पूरी बातचीत के लिए। हम चलते हैं, कोई बात कोई सवाल आपके पास है हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-777-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। जिन रिश्तों को हमने समझा देखा उसमें एक महत्वपूर्ण रिश्ता अभी और है, और वो है परमात्मा के साथ रिश्ता। उसको भी साथ मिलकर खंगालेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्वत, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत। आप जानते हैं इन दिनों हम जीवन को एक नए अंदाज से देख रहे हैं। अभी तक मन पर ध्यान दिया था और सोचा था कि मेरे रिश्तों में फर्क आ रहा है, मेरे

0: प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो गई, मैं खुद अच्छा फील करने लग गया। लेकिन जब ये देखा कि यही शरीर पर भी कितना असर डाल रहा है, तो लगा कि इस पर काम करना ज्यादा जरूरी है। अब किया कैसे जाए, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम सीखकर लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं। आपको याद हो हमने बात की थी कि जो हम खा रहे हैं यानी कि जो अन्न है उसका मन पर कितना असर पड़ रहा है। इसीलिए सही खाना, डाइट एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन किस वाइब्रेशन के साथ, किस थॉट के साथ खाना और उसे बनाना, और साथ ही कई और एस्पेक्ट हमने लिए थे। आज इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आप दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक बार रिकैप लेते हैं हल्का सा, क्योंकि इतना अभी तक जहां खाने की बात आती है, डाइट की बात आती है, हेल्दी फूड की बात करते हैं, कई बार ऑर्गेनिक फूड की भी बात करते हैं, और कई बार फिर कहते हैं कि जंक फूड। तो हम सब इस बात से अवेयर हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं और इनका हमें बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हम तीनों ही खा रहे हैं। ये जो मन की बात थी उसका, और खासकर अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसके जो लाभ है हमारे जीवन में, उसको थोड़ा सा लेकर आते हैं।
1: जो बातों की हमने चर्चा की थी, एक तो खाने में जो वाइब्रेशंस हैं वो जितने अच्छे होंगे उतना हमें भी अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। दूसरी बात कि जो बनाने वाला व्यक्ति है उसकी मन की स्थिति कैसी है। अगर उसकी मन की स्थिति शांत है, पवित्र है, तो पवित्रता के वाइब्रेशन खाने में भी आएंगे, तो उस पर भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी जो बात थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड में हाई कोलेस्ट्रॉल है कि जो बहुत ही हार्मफुल है। मांसाहार में भल ज्यादा प्रोटीन है, परंतु ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, उल्टा ज्यादा प्रोटीन नुकसान कर सकता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो जॉइंट पेन्स होने लगे, मसल पेन होने लगे। तो हमें थोड़े से प्रोटीन की आवश्यकता है, और वेजिटेरियन डाइट में जो प्रोटीन वो बहुत अच्छा है। दालों में सोयाबीन का प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, इस बात को समझना चाहिए। साथ साथ यह भी बात कि हमारे शरीर की रचना ही वेजिटेरियन डाइट के लिए हुई है। हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, ऐसे जब हमारे यह शरीर ही वेजिटेरियन डाइट के लिए बना है तो हम नॉन वेज का उपयोग क्यों करें। और आप प्राणियों को देखो, जो वेजिटेरियन एनिमल है, जैसे कि हाथी मर जाएगा परंतु मांस नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा परंतु घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसके शरीर की रचना उसी तरह से हुई है। तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत
0: कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से या नेचुरल वे है उसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम निकले और हमने सिस्टम्स में गड़बड़ की है, तो हम
1: बीमार भी होने लगे,
0: हम वो सफर करें। इनफैक्ट ये जो आई स्टिल रिमेम्बर एक बात जो कही थी आपने कि जब उसे किल किया जा रहा है तो जो टॉक्सिक हार्मोन्स वो हम कंज्यूम कर रहे थे। डॉक्टर पटेल, एक और जो एस्पेक्ट जहां हमने टॉक्सिक केमिकल्स की बात की है कि जब प्याज और लहसुन के साथ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि ये क्यों नहीं, क्योंकि प्याज के भी बहुत सारे यूजफुल मेडिकेशन में, मतलब मेडिकली भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, और लहसुन की तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं रिकमेंड किया जा रहा है। कई जैन लोग थे जिनको मेडिकली ये कहा गया कि आपको लहसुन खाना ही चाहिए, चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग था या सब्जी में डाल के या ये कुछ करके। तो हम जब खाने की बात करते हैं विद राइट केमिकल्स, तो उसमें क्या इनका इफेक्ट है?
1: कनुप्रिया जी, मैं समझता हूँ इसको है ना एक होलिस्टिकली समझना चाहिए। हम थोड़ा उतना ही शॉर्ट चीज को ही समझते हैं। ये क्यों इतना इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि प्याज और लहसुन कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कम करते हैं, तो साथ साथ में उसकी दूसरी इफेक्ट को हम देखें कि जैसे प्याज को जब हम काटते हैं तो काटते समय भी आंखों से आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वोलेटाइल एसिड्स है, जो वोलेटाइल एसिड्स आंख में जाते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड बाहर है तो लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते हैं, उसके कारण आंसू आने लगते हैं। अब सोचिए कि जब सिर्फ आप तो काट रहे हैं, वो दूर से बहुत सूक्ष्म मात्रा में वॉलेटाइल एसिड्स आंखों में गए और इतना स्टिम्युलेशन हुआ, जब आप प्याज को खाते हो तो पूरा डायरेक्ट उसकी इफेक्ट होगी, 10 times more। जब वो नर्व्स के संपर्क में आएंगे तो कितना उससे स्टिम्युलेट करेंगे, तो वह स्टिम्युलेशन और भी हार्मफुल है। आप में

0: इरिटेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, पेशेंस कम हो जाएगी. तो ये बातें मोर हार्मफुल है. लंदन में एक रिसर्च भी हुई है जिसमें देखा गया कि भल लहसुन खाने से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, परंतु उसकी तुलना जब एक्सरसाइज के लिए की गई कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज करो तो करीब 4 गुना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कम होता है. तो थोड़ी सी एक्सरसाइज क्यों ना कर ले. और बात है कि हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो उससे जो कोलेस्ट्रॉल कम होगा वो सेम है, और साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे फ्रूट्स के, सब्जियों के, और आपको बेनिफिट्स होंगे. तो ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है स्वास्थ्य के दृष्टि से भी.
1: डॉक्टर पटेल, लहसुन की जहां तक बात है, उसका भी, उसके जो केमिकल्स हैं वो भी क्या हमारी सोच
0: पर आल्सो इवन, ये तो पूरा एक है कि टॉक्सिक शॉक कहते हैं उसको.
1: अच्छा.
0: जो नर्व्स की बात बताई ना कि उसमें केमिकल्स है वो ब्रेन पर बुरा असर डालते हैं, और रिसर्च भी हुई है कि इट कैन टेक यू इनटू टॉक्सिक शॉक. वो इरिटेशन होगा, और उस बात को किसी ने देखा ही नहीं. बस एक कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बस बहुत बड़ी पब्लिसिटी कर ले इस पर.
2: लेकिन अगर उससे वो इरिटेशन और एंजाइटी बढ़ता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल तो फिर बढ़ेगा भी.
0: हाँ, अल्टीमा भी ये भी बात ठीक है, क्योंकि लीवर प्रोड्यूस करता है.
2: कम इतना हो रहा है, लेकिन ठीक है, अगर इतना 10% कम हुआ लेकिन इतना स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट किया, 20% बढ़ गया, तो वी आर स्टिल 10% अप ना. तो दैट वी हैव टू
0: देखना. ये है कि लीवर सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है, खाने में तो हम थोड़ा सा ही लेते हैं, तो स्ट्रेस एंजाइटी आदि से लीवर ज्यादा फिर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगेगा. तो एक नहीं, होलिस्टिकली इस बात को देखा जाए तो प्याज और लहसुन से बचना ही सबसे अच्छी बात है. तो मन भी शांत रहेगा, साथ साथ हम अच्छा योग का अभ्यास भी कर सकेंगे.
1: हमने पिछले बार जब बात की थी कि खाना बनाते वक्त भी और जब खा रहे हैं तब भी, तो क्या पर्टिकुलर थॉट्स रखे, बिकॉज अब बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स आए, मेल्स आए इस बात को लेकर कि फिर क्या करें, कौन सा थॉट रखें, बिकॉज वो तो याद ही नहीं रहता. जैसे हम ऑटोमेटेड मोड में हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं और हम खाना बना रहे होते हैं. सी दोनों चीजें जो हैं, जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं तो हम याद थोड़ा कि हम क्या सोच रहे हैं, या तो इसमें अगर इतना इफेक्ट है तो क्या थॉट्स रखें.
2: जैसे हमें ये समझ में आने लगता है कि जो हमारा मन की स्थिति है वो अन्न पर असर डालेगी, और जो अन्न हम स्वीकार करेंगे उसका मन पर असर होगा. नाउ वी बिकम वेरी केयरफुल व्हाइल कुकिंग. जैसे आपने कहा कौन सी थॉट्स क्रिएट करें, तो वी हैव अ होल रेंज नाउ फ्रॉम टॉक्सिक थॉट्स टू एलिवेटेड थॉट्स. तो अगर आपको एलिवेटेड भोजन खाना है तो आपकी थॉट्स भी कैसे होनी चाहिए उस समय, एलिवेटेड थॉट्स होनी चाहिए. तो द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड वुड बी कि हम सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा की याद में भोजन बना रहे हैं. दैट वुड बी एलिवेटेड थिंकिंग, एंड दैट्स व्हाई एलिवेटेड एनर्जी, दैट वुड गिव द बेस्ट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी. राजयोग मेडिटेशन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और नियमित रूप से हम अभ्यास कर रहे हैं सोल कॉन्शियस और परमात्मा को याद करने का, अब उसी का विशेष ध्यान रखें जब भोजन बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे थॉट्स हैं they will be out. And उसके लिए थोड़ा सा और करना, the kitchen should be very clean, the environment should be very pure. आप परमात्मा की याद के कुछ गीत बजाएं साथ में, तो एक पूरा atmosphere उस तरह से create हो जाता है कि thoughts आपकी automatically फिर उसी तरफ चलती हैं. और अगर कोई बात परेशान कर रही है, अभी अभी किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, don't go to cook. Sit with yourself, resolve the issue, and then go into the kitchen. Otherwise, गुस्से वाला खाना बनेगा.
0: जो शिवानी बेन ने बताया उसमें एक चीज मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि खाना बनाने से पहले ही 15-20 मिनट अच्छे से मेडिटेशन कर लो, फिर ही जाओ. इससे पहले होता था ना स्नान आदि करके फिर किचन में जाते थे, तो ऐसे इस बात को भी अगर ऐड किया जाए कि कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना है फिर ही खाना बनाना है.
1: अगर ध्यान नहीं लग पा रहा है तब क्या करें, मतलब ध्यान में ही नहीं जा पा रहे हम, सारी चीजें ज्ञान समझने के बाद. सिस्टर शिवानी, बहुत लोगों का ये भी बात आती है, उसमें भी क्या जो हम खाना खा रहे हैं वो कोई वजह बनती
0: है? तो दोनों चीजें हैं, एक तो कि भी आप ध्यान की विधि को बोले और अच्छा सीखो और फिर ध्यान करो, और साथ साथ ये भी चेक करो कि क्या आपका आहार सही है. मुझे याद आता है हमारे मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल शाह, वह जब अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में तब ही उनको ये ज्ञान मिला और वो योग का अभ्यास करने लगे. लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्होंने अनुभव किया कि अच्छे से योग लग नहीं रहा है. ध्यान में जो एकाग्रता बननी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव हो नहीं रहा है. तो उन्होंने वहां पर जो ब्रह्मा कुमारी बहन थी उनको पूछा कि बहन जी मेरा अच्छे से योग नहीं लगता है, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि आप खाना कहाँ खाते हो। तो नेचुरली तब तो मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में थे, तो कहा मैं तो मैस में खाता हूँ। तो बहन ने कहा देखो यही मुख्य कारण हो सकता है कि आपका जो खाना है उसके वाइब्रेशन आपको असर कर रहे हैं और अच्छा योग नहीं लगता है। आप कोशिश करो कि अपने आप भोजन बनाओ, फिर भल सारी व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन उन्होंने सोचा कि योग का तो अच्छा अनुभव होना ही चाहिए। और थोड़ा प्रबंध किया, अपने आप भोजन बनाने लगे, कहते बस थोड़े दिन में मेरा अच्छा योग लगने लगा।
1: दिस इज इवन माई एक्सपीरियंसेस, मेरा अपना भी अनुभव यही है कि अभी तक ज्ञान समझ में आया, हर चीज को इम्प्लीमेंट किया, ध्यान भी योग भी जो था वो लगा, लेकिन जो फीलिंग ऑफ एलिवेशन, हर बार मैं प्रोग्राम में आती थी और मैं अच्छा फील जब मैं बात कर रही हूँ, आई कुड मेक इट आउट कि आई शुड फील दैट वे, लेकिन बाहर दिन भर में नहीं हो पाता था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा थॉट क्रिएट होता ही था। द मोमेंट आई एक्चुअली, और अब मैंने रियलाइज किया कि कभी घर का कभी बाहर का, कभी घर का क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा है कि कभी बाहर का करना ही पड़ रहा था, लेकिन व्हेन आई चेंज दैट एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद लॉट ऑफ व्यूअर्स, कि खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके खुद भोजन घर पे उस पर करने से एक परिवर्तन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा, कि मैं हल्की होने लग गई। चाहे जिम्मेदारी भी लेनी है, मैं अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेस में आती थी, वो कम हुआ है
2: बिकॉज अब औरों का स्ट्रेस अब कंज्यूम नहीं कर रहे।
1: हाँ,
2: एक पहले था आप मेहनत कर रहे थे लेकिन डिप्लीट भी कर रहे थे, अब क्या हुआ डिप्लीशन बंद कर दिया, तो कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट। अगर वैसे भी योग करने का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे धीरे होगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी।
1: आपको हर चीज पे एफर्ट था
2: क्योंकि आपने बहुत सारी अडल्ट्रेशन की है ना अपनी एनर्जीज के साथ, तो फिर वो सोल कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे ही आपने अपने आपको प्रोटेक्ट कर लिया उन सब एनर्जी से और आपको विधि आ गई, तो यू आर एबल टू डू इट मच फास्टर एंड वो आप लाइटर फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज हायर लेवल की हो गई है। जैसे ये भोजन हम बना लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज जो बनी है, सपोज चार पांच चीजें बनी है, तो हर चीज में से थोड़ी थोड़ी थोड़ी एक थाल प्रिपेयर होता है छोटी छोटी डब्बियों में, और हर एक चीज में से उसमें से थोड़ी थोड़ी लेते हैं, फिर उसके साथ बैठकर फिर मेडिटेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे परमात्मा को भोजन स्वीकार करना। बेसिकली इट इज योर हाइएस्ट एलिवेटेड थॉट्स कि मैं आत्मा उस परमात्मा से पवित्रता की शक्ति लेकर उस सारी चीजों में डाल रही हूँ। ठीक है, दिस वुड बी फॉर अनदर 10-15 मिनट्स कि आप उस भोजन को, अगर मेरा बनाते समय कहीं कुछ, देखो दो चीजें है ना, बैठ कर मेडिटेशन करते हैं तो और अटेंशन होता है, कर्म करते हुए मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी और बातें आ जाती हैं। सपोज दो लोग किचन में बना रहे हैं, कुछ और बात हो गई, कुछ और माइंड में आ गई, तो उसी भोजन को लेकर अब बैठकर फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे भोग लगाना। तो तब फिर 15 मिनट उसके साथ बैठे योग में, फिर वो भोजन लेके जाते हैं और वो थोड़ी थोड़ी जो चीजें थी उसको वापस सारी डिश में मिक्स कर देते हैं। सो बेसिकली आपने वो प्योरिटी से भरा वाइब्रेशन उस आइटम का उस पूरी चीज में मिक्स कर दिया। फिर जब हर एक की प्लेट में आ जाता है डाइनिंग टेबल पर, हर एक 2-3 मिनट कम से कम पहले साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके उस भोजन को दृष्टि देता, दृष्टि देना मतलब फिर वाइब्रेशंस देना उसको। इतने स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन के बाद वो भोजन को अंदर स्वीकार किया जाता है, तब उसको कहेंगे सात्विक अन्न। सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन खाया वो सात्विक अन्न नहीं, सात्विक अन्न ये भी नहीं कि वेजिटेरियन लिया प्याज लहसुन नहीं लिया, वो भी नहीं, सात्विक मतलब जिसकी एनर्जी सात्विक है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और फिर प्रयास करते हैं कि भोजन करते समय वातावरण कैसा है, टेलीविजन डेफिनेटली नहीं, एंड कई बार आजकल होता है कि डाइनिंग टेबल पर ही सारा दिन की डिस्कशन हो जाती है क्योंकि सब लोग उसी टाइम मिलते हैं, तो कई बार उसमें घर में चलने वाली प्रॉब्लम्स, ऑफिस की बातें, नॉट द राइट एनर्जी वो 10 मिनट के लिए। तो प्रेफरेबल तो होता है 10 मिनट साइलेंस में भोजन, लेकिन डेफिनेटली नॉट डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड डेफिनेटली नॉट टेलीविजन। 10 मिनट ही खाना खाना है, वी कैन डू इट विदाउट द टेलीविजन, नहीं तो फिर हम ही ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं और फिर हम ही कह रहे हैं कि जीवन में ये स्ट्रेस इतना नेचुरल क्यों हो गया, ये छोटी छोटी छोटी छोटी बातें हैं।
0: राइट क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे,
1: नहीं तो कभी ज्यादा
0: करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है आप ज्यादा ही खा लेंगे, कुछ होगा डिप्रेस्ड हुआ, आपकी भूख ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भी बहुत ही जरूरी है, केवल बात करनी है पहले ही कर लो या उसके बाद करो बेस्ट है। तो डाइनिंग टेबल बस परमात्मा की याद में साइलेंस में ही भोजन स्वीकार करो तो बेस्ट इफेक्ट होगी।
1: एक और चीज मुझे आपसे जाननी है, इनफैक्ट ये भी मैं अपने सभी परिवार के लोगों के साथ शेयर करूं कि खाना बनाना मुझे बहुत मुश्किल, क्योंकि टाइम नहीं होता था, बट आई रियलाइज इट्स ओनली वन माइंडसेट। यू नो, आज मुझे 6 बजे, 6:30, 7 बजे भी निकलना है, तो उससे पहले भी बनाया जा रहा है। इट्स जस्ट यू नो कि थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट का ही फर्क है उठने का और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। लाइफस्टाइल चेंज होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि खाना जब बनाते हैं, कई बार मैंने देखा है मदर्स के साथ जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाइफ्स के साथ भी, वो चाहती हैं कि हम अपने हाथ से खाना बना के दें, मैं बना दूं फटाफट, लेकिन उसमें जो हड़बड़ी है यू नो, और एक एंजाइटी रहती है कि अब ये खा ले सही, ये खाएगा कि नहीं खाएगा, इसको ऐसे करूं, ये थॉट्स क्या ये भी सही है? बिकॉज दे, और माँ को समझ में भी नहीं आता शायद कई बार कि मैं क्या वाइब्रेशंस दे रही हूँ,
2: फियर की ना,
1: हाँ,
2: फियर की और इनसिक्योरिटी की और एंग्जाइटी की वाइब्रेशन,
1: बना दो कि चला हाँ. ना जाए, यू नो, ब्रेकफास्ट करके जाए, वो चले ना जाए ये लोग, सो दीज वाइब्रेशंस।
2: और जब खाना खिला रहे होते हैं बच्चों को, तब कैसे खिलाते हैं? कई बार तो आजकल डांट के भी खाना खिला देते हैं, कई बार तो हाथ उठ जाता है बच्चे पे अगर वो खाना नहीं खा रहा, क्यों? सारा फोकस ये है कि वो एक चपाती उसके अंदर चली जाए,
1: बच्चा रो
2: रहा, दूध चला जाए, पर बिकॉज द फोकस इज ओनली ऑन द फिजिकल, कि ये फिजिकल चीज के फिजिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर चले जाए, ये कभी नहीं अटेंशन रहा कि ये कितने इमोशनल जो पेन है ये भी साथ में अंदर वो लेकर जा रहा है। तो कभी भी बच्चों को इस तरह से रुला कर मार पीट करके खाना नहीं खिलाना चाहिए।
1: तो बच्चे खाते नहीं फिर, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल आता है, एक साइकोलॉजिकल है कुछ भी है, लेकिन बच्चे खाते नहीं। हम टेलीविजन के सामने बिठा के फेवरेट चैनल चला दिया जाता है, एंड देन वो बच्चा देख रहा है टीवी और हम उसको खिलाते जाते हैं, यू नो, कुछ भी जो खाना है जो हम चाहते हैं कि वो खा ले।
0: उसकी मन की स्थिति को ठीक करो। आज बच्चों को प्यार चाहिए, है ना, फोर्स तो कर दिया लेकिन और आपने टाइम नहीं दिया, बच्चे के मन की बात आप सुन नहीं रहे हो, तो उसके लिए सचमुच बच्चों के लिए टाइम दो। अगर वो आप टाइम देने लगेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, तो ऑटोमेटिक भूख लगेगी और बच्चे खाएंगे। फिर भी जो दूसरा प्रश्न आता है कि वो हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो बोले कुल चीजों को मिक्स भी की जा सकती है, फ्रूट जूस अच्छा है और उसके साथ और कोई चीज जैसे कैडबरी बच्चे को बहुत पसंद है, वो कोई तरीके से मिक्स कर दो और खाए, तो बोल थोड़ा सा अनहेल्दी भी जा रहा है परंतु साथ साथ में 70% हेल्दी फूड जा रहा है, तो उसकी ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट होगी।
1: एंड देन बिना अगर हम डर, बिना गिल्ट के, आई हैव जस्ट रियलाइज यू नो कि ये वाली चीजें भी तो हम दे रहे थे, गिल्ट होता था वो जब वो ये खाता था, या घबराहट होती थी, वरी करते थे, वो अगर नहीं करेंगे
2: ऑटोमेटिकली वो जितना खाएगा, लेकिन अगर वो राइट वाइब्रेशन के साथ जा रहा है तो उसके मन के और तन के लिए दोनों के लिए बहुत असरदार है।
1: दूसरी तरफ एक और बात जो जानना चाहेंगे डॉक्टर पटेल, खा रहे हैं उससे पहले हर रोज का रूटीन, हर रात का रूटीन कि एक ड्रिंक तो लेंगे ही, एक ग्लास तो होगा ही, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। पार्टी में जाना है तो इट्स एक्सपेक्टेड, या फिर दूसरी तरफ है स्मोक की बात अगर हम करते हैं कि वो भी तो कहीं ना कहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जानने के बावजूद हम नहीं उसको छोड़ते हैं। फिजिकल पे तो हम सब जानते हैं, मन पर भी इनका असर पड़ता है, हमारी थॉट प्रोसेस को भी कहीं ये एडिक्शंस इफेक्ट करते हैं।
0: दोनों इफेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा इफेक्ट अल्कोहल की है। अल्कोहल क्या करता है कि आमतौर पर हमें पता है कि भी मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जैसे खाने की बात कि मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हम लॉजिकली जानते हैं, और कुछ बातें कि भाई इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए, वो जो कंट्रोल है वो एक हमारी नर्वस सिस्टम है, भले आत्मा ही कराती है परंतु आत्मा उन नर्व्स का उपयोग करके उस कंट्रोल को लाती है। जब हम शराब पीते हैं तब यह कंट्रोल समाप्त हो जाता है और हमें यह सेंस नहीं रहती है कि कितना खाना चाहिए, व्यक्ति बहुत ज्यादा खा लेगा, ऐसे बोलना चाहिए, वो बोल लेगा। इसीलिए देखो शराब पी हुई हालत में कैसे व्यक्ति गालियां देने लगता है, गुस्सा करता है, रैश ड्राइविंग हो जाता है और फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भले शराब की छोटी सी पॉजिटिव इफेक्ट हो लेकिन नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और शराब से तो ब्रेन भी डैमेज होता है, साथ साथ डायरेक्ट इफेक्ट है वो लीवर पर होती है, हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, एसिडिटी होती है। इन सब बातों को भी साथ में मिलाए तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इन एडिक्शन पर विजय प्राप्त करना चाहिए।
1: ऐसा भी कुछ है कि हम इमोशनली वीक हैं, हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो विल पावर नहीं है कि हम एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं।
0: हाँ, तो मेन कारण तो यही है, सभी को ये पता है कि टोबेको की क्या नेगेटिव इफेक्ट होती है, फिर भी ये व्यसन ले रहे हैं क्योंकि विल पावर में ही कमी है। एक बार मित्र ने कह दिया, व्यक्ति ने एक दो बार टेस्ट किया और फिर उसके वह संस्कार हो गए और सदा के लिए आदत हो गई। कोशिश करने के बावजूद भी, यहाँ तक आजकल जब सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, निकोटीन च्यूइंग गम्स दिए जाते हैं, निकोटीन पैच लगाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि विल पावर में बहुत बड़ी कमी है।
1: तो अगर हमने थॉट पर काम किया, इमोशन पर काम किया, तो एडिक्शन से जिनसे मतलब कितने कितना वक्त लग जाता है वो नहीं निकल पाते, निकल पाएंगे। एक बात और डॉक्टर पटेल, ये तो बात हमने मोटी मोटी एडिक्शंस की। कई बार एडिक्शन है मीठा खाने की, चॉकलेट की, और डायबिटीज है उसके बावजूद बार बार हम खाने की बात करें, मन कर रहा है कि वो खा लें, मतलब उसके बिना रहा नहीं जाता। ये भी क्या कहीं मेरे मनोबल को कम करती है और फिर इनका असर पूरे उस पर जाता है, पूरे सिस्टम पर जाता है।
0: डेफिनेटली ये भी एडिक्शन है, या तो इससे भी कह सकते हैं, आपने जैसे कहा कि डायबिटीज के पेशेंट है पता है फिर भी खा रहे हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका नी रिप्लेसमेंट होना है, वेट बहुत ज्यादा है, फिर भी खाने के बाद फिर से मीठा खा रहे हैं, तो उनमें तो ऑलरेडी हार्मफुल इफेक्ट हो गई। पता है कि वे नी रिप्लेसमेंट होना है, सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, सारे जीवन का सवाल है, फिर भी व्यक्ति मीठा खा रहा है, तो मीठे खाने का भी एक एडिक्शन हो जाता है। उस पर भी पहले से ही अगर हम थोड़ा सा काम करें कि यह कौन सी स्थिति है, मुझे कम करते जाना और फिर टोटली मैं समाप्त कर दूं। और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो खाने के ऊपर मीठा कभी नहीं खाओ, क्योंकि जो आप मीठा खाते हो उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के होता है, शुगर का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाने के ऊपर जब आप मीठा खाते हो तो वहां पर ही 3 घंटे रहेगा और उसमें जो परिवर्तन आएगा वह परिवर्तन बुरा होगा। तो जिनको डायबिटीज नहीं भी है, अगर मीठा खाना ही है तो लंच और डिनर के बीच में कभी खाओ कि जब आप खाली पेट हो, तो तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा।
2: हम में से कितने ये खा रहे हैं?
1: और मैक्सिमम जो है वो ये था कि खाने के ऊपर, पर खाने के बाद जो गुड़ खाते हैं,
0: वह पहले गुड़ था, अभी और चीजें हो गई,
1: लेकिन वो भी हार्मफुल है।
0: एडिक्शन
1: सी, हम कितने अनअवेयरनेस के साथ जी रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छा है कि खाना खाओ, रात को थोड़ा सा गुड़ खा लो, लेकिन
0: तो वो आदत हो गई।
1: हाँ, तो वो सही नहीं
0: सही
1: है,
0: बिल्कुल नहीं।
1: सिस्टर शिवानी, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि कहा जाता है जो मन कर रहा हो वो खाना चाहिए।
2: मन जो कर रहा हो, लेकिन एक बार नॉलेज है तो अपने मन को समझाना भी अब हम सीख रहे हैं। मन तो गुस्सा करने के लिए भी कर रहा होता है, बट नॉट नेसेसरी इट्स हेल्दी फॉर मी, आई एम रियलाइजिंग दैट। तो मन जो कर रहा है वो नहीं, जो मुझे ज्ञान समझ में आ गया है उस हिसाब से मुझे अपने मन को अब समझाना है कि मुझे मेरे लिए क्या राइट है। ऐसे तो हमारे बच्चों का भी मन कर रहा होता है ना बहुत कुछ खाने के लिए, हम तो नहीं उनको वो देते सारा कुछ। Why? It's not good for them. Similarly now, what's not good for me? तो मुझे अपने मन को भी समझाना पड़ेगा। जितना जितना हम अपने मन को समझा पाएंगे, शायद बच्चे हमारा कहना ज्यादा अच्छी तरह से मान लेंगे, बिकॉज हम अपने को ही नहीं समझा पा रहे तो उनको कैसे समझा पाएंगे। The energy won't work then that side. One more thing we need to take care of, कि कौन से धन से भोजन बनाया जा रहा है। See, it's a little deeper, लेकिन धन कैसे कमाया गया, फिर वो धन से अन्न आया और फिर वो अन्न से मन पर असर आया। अगर धन कोई थोड़े भी गलत तरह से कमाया गया होगा, किसी को धोखा देकर या एनी मैल प्रैक्टिसेस, तो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि आप कहाँ पर अन्न स्वीकार कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा कि वहां का धन कैसे कमाया जाता है। be very careful.
0: आपने जो प्रश्न पूछा ना, वो पहले के जमाने में कहा जाता था कि भाई मन करे वो करो, वो सत्य भी है कि जब आपको जरूरत होती, कहीं बार मीठे की जरूरत होती, बॉडी में जब शुगर कम हो रही है उसकी जरूरत है, तो फिर हमें उसी प्रकार की इच्छा होती है। लेकिन वो कब, कि अगर आप सजगता से सब कुछ कर रहे हो। आज तो क्या है कि हम बहुत फास्ट लाइफ में है, सारा दिन खाते ही जा रहे हैं, और उसके बाद जब मन करे तो समझना चाहिए तो व्यसन है या सचमुच बॉडी की डिमांड नहीं है। अगर आप सही रूप से थोड़ा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आहार ले रहे हो तो जब शुगर लो होने लगेगी तो सचमुच बॉडी डिमांड करेगी और इच्छा होगी कि थोड़ी सी शुगर खानी चाहिए।
1: एक्चुअली हमें अपने मन की आवाज आती भी है कि हम गलत कर रहे हैं, बार बार एक नॉक है, हमने ही उसको सुनना बंद किया हुआ है। शिवानी डॉक्टर पटेल, आज इनफैक्ट ना सिर्फ खाना, मतलब खाना कैसे है, क्या खाना है, बल्कि कहाँ खाना है, किस तरह, उस वक्त क्या थॉट्स रखने हैं, और बनाते वक्त जो आज आपने हमारे सामने, बहुत लोगों को ये था कि फिर हम क्या सोचें, क्योंकि ऐसा सोच नहीं पाते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज हमने बहुत सी बातें समझी, इनफैक्ट अभी तक हम अवेयरनेस में ही नहीं थे कि किस तरह से, जहां से जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि धन जो हम कमा रहे हैं, कई बार हम ये भी तो कहते हैं ना कि बेकार इस तरह से कमाया गया धन जो है वो बीमारियों में ही जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें खाना जो है, जो पक रहा है उस धन से, वो हम खा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हम कोरिलेट करना शुरू करेंगे, जरा सोचना शुरू करें, जरा देखना शुरू करें, जरा से सजग हो जाएं, तो ये सारी बातें जो आज हमने की हैं, अपने लाइफस्टाइल, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, यही तो स्किल होगी कि आप एक डिफरेंट लाइफ जी पा रहे होंगे। कोई बात मन में है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल करें या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे मिलेंगे। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
3: नमस्कार साथियों, मैं आरजे शांतनु आपके सामने आज फिर से यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक नए आयाम के साथ आया हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम संगीत को डेडिकेट किया हुआ है, लेकिन एक ऐसा संगीत जो शायद मैंने आपने कभी पहले सुना भी ना हो, लेकिन संगीत में वो शक्ति होती है जो जीवन को बदल सकती है, सोच को बदल सकती है, देश की दिशा दशा दोनों को बदल सकती है। आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं पद्मश्री उस्ताद गुलफाम अहमद जी, जो कि सेनिया घराने के एक नायाब हीरे हैं, जो न केवल सरोद लेकिन एक बहुत ही खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अफगानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रबाब के इकलौते ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रबाब को न केवल अपनी कला से जिंदा रखा है लेकिन उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। 2021 में भारत सरकार ने श्री उस्ताद गुलफाम अहमद जी को उनके संगीत के प्रति सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज हमारे स्टूडियो में अब आप सुनेंगे उस्ताद गुलफाम अहमद जी और आरजे कृष्णा जी के बीच की चर्चाएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने सुना है एक छोटा सा झलक रबाब संगीत का। आइए स्वागत करते हैं गुलफाम अहमद जी को रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर और शुरू करते हैं इस बातों के सिलसिले को। गुलफाम अहमद जी, आप सरोद और रबाब, आप ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं
1: जी,
0: तो इसके बारे में आप थोड़ा सा परिचय देंगे, क्योंकि हम बचपन से तबला, हारमोनियम, ऐसे क्लासिकल म्यूजिक के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सुने हैं, लेकिन ये दो ऐसी चीजें हैं आम तौर पर हम नहीं सुनते हैं या देखे हुए होंगे तो भी हम उसको इस नाम से नहीं पहचानते हैं। तो आप
1: तो सबसे पहले तो मैं आपको आदाब, ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: और अपने बारे में बताऊं कि हमारे घराने में जो मियां तानसेन का घराना है, वंशज, तो उस घराने में बेटे वालों में सबसे पहले रबाब सिखाया जाता है, उसके बाद फिर सरोद, सितार, कुछ भी सीखे। तो बचपन ही में शुरुआत जो की रबाब सीखी, एक साल रबाब बजाया, उसके बाद फिर सरोद शुरू किया, तो काफ़ी सीखा। छोटी उम्र थी, फादर की डेथ हो, फिर मेरे बड़े भाई उस्ताद मुख्तार अहमद खान साहब ने मुझे तालीम दी। ऐसे चलते चलते चलते चलते फिर विदेशों में जाना रहा, आना रहा और प्रोग्राम होते रहे, चलते रहे। फिर 2001 में, 21 साल पहले, मुझे एक नामधारी सरदार सतगुरु जगजीत सिंह महाराज, उन्होंने मेरा जब सरोद सुना तो उन्होंने मुझसे तीन चीज़ें पूछी कि आप जिस तरह से सरोद बजाते हैं और जो आपकी बैठक है और हाथ का रखने का स्टाइल और टेक्निक ये अलग है। तो फिर मैंने बताया उन्हें कि हमारे यहाँ पहले रबाब सिखाया जाता है, और रबाब सिखाने की एक वजह यह भी है कि तैयारी आ जाती है सरोद में ना, जितना फास्ट बजाए। तो उन्होंने मुझसे कहा अगर आपको रबाब दिया जाएगा बजाएंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल बजाएंगे। तो उन्होंने फिर एक रबाब मुझे एक महीने के बाद भेजा और सुबह को फिर मैंने उस दिन सुना रहा। तो ये छोड़े हुए मुझे हो गए थे कोई 30 साल रबाब।
0: अच्छा।
1: हाँ, लेकिन वो बचपने में जो शुरुआत की थी रबाब से वो तो पता ही था सब। तो रात को मैंने उसकी ट्यूनिंग वगैरह करके सुबह को मैंने वहाँ बजाया। तो जिस दिन मैंने ये बजाया 30 साल के बाद, हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार बैठे थे उनके सामने, बिरजू महाराज, सोनल मानसिंह, बड़े गुलाम अली खां के पोते, राजस्थान घराने के कथक डांसर हैं राजेंद्र गंगा, वो मौजूद थे, और भी बहुत सारे उस्ताद लोग मौजूद। मैंने फिर वहाँ कोई पौन घंटा रबाब उन्हें सुनाया। रबाब सुनाने के बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप रबाब भी बजाया करें और इसको सिखाए भी। तो फिर मैंने साथ के साथ रबाब भी शुरू किया। अब डबल मेहनत आ गई, पहले तो 3-4 घंटे सरोद रियाज किया, चलिए हो गया, अब रबाब में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग अलग थी, उसका स्टाइल अलग था, उसकी मिजराबें अलग थी। तो इसमें बड़ा वो टाइम शुरुआत में तो ये रहा, कहीं मैं रबाब बजाता था तो जो सुनने वाले थे मेरे तो मुझसे कहते थे कि आप सरोद ही बजाया करो, रबाब नहीं बजाया करो, क्यों कि रबाब की टेक्निक कभी आ नहीं रही थी
0: जी।
1: तो फिर बड़ी मेहनत करी, पूरी पूरी रात बैठा, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग अलग, टेक्निक अलग, फिर कर कर के सीख सीख के फिर उसको जुदा किया रबाब सरोद को अलग, सरोद का सरोद के साथ, रबाब का रबाब के साथ। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ये पंजाब में एक कॉन्फ्रेंस होती है, हरबल्लम कॉन्फ्रेंस जालंधर में, तो वहाँ बजाने का मौका मिला, क्योंकि गुरु नानक जी के साथ मर्दाना थे जो रबाब बजाते थे, जब ऊपर से बाणी आती थी तो गुरु नानक जी कहते थे मर्दाना रबाब उठाओ, बाणी आ रही है, तो मर्दाना रबाब बजाते थे। अब बालाजी जो थे उनके साथ, वो राइटर थे, वो लिखा करते थे, ये बाला और मर्दाना दो रहते थे गुरु नानक जी के साथ। तो फिर वो पंजाब में जब हरबल्लम में बजाए हम, तो वो 25 जनवरी या 26 जनवरी का दिन था, लास्ट संडे एंड हो जाता था उस कॉन्फ्रेंस का। आज भी साल के आखिरी संडे में 2 या 3 दिन होती है, लास्ट संडे में उस प्रोग्राम का एंड। बहरहाल, तो वो प्रोग्राम करके जब मैं आया, दूसरे दिन से जो मेरे यहाँ घर में बाबाओं ने आना शुरू किया, सरदार भाइयों ने सीखने के लिए, तो फिर मेरी भी तमन्ना थी कि इस साज को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए, क्योंकि ये लुप्त हो रहा था ना। बहुत सारे लोग थे वो कहते थे कि रबाब का जिक्र सुनते हैं या फिर किताब किसी किताब में देख लेते, बजते भी नहीं देखा ना किसी को बजाते देखा। तो फिर वो एक दिन जहन में ये रहा कि जो साज लुप्त हो रहा है इसको अब बढ़ाया जाए। तो लुधियाना में दुख निवारण यूनिवर्सिटी है, वहाँ क्लास लेता था मैं 2 दिन, पटियाला यूनिवर्सिटी में 2 दिन क्लास, लुधियाना में एक जवद्दी टकसाल है वहाँ 2 दिन एक क्लास, फिर चंडीगढ़ जाता था वहाँ गुरु आसरा ट्रस्ट वहाँ क्लास, क्योंकि वहाँ सारी बच्चियाँ जो थी ना उनके फादर वगैरह नहीं थे, वो सब दुनिया में नहीं थे, तो एक ट्रस्ट बना हुआ है वहाँ, तो वो लड़कियाँ गुरुमुख संगीत भी सीखती थी रवाब भी सीखती थी। फिर एक बड़ू साहब में है बाबा इकबाल सिंह, उनकी वहाँ यूनिवर्सिटी भी है, तो उनके ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं लड़कियाँ, तो उन्हें भी सिखाया, फिर मैं जाता भी था वहाँ। तो इसको बहुत इसको बढ़ाया और अब बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल से। फिर मेरा एक बेटा है, मैं तो चला गया अफगानिस्तान, फिर मैंने अपने बेटे को ड्यूटी दे दी वहाँ की पंजाब कि भाई वो सिखाए, तो फिर उन्होंने वहाँ जाके इसकी काफ़ी तारीफ। तो अब मेरे ख्याल से 250 के करीब स्टूडेंट हैं पंजाब में।
0: अच्छा।
1: हाँ, जो अब रवाब प्ले कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है कि 2007 30 मार्च गोल्डन टेम्पल में 200 साल के बाद रवाब पे कीर्तन हुआ था।
0: ओह वंडरफुल।
1: जो मेरे शागिर्दों ने किया था, क्योंकि ये मुझे यूं याद है 200 साल के बाद हो रहा है और मेरे शागिर्द वो भी गोल्डन टेम्पल में। फिर खैर उनको वहाँ से बहुत मोहब्बत प्यार मिली उन मेरे शागिर्दों को, वहाँ बाप और बेटे गए थे बजाने, तो फिर उनके जो एरिया में पटियाला में रहते थे जो आसपास के गुरुद्वारे थे उन गुरुद्वारे वालों ने उनको का बड़ा सम्मान किया शागिर्दों। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम मैंने जो कुछ किया था तो मेरी मेहनत कामयाब। फिर मैं अफगानिस्तान गया, गया तो मैं ऐसे ही था एक फंक्शन करने के लिए, वहाँ नवरोज होता है साल का, पूरे ईरान वगैरह में उज़्बेकिस्तान तजाकिस्तान, यहाँ 21 मार्च मना जाता है इनका नया साल 21 मार्च को, तो वहाँ गया था मैं 2-4 दिन के लिए। तो वहाँ लोगों ने जब मुझे देखा मैं रवाब बजा के गा रहा हूँ, गाना नहीं आता मुझे लेकिन फिर भी गा देता हूँ कुछ सूफी
0: जी।
1: तो जब मुझे वहाँ के एम्बेसडर ने और लोगों ने सुना कि ये रवाब बजाते भी और रवाब बजा के गा भी रहे, बड़ा मुश्किल है रवाब बजा के गाना।
0: अच्छा।
1: हाँ, आप बजा सकते हो गा नहीं सकते क्योंकि स्ट्रिंग लगे हुए ना, जरा सा भी एक नाखून के बराबर फिंगर इधर उधर हो गए, बेसुरे हो गए। तो खैर बहरहाल वहाँ लोगों ने एम्बेसडर से कहा कि जी इन्हें आप बुलाइए यहाँ, क्योंकि वहाँ जो टीचर थे वो सिर्फ गाना सिखाते थे और उनका टाइम पूरा हो रहा था। तो फिर एम्बेसडर ने कहा हमसे यहाँ पे
0: अफगानिस्तान,
1: हाँ दिल्ली में, कि भाई किसी के थ्रू हमारा ICCR जो कल सेंटर है दिल्ली, कि खान साहब हम आपको अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। तो अफगानिस्तान का नाम सुन के तो आपको पता ही है बड़े बड़े काम हैं। तो मैंने कहा भाई मैं जा तो सकता हूँ लेकिन 6 महीने से ज़्यादा, क्योंकि मुझे वहाँ भी सिखाना था
0: जी।
1: हाँ, ये नहीं कि डर नहीं, सिखाना था मुझे। तो बहरहाल मैं फिर गया 14-9 में और वहाँ जाके 5 साल रहा
0: जी।
1: तो वहाँ जो भी स्टूडेंट आते थे मेरे हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखने के लिए, सरोज सितार हारमोनियम भी, अब मुझे तबला इतना नहीं आता लेकिन शुरुआत कर देता था तबले की भी, तबला भी, और फिर रवाब तो था। फिर रवाब में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, इसमें क्लासिकल बजना मुश्किल हो रहा था तो इसमें से एक तार हटा दिया था। वहाँ के एक उस्ताद हुए आज से 60-70 साल पहले, तो उन्होंने उस तार को निकाल दिया था, तो फोक में बजा करता था ये। फिर मैंने उसको दोबारा तार को चढ़ा के और फिर इसमें क्लासिकल के लिए बहुत मेहनत करी, क्योंकि इसमें आस नहीं है ना रवाब में, तो इसमें आस कैसे लाई जाए।
0: आस मतलब?
1: आस जैसे साउंड।
0: ओके, आवाज।
1: स्ट्रोक मारे हैं तो उसका एक आवाज रहनी चाहिए ना, तो इसमें नहीं था, तो थोड़ा सा इसमें जिद्दत करी सुर में ट्यून करने के लिए, तरबों को ट्यून करने के लिए, और कुछ उसकी स्किन जो है रवाब की उसको थोड़ा स्किन को भी पतला किया, मोटी मोटी स्किन लगाते थे तो उसे साउंड दबता था, तो बहुत इसमें मेहनत करी, बड़ा काम किया, फिर जाके कहीं ये कंप्लीट हो पाया।
0: सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक नया इंस्ट्रूमेंट और वो भी जो विलुप्त होता जा रहा है, हाँ? और उसमें भी टफनेस है कि बजाते हुए गा,
1: हाँ।
0: और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आप मास्टरी कर लिया और आज आप उसके लिए पहचान बन गए हैं।
1: नहीं, ये सब दरअसल में मैंने इसलिए नहीं किया था, मेरी पहचान होने ना, शौक। मुझे अपने काम से मोहब्बत है, आपको सच बता रहा हूँ। मेरे खानदान में किसी की डेथ हो जाती थी ना, और मैं उनके यहाँ जाता था, जैसे दिल्ली से बाहर, तो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जाता था।
0: अच्छा।
1: हाँ, और ले जाके कोने में खड़ा कर दिया अपने इंस्ट्रूमेंट। जब देखा वहाँ माहौल सही है, तो उस अपने इंस्ट्रूमेंट में कपड़ा लगा के 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस जरूर कर।
0: अच्छा।
1: जब तक अपने काम से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, लालच नहीं, पैसा वैसा नहीं ना, वो तो जो मिलेगा मिलेगा, दो रोटी मिले इज्जत से बस, ज्यादा वो नहीं है टेंशन। काम से मोहब्बत है कि काम को कैसे करना है
0: जी,
1: ईमानदारी से। अच्छा, अब मुश्किल एक चीज और है
0: जी,
1: इस काम को करने वाला जो सच्चाई से करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा।
0: सही बात,
1: क्योंकि वो झूठ बोलेगा तो काम में भी झूठ आ जाए, है ना।
0: यस।
1: तो इसीलिए मन को भी बड़ा क्लियर। कलाकारों में एक चीज बड़ी अजीबोगरीब होती है, सब बड़े बड़े कलाकार ये कानों के बड़े खच्चे होते हैं।
0: जी।
1: क्यों सच्चे होते हैं ना ये इनके बारे में कोई कोई झूठ कहते ना, आपके लिए उसने ऐसा कहा, तो ये यकीन कर लेते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि वो खुद सच्चा है, इसलिए वो यकीन कर लेता है कि हाँ उसने कहा होगा, तो उसे तकलीफ होती है। अच्छा, हम अब इस चीज से निकल गए, क्योंकि हमारे जो पीरो मुर्शिद मिले हैं वो कहते हैं जो कुछ कह रहा है तो उसे कहने दो, अगर हम बॉल दीवार पे मारेंगे तो रिटर्न हमारे पास आएगी, वो जो कहेगा वो उसके पास जाएगा, आप जो करोगे वो आपके पास आएगा। नीचे भी मैंने पढ़ा ना, मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी, नफरत देंगे तो नफरत मिल जाएगी
0: जी।
1: तो क्या जरूरत है, टाइमिंग कहाँ है, तो ना मोहब्बत दिए जाओ, प्यार किए जाओ
0: जी। गुलफाम जी, जैसे आप अफगानिस्तान गए, आप खुद ही कह रहे थे कि आपको भी डर लग रहा था और आपको सिखाना भी था वहाँ पर, तो कैसे आप उनके अंदर इस संगीत के प्रति प्यार को जगाया? क्योंकि आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं क्लासिकल सीखने वाले बहुत ही गिने चुने होते जा रहे हैं, क्योंकि सीखने के लिए भले अगर इच्छा है भी तो प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि उससे पेट पूजा नहीं होती है। तो फिर आपने उनके अंदर इतनी श्रद्धा कैसे बिठाई? एम्बेसडर ने तो बुलाया है, बुलाना कोई छोटी बात नहीं होती है, एक देश का एम्बेसडर बुलाए, तो आपने कैसे उसके प्रति प्रेम जगाया संगीत?
1: मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात, जब मैं यहाँ से गया तो मैं 6 महीने का कह के गया था, तो जिस होटल में कमरा था हमारा, एम्बेसी वालों ने जहाँ ठहराया, तो मुझे नहीं पता थी यहाँ पे वो भी रहता है आतंकवादी टाइप का। तो वो जब मैं रियाज करता था ना, मैं गाना गाता था, तो वो मेरे पास आ जाता था, तो हिंदुस्तान से एक कश्मीर से गए थे एक साहब पत्रकार, मुस्लिम थे, नाम बोल रहा हूँ उनका, वो उसका पीछा कर रहे थे उस आदमी का, तो वो मुझे भी देखते थे और उसकी भी बातचीत सुनते थे, मैं सच बता रहा हूँ आपको
0: जी।
1: तो वो एक दिन मुझसे बोला, कहने के आप हिंदुस्तान से हो? मैंने कहा जी। कहने के आप यहाँ का साज बजाते हो? मैंने कहा। कहने लगे और आप गाते भी हो? तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उसको बताया संगीत क्या चीज़ है, और ये मोहब्बत है, इश्क है, ये सूफी संतों की वाणी है, और इसको जो सुनते हैं वो भी सूफी संत हो जाते हैं, और जो करते हैं वो भी सूफी संत होते हैं। तो मुझे नहीं पता थी ये कौन। खैर, 1-2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता उसने मेरे साथ रहा, फिर एक दिन वो रबाब लेके आया।
0: अच्छा।
1: और वो जो पत्रकार थे वो उसको फॉलो कर रहे थे, पता नहीं उनकी ड्यूटी थी इसे फॉलो करना, तो उन्होंने देखा एक दिन फ्राइडे को एम्बेसी बंद होती थी, तो मेरे कमरे में बैठा हुआ सीख रहा और कह रहा था मुझे गाना गाना, तो मैं उसको सरगम के साथ, कभी उसने बचपने में बजाया होगा रबाब, क्योंकि रबाब वहाँ हर घर में है अफगानिस्तान में, कोई बजाए नहीं बजाए आपको हर घर में रबाब जरूर मिले।
0: ओके।
1: तो मैं उसे सिखा रहा था, तो वो बड़ी उससे खूबसूरती के साथ सा रे गा, तो 4-6 दिन तक उसे नहीं हूँ, उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, कहने गुलफाम जी मैं आपको इतने दिन से फॉलो, ये आदमी वो था और आपने इसको रबाब में लगा दिया। खैर मुझे अंदर से थोड़ा सा वो तो लगा। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मौज जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में, यहाँ लिखी होगी तो यहाँ जाएगी। तो मैं 5 साल रहा था फिर।
0: ओके।
1: और यकीन जाने आप, घर के बाहर फायरिंग चलती थी।
0: किस लिए?
1: जो वहाँ लड़ाई चलती रहती थी।
0: अच्छा।
1: आवाजें आती थी टक टक। एक दिन तो घर के बाहर ही फायरिंग चल रही थी और मैं आराम से बैठे हुआ टीवी देख रहा था।
0: अच्छा।
1: तो हमारे CPA साहब, उन्हें 3-4 महीने हुए थे वहाँ गए, तो वो नीचे आए बड़ी डरते डरते हेलमेट पे। तो मैं नीचे ग्राउंड में था, मेरा जो दरवाजा था वो शीशे का था, मुझसे बोले गुलफाम जी बाहर फायरिंग चल रही है, आप आराम से टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा सर आप नए नए आए, आपको आदत पड़ जाएगी, आराम से सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो इंजॉय किया उसको भी। हाँ
0: जी।
1: तो एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा था वहाँ, 5 साल सिखाया।
0: तो आपको ये लगता है कि ये संगीत भी आपके अंदर इतनी पेशेंस और स्टेबिलिटी को लेके आई?
1: जी देखिए एक ध्यान है ना, हम मेडिटेशन करते हैं ना, संगीत भी तो एक मेडिटेशन। जब हम बैठते हैं ना अपना साज लेके, तो हम अपने सुरों में होते हैं, उसमें ध्यान होता है। कोई राग बजा रहे हैं तो उसमें ध्यान, ये नहीं होगा ध्यान कहाँ जाना है, किस कौन आएगा, कौन मिलेगा, ना। अपने जो राग बजा रहे हैं उस राग के ऊपर ध्यान है। अब वो जब एक ध्यान लग गया तो आंखें मिची भी होती है, बज रही है, सुरों की आवाज़ आ रही है और सुरों के बारे में सोच आ जा, ये है।
0: जी बहुत सुंदर सर। मतलब अभी हम क्या कहें, एक आतंकवाद को आपने एक नॉर्मल सिविलियन बना दिया, उनके अंदर इतनी सॉफ्टनेस लेके आई। मुझे लगता है कि आप जैसे बहुत सारे कलाकार होंगे भारत में, हर एक जेल में एक एक को संगीत सिखाने भेजना चाहिए।
1: हाँ, हाँ। मैंने तो अजय राज शर्मा थे दिल्ली में कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर
0: जी,
1: तो मैं एक पार्टी में गया हुआ था अशोक होटल में, तो वो मिल गए मुझे वहाँ, जानते तो थे। तो मैंने कहा शर्म, वो फिर कश्मीर चले गए थे।
0: ओके।
1: और उस वक्त कश्मीर में बहुत चल रहा, तो मैंने उनसे कहा शर्मा जी एक आध हफ्ते के लिए मुझे कश्मीर भेज दो। देखो क्या मजा आएगा रबाब के साथ, कितना सुकून पहुंचाऊंगा मैं। तो वो कहने लगे गुलफाम जी हमें आपकी कश्मीर में नहीं, यहाँ ज्यादा जरूरत है।
0: मतलब वो भी महसूस करते हैं इस बात को। मतलब इसीलिए कहते हैं कि संगीत अमन और चैन का एक साधन है।
1: बहुत। आप ये कहीं जाने
0: जी,
1: मेरी 66 साल की उम्र हो गई और जब कोई मेरी वाइफ को देखता है ना तब तो वो यकीन कर लेता कि ये 66 के हैं। अदरवाइज कहते हैं नहीं जी नहीं आप 50 के होंगे। उसकी वजह क्या है, सोच अच्छी, मेडिटेशन अपने संगीत का, बस किसी का बुरा नहीं सोच, अपने जो गुरु से सीखते हैं पीरों से, वो ये किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो। वो बुरा सोचोगे तो वो चेहरे पे आएगा ना हमारे।
0: yes.
1: एक तो वैसे ही चेहरा इतना अच्छा नहीं है, अब उसको ठीक करने के लिए फिर अच्छा सोचना होगा। और ये जुबान है, इससे आप मोहब्बत करें, इसी से आप नफरत कर लें। yes. तो अच्छा है मोहब्बत करें ना।
0: yes. प्यार के दो शब्द सुनाओ तो अपने बन जाते।
1: मैंने एक गीत लिखा था
0: जी,
1: अभी मैंने सुनाया था नीचे किसी को, रबाब बजा रहा था मैं कहीं बैठा हुआ पंजाब में, और ये पंजाब में बड़ा फेमस है मेरा
0: जी।
1: तो ऐसे बजाते बजाते किसी ने कहा कि खान साहब कुछ सुनाओ भी तो सही गा के, तो एकदम वो बनती चली गई
0: जी।
1: वो बोली इसके ये है, मस्त कलंदर गाता जाए मस्त कलंदर, अल्लाह तेरी शान मौला तेरी शान, तू ही दिल में तू ही लपे तू ही चारों धाम, रास रचाए, ये किशन जी के ऊपर लिखा उसी वक्त ही आता चला गया, रास रचाए धूम मचाए करता कैसे काम, तेरी लीला तू ही जाने जाने क्या इंसान, मस्त कलंदर गाता जाए
0: जी।
1: और इसका आखिर का सुनाऊं मैं आपको, अल्लाह अल्लाह कहता जाए राम, प्रेम के दो अक्षर ना जाने कैसा ये इंसान, मस्त कलंदर गाता है।
0: क्या बात।
1: कोई जाए मंदिर में कोई दे आजान, कोई जाए गिरजा में बोले कोई सतनाम, मस्त कलंदर गाता है। इसकी 2-3 लाइन तो ये आपको शॉर्ट में बताया। तो प्यार जो है मोहब्बत है। अब देखिए ना, कभी गाया नहीं, उन्होंने क्या गाने सुना दो। अब जाहिर है कि मेरी रूह अच्छी रही होगी, हाथ मच्छी रही कि वो निकलता गया और मैं गाता चला गया। अब मैं खुद हैरत में था कि मैंने कैसे कर दिया है ना
0: जी।
1: तो वो सब ये एक रूह की बात है और बुजुर्गों का एक आशीर्वाद, पीरो मर्शिद की दुआ है।
0: अच्छा है। सो आपके जीवन में कोई ऐसा इंस्पिरेशन रहा या कोई रोल मॉडल रहा जिनको आप देख करके लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है?
1: नहीं, मुझे ये नहीं रहा।
0: ओके।
1: उससे पता क्या होता है
0: जी,
1: जहाँ पे हम लोग क्या कहना चाहिए उसमें आ जाते हैं ना मुकाबले पे, तो फिर हम डाउन हो जाते हैं।
0: ओके। नो कंपटीशन?
1: नहीं, कंपटीशन नहीं,
0: कंपैरिजन
1: अपना खुद करते चले जाओ। और जैसे ही कि मेहनत कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे यश भारती अवार्ड मिलेगा
0: जी,
1: जो यूपी गवर्नमेंट से मिला 16 में। 11 लाख रुपए कैश दिए थे, 50,000 पेंशन थी, लेकिन वो पेंशन जब योगी जी आए तो सबकी बंद हो गई। तो मुझे ये नहीं कि मेरी बंद हुई, सबकी बंद हो गई। फिर 21 में मुझे पद्मश्री मिला
0: जी,
1: और इसकी भी यकीन नहीं था मुझे, ना मैंने इसके लिए सोचा था मुझे कुछ मिले। वैसे तो बहुत सी आ रही जगह मिलना, ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपसे प्यार करे
0: जी,
1: जो आपके स्टूडेंट हैं वो प्यार करें। सबसे बड़े अवार्ड वो है, ठीक है, ये एक सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। और मुझे तो मोदी जी से बड़ी अच्छी बात हुई थी इस बार।
0: अच्छा।
1: राष्ट्रपति जी से हाँ बात हुई
0: जी,
1: तो उन्होंने पूछा अब आप क्या करेंगे अफगानिस्तान में, तो इस वक्त ही हालत। मैंने कहा जी मुझे अपने स्टूडेंटों की फिक्र है। हाँ
0: जी,
1: ये काम है ना, मैंने मुझे अपने स्टूडेंटों की फिक्र है, इतना मैं तैयार करके आया था, पता नहीं वहाँ पे ये पता ये चला ना कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाने बंद हो रहे हैं। हाँ okay. तो खैर मैंने कहा आप वो दीजिए जगह, मैंने कहा जी आप चाहोगे तो सब चीज़ ठीक हो जाए। जाहिर है कि वो देश के प्रधानमंत्री हमारे और पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, उनका टक्कर।
0: तो जब आपको मैसेज या फोन जैसा भी आपके पास मैसेज आया कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है, उस समय आपका क्या रिस्पांस रहा, आपके मन में क्या चल रहा था?
1: मुझे ये चला, मैं अपनी नमाज पढ़ के बैठा था तो एक फोन आया लोकल से, और उस दिन मेरे घर में कोई नहीं था।
0: ओके।
1: ना मेरी वाइफ ना मेरी बेटी, कोई अकेला मैं था।
0: अच्छा।
1: तो मैं किसी का लोकल वैसे फोन उठाता नहीं।
0: ओके।
1: तो नमाज पढ़ के मैंने कहा देखूंगी कौन है किसका फोन, तो मैंने देखा तो वो नाम आया। मैंने कहा इस नाम के तो मेरे एक दोस्त के ड्राइवर थे और वो उन्होंने वहां से हटा दिया। मैंने पता नहीं वो किसी परेशानी में बेचारे मुझे फोन किया, तो मैंने उन्हें फोन किया तो यहाँ से फोन उठाया, कहने के सर हमारी गुलफाम जी से बात हो सकती है? मैंने कहा बात कर रहे हैं। कहने सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, ये 25 जनवरी की शाम की बात।
0: अच्छा।
1: तो कहने के सर आप सरोदा रवाब पे? मैंने कहा जी। कहने सर एक बार और आपको बधाई देते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने उनसे पूछा कि ये TV वगैरह पे तो आ जाता है ना और नेट पर? कहने हाँ एक घंटे में अभी सब जगह। तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मेरी बहन क्या गई हुई थी, मेरी वाइफ, मेरी बेटी हैं, मेरी भांजी हैं, तो सब लोग खुशी के मारे रोने लगे। बल्कि सबसे पहले मैंने जो फ़ोन किया था अपने पीरो मुर्शिद को किया था।
0: ओके।
1: उन्होंने 8 दिन पहले कह दिया था तुम्हें खुशखबरी मिली।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब यश भारती अवार्ड मिला था तब भी कह दिया था 3 दिन पहले।
0: अच्छा।
1: जब भाई तुम्हारे पास खुशखबरी आ रही है,
0: मतलब उनको भविष्यवाणी हो जाती थी आपके प्रति?
1: हाँ, मेरी क्या बातों की प्रति हो जाती है।
0: अच्छा।
1: तो ये उनका करम पीरो मुर्शिद का, बहुत सी चीजें सिखाई ना हमें कि बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं कहना, जो चल रहा है चलने दो, तुम्हें क्या करना है वो तुम करो, आपने जो करना है वो आप करें, वो क्या कर रहा है वो उसके ऊपर जाओ। और पूरे हिंदुस्तान से प्यार बहुत मिला, बहुत ज़्यादा। और एक ज़माने में तो पंजाब में मैं जब क्लास के लिए जाता था, क्लासेस के लिए, तो ट्रेन में बैठा होता था मैं, पता चला एक पानी की बोतल आई
0: जी,
1: और एक बार तो 13-14 बोतलें रखी हुई थी पानी। तो मैंने कहा भाई नहाऊं क्या मैं इस बोतलों से? बहुत सारे बैठे हुए होते हैं ना उस ट्रेन में
0: जी,
1: जो जानते थे या मुझे सीख रहे, जिनके बच्चे सीखते थे
0: जी,
1: जिन्होंने मुझे सुना हुआ था
0: जी,
1: तो वो देख लेते थे अरे उस्ताद जी घर में, अब वो खुद नहीं आते थे, भिजवा देते पानीपत जब आता था तो वहां पे पकौड़े आ जाते थे बहुत सारे।
0: अच्छा, आपको पकौड़ों से बहुत प्यार है?
1: नहीं, प्यार नहीं है, वो वहां के मशहूर थे, कभी किसी ने देख लिया होगा खाते हुए पकौड़े। बड़ी अच्छी अच्छी वैसे संगीत है
0: जी,
1: और बड़े हर प्रोग्राम जो होता है ना
0: जी,
1: वो एक नई वो लेके आता है। अब जैसे मानिए मैं यहाँ पे जो आप प्ले करूँ 5 मिनट 10 मिनट, तो वो भी एक अपना अलग ही।
0: मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे तानसेन जी है संगीत में, उनके लिए कहते हैं कि वो जब राग मल्हार गाते थे तो बारिश आ जाती थी
1: जी,
0: और या दिया भी जल जाता था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं
1: जी।
0: लेकिन आजकल के जनरेशन के लोग बोलते हैं कि ये सब काल्पनिक है, ऐसा होता नहीं।
1: ना ना ना, गलत है। दरअसल में क्या है, मैं बताऊँ, ये अपने पिताजी का किस्सा सुनो, मैं जिन्होंने मुझे भाई रवाब दिया ना, क्या बाप रवाब है सर गुरु जगदीश सिंह महाराज, तो मेरे पिताजी 65 में गए थे वहाँ बजाने होली के टाइम पे, तो उन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया था जब उन्हें पता चला मैं उनका बेटा। कहने लगे आपके पिताजी आए थे बहनी साहब बजाने के लिए और राग देश बजा रहे थे, पंडाल में 5,000 लोग बैठे, हम बैठे, हमारे उनके पिताजी भी उस वक्त जिंदा थे गुरु प्रताप सिंह महाराज जी। कहने लगे आपके पिताजी का वाइट लिबास वाइट टोपी और राग देश बजा रहे, अचानक सब लोग खड़े हो गए और 15 मिनट तक सब खड़े हुए और आपके पिताजी बजा रहे थे। 15 मिनट के बाद ऐसा लगा किसी ने हमें हिलाया, उसके बाद फिर हमारे पिताजी ने सबको इशारा किया, खुद भी बैठे ऑडियन बैठे, तो वो कहते थे कि आज तक हमें नहीं पता उस महफिल में क्या होता और कौन आया था।
0: ओके।
1: और अपने फादर का एक और किस्सा सुनो, पंजाब में आज भी वो बुजुर्ग लोग होंगे जिनकी उम्र होगी 80-90 साल, जिन्होंने वो सुना राग बसंत है
0: जी।
1: तो जब मेरे फादर राग बसंत बजाते थे तो लोगों से सुना है मैंने कि ऑडिटोरियम का जो कलर है वो बसंती हो जाता था।
0: अच्छा।
1: और पब्लिक एक दूसरे को देखती थी तो बसंती कलर दिखता था। तो हमारे हिंदुस्तान का जो म्यूजिक है ऐसी थोड़ी इसका वो है।
0: तो फिर ये जो फोक इंस्ट्रूमेंट है रबाब, आपने इसको क्लासिकल में कैसे बदल दिया और आपको कैसे ख्याल आया कि एक फोक इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं?
1: देखिए, हर चीज का ABCD जो है ना वो क्लासिकल है, सारे गांव में पादा है, चाहे आप फोक चाहे गजल कुछ भी गाएंगे आपको ये सरगमें तो सीखनी पड़ेगी। जब आप सरगम सीखते हैं तो फिर सरगमों के साथ राग हैं। अब आपको राग कौन कौन से पसंद हैं, क्या कुछ फेवरेट राग होते हैं, उन रागों पे आपने एक कमांड कर ली। अब क्योंकि मैं सरोद भी बजाता हूँ तो रवाब को मैंने इस तरह से ट्रिड्यूस किया कि इसमें जब राग बज सकता है सरोद में तो रवाब में भी बजना चाहिए
0: जी।
1: हाँ भाई, फ्लूट में बजता है राग, ये सेंतूर नहीं है, सेंतूर भी ये फोक साज था, ये ईरान का साज है, लेकिन इसको हमारे यहाँ क्लासिकल में लेके आए। तो इन लोगों को देख के सोच के कि जब इन साजों में बज सकता है क्लासिकल तो रवाब में बज, मेहनत कर और मेहनत करके सिखाना है और समझाना है। आप मेहनत करते हैं कामयाबी हो जाते हैं
0: जी,
1: मेहनत नहीं करते तो कामयाब नहीं हूँ। कोई भी काम बिना मेहनत के कामयाबी नहीं हूँ
0: जी।
1: तो बहुत मेहनत करी, रात अभी भी कभी दिल नहीं चाहता, थकान हो जाती है, लेकिन यही होता है, नहीं नहीं कम से कम 1-1.5 घंटा। तो
0: बहुत अच्छा है सर। तो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन के लोग हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं, कई बार यूट्यूब से सीख लेते हैं, ओवरनाइट सिंगर बनने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: देखिए, ये तो हकीकत है, ये जो दौर है ये बहुत फास्ट है, इलेक्ट्रिक मशीन आ गई हैं और आदमी भी इलेक्ट्रिक हो गए हैं
0: जी।
1: अब यहाँ बैठे हुए अमेरिका में बात हो रही
0: जी,
1: वो हमें देख रहा हूँ, उन्हें देख। तो अगर किसी को अगर क्लासिकल म्यूजिक सीखना है कुछ तो टाइम देना और इसको देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो ये धरोहर है ना, हमारे हिंदुस्तान की धरोहर जो ये शास्त्रीय संगीत और ये जो म्यूजिक है ये एक दिन विदेशों में होगा, फिर वहां से जॉनसन आ रहे होंगे गाने के लिए और पीटर आ रहे होंगे बजाने के लिए।
0: बहुत सुंदर ख्वाब है आपका।
1: हाँ जी। तो भाई ठीक है, नहीं संगीत की तो कोई वो नहीं है ना
0: जी,
1: लेकिन जो हम लोगों की एक फीलिंग होती है ना
0: जी
1: बजाते वक्त, तो वो फीलिंग हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में है वो, उनके ब्लड में नहीं है। माँ तो 10-11 साल का बच्चा हुआ घर दिखा दिया भाई जाओ तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है ना। हमारी यहाँ जो है कि बचपने से लेके बड़ा जब तक नहीं होगा बच्चा, तो हमारे बड़े उसको तालीम देते रहते हैं। अब ये उसका वो है कि वो ले या नहीं, लेकिन हमारे बड़े वो तालीम देते रहते तो बहुत फर्क हो गया।
0: सही बात है।
1: वहाँ 11 साल में 10 साल में, अभी मेरे 2-4 मिलने वाले हैं अमरीका में, एक तो मेरी स्टूडेंट है, उनके बच्चे ने फोन कर दिया पुलिस को, मेरी मम्मी ने डांटा फाइन लगा दिया और वार्निंग दे दिया आइंदा मत करना।
0: बट ये सभी चीजों से ये सीखने को मिलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी अच्छी है।
1: बहुत रिच है भाई।
0: बहुत। तो इतना खराबी होने के बावजूद भी अभी भी हमारी संस्कृति में अच्छा ही बहुत कुछ
1: नहीं, हमारी खराबी और अभी कुछ नहीं है। वो तो आ जाते हैं, हर दौर में आते जाते हैं लोग ऐसे। औरंगजेब के टाइम पे आ गए थे कि साज नहीं बजेंगे, फिर बजे। तो ये दौर आते जाते रहे। हम लोग कलाकार हैं, हम इससे हमें। अब मुझे तो मोदी जी ने जितना प्यार किया था उस दिन
0: जी,
1: हाँ हाथ रख रख के, कभी यहाँ हाथ मार रहे कभी यहाँ हाथ मार रहे है, जाहिर है कि भाई एक संगीतकार से मोहब्बत प्यार करते, चार नहीं करते एक तो कर रहे हैं,
0: जो कर रहे हैं उससे खुश रहो।
1: और ये
0: बहुत सुंदर सर, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, आपको एक ही शब्द जवाब देना है
1: जी।
0: तो प्यार क्या है?
1: प्यार जो है ये इश्क है, और जिसे इश्क नहीं होगा वो प्यार नहीं करता।
0: अच्छा, अंतर क्या है दोनों में?
1: अंतर ये है, एक तो मिजाजी होता है इश्क, और एक मिजाजी तो वो होता है जो दुनियावी है, एक हकीकी होता है जिससे हो गया हो गया, अब चाहे वो बुरा है या भला है उससे इश्क हो गया हो गया। अब भला कौन है और अच्छा कौन है वो एक ही है, वो है ईश्वर।
0: जी।
1: और ईश्वर सब में है, मुझ में नहीं है, आप में भी। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, वो इश्क है जो मेरे अंदर है, जो वो जगह है।
0: शांति क्या है?
1: शांति सुकून, अपने दिल को एकदम पीस रखना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके बारे में भला सोचना, वही शांति।
0: देश क्या है आपके लिए?
1: देश मेरे लिए पहले, हाँ तो हमारे मजहब में हमारे पीर ने बताया कि सच्चा मुसलमान वह है जो देशभक्त होगा, और जो देशभक्त नहीं होगा वो मुसलमान नहीं होगा।
0: बहुत सुंदर सर। संगीत क्या है?
1: संगीत तो साधना का नाम, हाँ साथ ही जाओ, सात सुर हैं और इन सुरों को साध लिया वो संगीत है, और वो साधन, और जैसे मेडिटेशन सब चीज आ जाती है।
0: बहुत सुंदर सर। सो अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो भी श्रोता यहाँ के सुन रहे हैं?
1: बस मेरा संदेश तो यही है कि अच्छा इखलाक हो, और किसी से गलती हो जाए तो उसे फौरन माफ कर, इखलाक अच्छा हो, घर में मेहमान आ जाए तो अच्छे इखलाक से, आपके यहाँ रोटी नहीं है नमक का पानी पिला दो उसे, उसको लगे कि यार देखो कितनी मोहब्बत से, किसी ने अगर चोट मारी है या कोई तकलीफ पहुँचाई तो उसे माफ़ कर दो, फौरन माफ़ कर। ये दो काम जिसमें आ जाएंगे ना उसे तीसरे काम की जरूरत, क्या ख्याल है आपका?
0: सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इतनी कीमती समय लेकर के आज आप आए हमारे इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन में, ये हमारे लिए सौभाग्य से भी ज्यादा एक ऑनर है हमारे लिए।
1: मेरे लिए
0: आज आप आए और आपकी विचारों को, आपकी साधना और आपके परिश्रम के बारे में हमें भी रूबरू कराया, और हमारी श्रोता भी बहुत ही धन्य के पात्र है कि आपको सुन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, और मेरे भारत के वासी सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारा देश ऐसे ही आगे चले।
0: शुक्रिया।

कुछ तार, कुछ औजार और कुछ ख्याल, इन सबको जोड़ करके बनाया गया एक वाद्य यंत्र। लेकिन उस वाद्य यंत्र को जिन उंगलियों ने बजा करके जादू बिखेरा, जिस मन ने अपने भावों को उस यंत्र से मेरे तक, आप तक, हम सब तक पहुंचाया, वो कितना कमाल का था। आज हमने सुना गुलफाम अहमद जी और आरजे कृष्णा के बीच की चर्चाओं में कि कैसे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे हुए उस्ताद गुलफाम अहमद जी ने रबाब को देश और दुनिया के सामने जिंदा रखने का अपना प्रयास जारी रखा हुआ है। ऐसे ही एक और खास दोस्त, खास मेहमान के साथ हम दोबारा आपके सामने आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए यशस्वी भारत कार्यक्रम से जुड़े रहें, 90.4 FM रेडियो मधुबन सुनते रहें और मुस्कुराते रहें।

0: नॉन। आज हमारा जीवन शब्दों, आवाजों और सूचनाओं से भरा हुआ है। मोबाइल की घंटी, संदेशों की बीप, टीवी की आवाज, सोशल मीडिया का शोर, लगता है जैसे मौन हमारे जीवन से गायब ही हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ शांत होता है तभी तो हम खुद से मिलते हैं। आज का विषय है मौन का महत्व, शब्दों से परे की अनुभूति। मित्रों, मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, मौन वह अवस्था है जहां मन शांत हो, विचार धीमे पड़ जाए और आत्मा बोलने लगे। भारतीय संस्कृति में मौन को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। ऋषियों ने ज्ञान शब्दों से नहीं, मौन के माध्यम से पाया। कई बार गुरु ने शिष्य को उपदेश नहीं दिया बल्कि बस मौन में बैठा दिया और वही मौन जीवन बदलने वाला बन गया। क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से अनुभूति शुरू होती है। मित्रों, हम दिन भर बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन क्या हम सुनते भी हैं? दूसरों को सुनना तो दूर, हम खुद को सुनना भी भूल गए हैं। मौन हमें सुनना सिखाता है, अपने मन को, अपनी भावनाओं को और अपनी अंतरात्मा को। आपने अनुभव किया होगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो शब्द आग बन जाते हैं, एक वाक्य रिश्तों में दरार डाल देता है। लेकिन यदि उसी क्षण हम मौन चुन लें तो वही मौन रिश्तों को बचा लेता है। कई बार एक क्षण का मौन हजार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। आज की सबसे बड़ी समस्या बाहर का शोर नहीं है बल्कि सबसे बड़ी समस्या है भीतर का शोर। चिंताएं, तुलना, भय, अपेक्षाएं, ये सब मन को थका देती हैं। मौन उस भीतरी शोर पर धीरे धीरे ब्रेक लगाता है। इसलिए कहा गया है मौन सबसे सरल ध्यान है। आपको घंटों ध्यान करने की जरूरत नहीं है, दिन में केवल 5 से 10 मिनट शांत बैठकर सचेत मौन में रहिए। ना मोबाइल, ना बातचीत, ना विचारों से लड़ाई, बस श्वास को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे मन हल्का हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और जीवन में संतुलन आ रहा है। मित्रों, महात्मा गांधी का साप्ताहिक मौन केवल प्रयोग नहीं था, वह आत्मसंयम, आत्मनिरीक्षण और आत्मशक्ति का माध्यम था। आज हमें भी मौन को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। मौन हमें सिखाता है हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल अनुभव में मिलते हैं। तो आइए आज से हम मौन से डरना बंद करें, मौन को खालीपन नहीं पूर्णता के रूप में देखें। क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, मौन आत्मा की उपस्थिति है। इन्हीं विचारों के साथ मुझे अनुमति दीजिए। आप सुन रहे थे ज्ञान चिंतन, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक शांत रहें, सचेत रहें और जीवन में कभी कभी मौन को भी स्थान दें। सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें। श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी इज विद अस हियर. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस.
2: थैंक यू
1: सिस्टर. लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट, हम अगले एपिसोड में इसको दोबारा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मेरे मन की थॉट दूसरे के मन में पहुंच जाती है और दूसरे के मन की थॉट मुझ पर पहुंचती है, तो क्या जो नाराजगी भी है एक दूसरे के साथ, मतलब इतनी आसान है दूर करना या मुश्किल है?
2: नो, इट्स वेरी इजी, प्रोवाइडेड दोनों में से एक कॉन्शियसली डिसाइड कर ले कि मुझे इस रिश्ते की क्वालिटी को चेंज करना है. और फिर उसके लिए एक जो अटेंशन रखना पड़ेगा कि हमने सामने वाले के लिए एक भी गलत थॉट नहीं क्रिएट करनी है. अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि सामने से एक स्ट्रांग एनर्जी आ रही है. सी, एक है सिर्फ मेरी थॉट्स आपके बारे में, वो भी कई बार नेगेटिव चल रही है बिकॉज ऑफ माय संस्कार. सपोज मेरे अंदर क्रिटिकल होने का संस्कार है, मेरे अंदर जेलस होने का संस्कार है, तो फिर मेरी थॉट्स आपके लिए थोड़ी सी उस क्वालिटी की चल रही है. अब उनको ही चेंज करना, अटेंशन काफी रखना पड़ रहा है कि नहीं, ये संस्कार है लेकिन न्यू बिलीफ सिस्टम, ये है लेकिन न्यू. लेकिन जब सामने वाला भी हमारे लिए बहुत पावरफुल नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा हो, तो एक मेरी नेगेटिव एनर्जी, मेरे अपना वो संस्कार, फिर वहां से भी नेगेटिव थॉट्स. अब ये दो फोर्सेस में फिर कॉन्शियसली अटेंशन रखकर एक अच्छी थॉट क्रिएट करना, ये थोड़ा सा मेहनत ज्यादा.
1: जैसे समझो आप मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिले, ठीक है, आपने मेरी 100 फिल्में देखी हैं और कॉन्स्टेंटली आपको मुझसे नफरत है, आप मुझे कॉन्स्टेंटली कुछ नेगेटिव थॉट्स भेज रही हैं, बेकार है, कैसे रोल करता, ये आदमी भी खराब, इसके बारे में भी पढ़ा है, तो तब क्यों नहीं आती मुझ में?
2: आती है आपको तब भी.
1: कैसे आई? जब मैं आपको जानता ही नहीं.
2: आप जानते
1: आप भी मुझे नहीं जानते. आपने सिर्फ मुझे सिनेमा में देखा, मेरे बारे में पढ़ा, फिर
2: लेकिन आपके बारे में सपोज, इसीलिए सेलिब्रिटी जिसको हम कहेंगे पब्लिक फिगर, जिनके बारे में बहुत लोग चिंतन करते हैं, एनी प्रोफेशन, एनी पर्सन जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग चिंतन करते हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपना. क्योंकि आपको सपोज आपके बारे में आज 500 लोगों ने सोचा, ठीक है, एक है तो 50 लोग जो आपके क्लोज कॉन्टेक्ट है, लेकिन एक है कि आप पब्लिक फिगर है, या आप एक टीम के लीडर हैं, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं. सपोज आप एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरपर्सन हैं, आपकी कंपनी में 1,00,000 लोग काम करते हैं. अब 1,00,000 लोगों से आप मिलते नहीं हैं, वर्कर है, सिक्योरिटी है, स्टाफ है, मैनेजर है, फिर सीनियर मैनेजमेंट है, तो बीइंग अ चेयरमैन आप सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट से मिलते हैं. लेकिन आपकी पूरी जो 1,00,000 की टास्क फोर्स है वो आपके बारे में चिंतन करती है. जो वो आपके बारे में सोचते हैं वो सारी एनर्जी आप तक पहुंचती है, वो आपके लिए क्रिएट की गई है. इट्स लाइक सेंडिंग अ मैसेज, SMS किया, तो अगर 1,00,000 लोगों ने आज आपके बारे में सोचा तो 1,00,000 लोगों ने आपको SMS किया.
1: सबको मैं अगर बोनस प्रॉमिस कर दूं और बाद में लगे कि इतना सारा पैसा मैं क्यों दूं 1,00,000 आदमी को, अगर इतने 10,000 भी दूं तो 10,000 लाख हो जाए, नहीं छोड़ो, नहीं दूं, और सब मुझे कुछ उम्मीद में थे, कुछ लोगों की ड्रीम्स थी या शादियां थी, ये थी, प्रॉमिस करके नहीं दूं, तो सारे जब कोसने लग जाएंगे तो उसका इफेक्ट आएगा मुझ पर.
2: एब्सोल्युटली,
1: बिना मुझे कभी मिले भी
2: तो सब थॉट्स पहुंचेंगे आपको. सारे SMS रीच करने वाले हैं, मतलब सारे मैसेजेस रीच करने वाले हैं. अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग रखते हैं और कितनी आप एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, या कितना आप अपनी स्थिति को ऊंचा रखते हैं कि आप उस एनर्जी का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देंगे. लेकिन इसका सबसे इजी तरीका है श्रेष्ठ कर्म करें, ताकि ये जो लाखों से आपको एनर्जी मिलने वाली है, क्योंकि ऑपोजिट भी तो सच है ना, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो लाखों से मिलेगा, लेकिन अगर अच्छा सोचेंगे
1: तो
2: वो भी तो लाखों से मिलेगा ना, तो वो भी तो लाखों से मिले, दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए ऐसी पोजीशन में होना, ऐसे प्रोफेशन में होना, जैसे हम लोगों ने कई बार अवेकनिंग पे भी डिस्कस किया है, जैसे मीडिया है, पॉलिटिशियंस है, कोई स्पेसिफिक पॉलिटिशियन है, कई बार कंट्री का जो लीडर है, लाखों लोग चिंतन करते हैं उनके बारे में, करोड़ों लोग चिंतन करते हैं, उसी पर मैसेजेस भी बन रहे हैं, जोक्स भी बन रहे हैं, वो डिस्कशन का एक टॉपिक बन चुके हैं, सारी एनर्जी पहुंचती है, सारी एनर्जी उस आत्मा तक पहुंचती है, ये फैक्ट है, क्योंकि दैट पर्सन इज ऑन द माइंड ऑफ सो मेनी पीपल, तो वो तो एनर्जी पहुंचेगी ही। अब डिपेंडिंग ऑन उस आत्मा ने जिस तरह का कर्म किया होगा, उनको इतने आत्माओं से उस क्वालिटी की एनर्जी मिलेगी,
1: फिर क्या होगा,
2: तो एनर्जी तो पहुंचेगी ही, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं।
1: जिन्होंने यहाँ इतनी बड़ी बड़ी टेररिस्ट की एक्टिविटीज की बॉम्बे में, और कितने लोगों को, मासूम बच्चों को मार दिया, उनको करोड़ों लोगों की बैड एनर्जी पहुंची,
2: वो तो पहुंचेगी ही,
1: फिर
2: तो वो उनको अब उसको भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी ना, उस आत्मा को जिसको इतनी आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, वो आत्मा अशांत रहेगी, दुखी रहेगी, एक तो कर्म किया, एक तो वैसा कर्म किया, तो उस कर्म का फल, एंड फिर उस कर्म ने इतनी आत्माओं के अंदर दर्द क्रिएट किया, जैसे सपोज उन्होंने 1000 लोगों की जीवन नो उथल पुथल हो गई, तो वो एक डीप कार्मिक अकाउंट के 1000 परिवार अफेक्ट हो गए, लेकिन करोड़ों आत्माओं ने चिंतन किया,
1: दुख भी तो है उनको,
2: हाँ, तो वो चिंतन दुख का है ना। सपोज आई एम वॉचिंग इन द न्यूज, दिल्ली में बैठे बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ, लेकिन दिल्ली में बैठकर भी मैं उस आत्मा जिसने वो किया उसके बारे में कैसा चिंतन कर, तो सारा दिन में ऐसे जो लोग होंगे जो पब्लिक में होंगे फॉर देयर एक्ट, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म है चाहे कोई और कर्म है, उनको हमेशा एनर्जी मिलने वाली है, तो वो तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हम मासेस से कैसी एनर्जी ले रहे हैं, हम जिस प्रोफेशन में हैं हम सारा दिन कैसी एनर्जी ले रहे हैं, एक टीचर है स्कूल में, वो जिस तरह के कर्म करेगी उसको कितने सारे स्टूडेंट से एनर्जी मिलती है, एक डॉक्टर है वो जिस तरह के कर्म करेगा उसको सारे दिन में कितने पेशेंट से एनर्जी मिलती है,
1: दुआएं भी तो मिलती है
2: ना, दैट इज एनर्जी मींस दोनों,
1: नर्सेस को टीचर्स को इनको
2: एनर्जी मींस दोनों, दुआएं भी, लेकिन यही प्रोफेशन थोड़े से वल्नरेबल होते हैं कि थोड़ा सा टिप ऑफ कर जाए अगर दूसरी साइड पर, एक डॉक्टर को बहुत दुआएं मिलेंगी, लेकिन वही डॉक्टर अगर थोड़ा इरिटेट हो जाए, हमें से ठीक से बात नहीं करे, व्हेन आई एम इन पेन, अनएथिकल हो जाए, फिर उसको ऑपोजिट एनर्जी भी मिलेगी, तो एनर्जी तो वो चीज है जो सारा दिन ट्रांसमिट हो रही है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इसमें हमें और एक ध्यान रखना चाहिए कि हमें, हम औरों को एनर्जी भेज रहे हैं, हमें भी सारा दिन औरों से एनर्जी मिल रही है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जितना हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे, आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करते जाएंगे। लेट्स से मेरे बारे में 50 लोग अच्छा नहीं सोच रहे आज, ठीक है, अब वो 50 लोग अच्छा जो नहीं सोच रहे, उनके पास अलग अलग रीजंस होंगे, एक हो सकता है मैंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से 50 लोग अच्छा नहीं सोच रहे, एक हो सकता है उन 50 लोगों के अपने कोई संस्कार है,
1: जेलेसी,
2: एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, जिसकी वजह से वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, बट एनीवेज वो एनर्जी तो मेरे पास आ रही है। अब अगर मैं वीक हो जाऊं, वल्नरेबल हो जाऊं, तो फिर वो सारी एनर्जी मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी, एंड आई विल फील वेरी लो। अब मुझे ये ध्यान रखना ना, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं नजर लगी, किसकी नजर लगी, ये ऐसा हुआ ना क्योंकि किसी की नजर लगी, नजर लगी मतलब क्या, किसकी नजर लगी मतलब किसी ने मुझे देखकर या मेरी सफलता को देखकर या मेरी किसी प्राप्ति को देखकर एक अच्छी थॉट नहीं क्रिएट की, ओके फाइन, आप दूसरे की नजर को नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि नजर लगी, अगर किसी ने अच्छी नजर नहीं क्रिएट की, हमने अपने को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया था?
1: ये कैसे करना है?
2: जितना पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि मुझे नजर लगी, नजर लगी मतलब आई एम सेइंग कि मैं तो हूँ कमजोर, वल्नरेबल, जो जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचेगा वो मेरे ऊपर प्रभाव डाल देगा। यही पहली बात मैंने अपने आप को वीक कर दिया। अब दुनिया की सोच को तो नहीं बदल सकते। अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ अचीव कर रहे हैं, हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट भी करे साथ में कि सब लोगों को उस चीज को देखकर खुशी होनी चाहिए। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा ना कि कंपटीशन लोग फील करते हैं, कंपैरिजन फील करते हैं, तो वो औरों की सफलता को देखकर अच्छी थॉट नहीं क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि उनको नहीं मिली वो। अगर उनको भी मिल जाती वो हमारी खुशी में खुश होते, लेकिन उन्हें नहीं मिली तो उनकी जो उनका जो फेलियर है वो उन्हें हमारी सक्सेस को देखकर खुश होने नहीं दे रहा है। अब उनकी सोच हमारे लिए ये है कि क्यों इतना इनको मिला, इन्होंने इतनी मेहनत भी नहीं की, ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। अब अगर मैंने भी ये थॉट क्रिएट कर ली कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, लोग मुझसे जेलस हैं, तो मेरी भी स्थिति कैसी हो गई? वीक। व्हेन आई बिकम वीक, अदर पीपल्स वीक एनर्जी विल अटैक मी। अगर कोई मेरे पर कुछ फेंक रहा है, मुझे अपना दरवाजा नहीं खोलना है। सपोज मैं आपके घर के बाहर खड़े होकर कोई जोर से चीज फेंक, तो आप एक ही ध्यान रखना है, अपना दरवाजा खिड़की
1: बंद करें,
2: बंद रखना है। आप दरवाजा खिड़की खोलेंगे और कहेंगे कोई लोग मेरे ऊपर कुछ फेंक रहे हैं, और बाहर झांकने जाएंगे देखने के लिए कि क्या लोग फेंक रहे हैं, देन इट हिट्स, देन इट विल हिट। लेकिन वो जब हिट करेगा, वो थॉट हमने क्रिएट की, विच विल बिकम अ रियलिटी फॉर मी। मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन नजर लगी है, इसलिए अच्छा नहीं होने वाला है, इसीलिए अब प्रॉब्लम आने वाली है, इसीलिए
1: सिर्फ इतना ही सोचना कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगती है, ऐसे सोचने से थोड़ी रुक जाएगा वो।
2: ऑफ कोर्स रुकेगा।
1: मैं एक... सिर्फ खिड़की बंद नहीं करूं, बोलो बंद है, बंद है, बंद है।
2: खिड़की तो बंद कैसे करें? खिड़की बंद करना मतलब मेरी एक भी नेगेटिव थॉट नहीं होनी चाहिए। मीन्स वॉट? आई विल फोकस ऑन माई वर्क, वॉट एवर वर्क, मनी, पोजिशन, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है मैं अपने उस पे करूं। अगर दूसरों को देख उसको देख कर अच्छा नहीं भी लग रहा, आई अंडरस्टैंड दे आर नॉट हैप्पी, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको नहीं मिला है तो उनके प्रति कोई
1: नफरत
2: नहीं,
1: कंपैशन होना चाहिए।
2: कंपैशन नहीं होना चाहिए कि दूसरे को नहीं मिला वो?
1: हाँ,
2: कंपैशन नहीं होना चाहिए कि सामने वाला
1: मेहनत की।
2: सपोज आप एक एक्टर बने लेकिन दूसरा नहीं बना, वो आपको देख रहा है बार बार, उसने भी बहुत मेहनत की, उसके अंदर भी एक डीप डिजायर थी वो बनने की, उसने भी सब कुछ अपना घर छोड़ा, सब किया, आया, आपकी तरह ही मेहनत की, लेकिन वो नहीं अचीव किया तो वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन मतलब लो फीलिंग में चले गए कि मैंने आई एम अ फेलियर इन लाइफ, मेरे से नहीं हुआ, इनको कैसे मिला, मुझे भी मिल जाता जो इनको मिला है, इन्होंने तो उतनी मेहनत भी नहीं की, ये तो उतने नहीं अच्छे केपेबल है जितना मैं केपेबल, यू नो दिस इज नजर, ये नजर ये होती है, ये नजर है। तो ये थॉट्स लोग हमारे लिए क्रिएट करेंगे, कैन वी स्टॉप देम फ्रॉम थिंकिंग लाइक दिस?
1: तो इसका कवच कैसे पहने?
2: इसका कवच है कि हम उनकी क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं क्रिएट करें। एनर्जी को एनर्जी काटेगा। अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव सोच रहा है, मुझे उसकी क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है, विच मीन्स फियर नहीं, फर्स्ट फियर नहीं, दूसरा उसके प्रति नफरत नहीं। एंड अगर फियर की बजाय कॉन्फिडेंस कि हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, वी विल पुट इन आर बेस्ट एनर्जी, एंड उनके प्रति कंपैशन, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जब स्ट्रांग हो जाएगा तो बाहर की एनर्जी की इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। प्रोटेक्शन पर फोकस रादर देन वल्नरेबल कि क्या करे। अच्छा नजर लगी, काला टीका लगाओ। काला टीका क्या करेगा? सोच को रोक देगा, ये करो वो करो। वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग फिजिकल, चलो करो, करो सारी फिजिकल चीजें, लेकिन साथ में यहाँ भी तो चेंज करो ना। सिर्फ फिजिकल चीज तो नहीं प्रोटेक्ट करेगी, आज ये लाओ ऐसे करो नजर उतारो, नजर ऐसे नहीं उतरेगी, ये नजर नहीं उतरेगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जिसने नजर लगाई थी मतलब जिसने गलत सोचा था वो अभी भी सोच रहा है। अगर आपको उसकी सोच को ब्लॉक करना है ना, बेसिकली आपको वो सोच को ब्लॉक करना है, तो सोच को ब्लॉक करने के लिए सोच ही भेजनी पड़ेगी। सोच कोई फिजिकल चीज से नहीं ब्लॉक हो सकती। हाँ, जो चीजें हैं उनकी एक एनर्जी फील्ड होती है, लेकिन वो कितनी एनर्जी फील्ड होगी उसकी? मोस्ट पावरफुल एनर्जी फील्ड तो मेरी अपनी सोच है। हम क्या कर रहे हैं, जो फिजिकल चीजें वो यूज तो कर रहे हैं, विच इज ओके, लेट अस यूज कि क्या हमें फिजिकल, लेकिन साथ में हमारी एनर्जी फील्ड कौन सी है? हमारी भी नेगेटिव है। जब हमारी एनर्जी फील्ड नेगेटिव होगी, मतलब फियर की है सपोज, तो हम अगर ये फिजिकल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगाएंगे भी, ये कितना इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे ऊपर, ये कितना प्रोटेक्ट करेंगे हमको? तो अगर जो भी हम कर रहे हैं यू नो रिचुअल या जो भी मेथड फिजिकल प्रोटेक्शन का, वो तभी यूजफुल होगा जब उसके साथ साथ सोच को ब्लॉक करने के लिए सोच भी उतनी पावरफुल होगी।
1: अगर मुझे विश्वास है कि ये मुझे यहाँ धागा बांध देंगे या एक तावीज पहना देंगे तो मुझे कोई असर नहीं हो सकता, 100% मुझे विश्वास है, तो मेरा विश्वास काम नहीं करेगा?
2: आप पहन लेंगे ना, इट्स ओके। अगर कोई भी चीज आप पर फेथ है कि ये पहनने से मुझे नहीं होगा, आप पहन लीजिए।
1: पहनने का मेरा जो विश्वास है,
2: एब्सोल्युटली
1: मेरी एनर्जी बदल जाएगी,
2: परफेक्ट,
1: अब मुझे कोई कुछ नहीं
2: अब
1: कर सकता।
2: मुझे कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन कॉन्स्टेंटली अपनी थॉट्स को चेक करना, एक
1: डाउट तो नहीं?
2: नहीं, उस पे डाउट नहीं होता है। जो किया उस मेथड पे डाउट नहीं होगा, बिकॉज आपने कहा उस पे कम्प्लीट फेथ है। लेकिन एक फियर कि वो लोग कुछ और तो नहीं अब करेंगे, वो कुछ और तो नहीं कर देंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं,
1: क्या तकलीफ है, मैंने क्या बिगाड़ा?
2: यस, एंड वो इतने बुरे हैं, आपको वो लोग अच्छे तो नहीं लगेंगे ना जो आपको कर रहे हैं? फिर तो फिर हमारी सोच कैसे हो गई? इसीलिए जो कर रहा है उसके प्रति जब तक कंपैशन नहीं क्रिएट होगा, तब तक हमारी सोच ऊंची नहीं उठेगी। सी बेसिकली सामने वाले की जो सोच है उसकी क्वालिटी बहुत नीचे चली गई है ना। दूसरे के सुख में दुखी होना मतलब हमारी एनर्जी बहुत लो लेवल की हो गई है। अब मुझे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी लेवल को नॉर्मल की डेफिनेशन से थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ेगा, विच मीन्स कोई मेरे लिए अगर गलत सोच रहा है, मैं उसके लिए भी अच्छा सोचूं। ये है अपनी थिंकिंग को ऊंचा उठाना। जिसने ये कर लिया उसके ऊपर नजर नहीं लगेगी, और उस वो आत्मा क्या करेगी? क्योंकि ये करने के लिए हम मेडिटेशन यूज करते हैं। अपने आप से हम अपनी थिंकिंग को इतना ऊपर नहीं ले जा पाते, तो हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसे ही आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा, तो आपके ऊपर किसकी नजर पड़ी?
1: परमात्मा की।
2: अब अगर आपके ऊपर परमात्मा की नजर पड़ चुकी, तो आपको किसकी नजर लग गई?
1: परमपिता परमात्मा की।
2: परमात्मा की नजर लग गई, अब किसकी नजर लगेगी उसके बाद?
1: पावर मिल गया।
2: Why always look at all the people जिनसे हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है? हमारे को बहुत सारे लोगों से पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, पर हमारा फोकस कहाँ जाता है? लेट्स से आज आपके घर में कुछ अच्छा हुआ है, एक अचीवमेंट, एक सफलता, एक कोई भी चीज, आपको सक्सेस मिली है इन एनी वे। आपके आसपास लेट्स से 100 लोग हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब। अब 100 में से 80 लोग, 80 पीपल आर वेरी हैप्पी फॉर यू, वो बहुत जेन्युइनली अंदर से खुश हैं आपकी खुशी को देखकर। 20 पीपल लेट्स से आर लिटिल नॉट हैप्पी बिकॉज उनको नहीं मिली है। उसमें से भी हो सकते हैं 4-5 लोग जिनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन अब आप देखो हमारी अटेंशन किस तरफ जाती है। हमारी अटेंशन जाती है उन लोगों की तरफ जिनकी नजर हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब वो थॉट क्रिएट करने से हमारी अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव। जब हमारी स्थिति नेगेटिव हो जाएगी, जो 80 लोग हमारे लिए अच्छा भेज रहे हैं उसकी एनर्जी को तो हमने रिसीव ही नहीं किया ना। फिर हमारा सारा फोकस किसकी तरफ चला गया? जो हमारी तरफ नेगेटिव भेज रहा है. क्रिएट अ थॉट. ठीक है, कुछ लोगों को खुशी नहीं हुई है, लेकिन व्हाट अबाउट वो 80 लोग जो मुझे इतनी दुआएं भेज रहे हैं आज? क्या वो नजर मेरे ऊपर काम नहीं करेगी? अगर नजर लगती है, अगर
1: दुआ भी लगती है,
2: नजर वो भी तो एक नजर है. ये एक अच्छी नजर है, ये थोड़ी सी नॉट अच्छी नजर है. अगर हम इस बात में बिलीव करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नजर लगती है तो सबकी नजर लगती है. फिर
1: लास्ट टाइम आपने कहा था कि कुछ भी किसी को देने के समय पहले वो क्रिएट हम करते हैं, प्यार हो, नफरत हो, गुस्सा हो. जब मैं प्यार क्रिएट करता हूं तो सबसे पहले मुझे मिलता है, जब गुस्सा क्रिएट करके आपको देता हूं तो सबसे पहले मुझे लगता है. तो इसी तरह जब मैं बुरी नजर किसी को देता हूं तो क्या वो सबसे पहले मुझे नहीं लगेगी?
2: वो सबसे पहले हमें ही लगेगी ना.
1: अगर वो सबसे पहले मुझे लगेगी तो मैं ये कंपैशन करूं कि यार ये इतनी बुरी सोच मेरे बारे में सोच रहा है, ये कितना दुखी होगा अंदर से, और इसके बाद इसको वो जब लगेगी उसकी, और कितना पाप क्रिएट कर रहा है कार्मिक अकाउंट. भगवान इसकी मदद करो, मैं इसे माफ करना चाहता हूँ.
2: इज दैट ओके? दिस इज परफेक्ट. अब आपने क्या किया कि जिसने आपके लिए अच्छा नहीं सोचा आपने उसको दुआ दी. ये दुआ करे ना उसके लिए कि ये आत्मा खुद कितने दर्द में होगी जो वो इस तरह से ऐसा सोच रही है मेरे लिए, कुछ कर भी रही है गलत मेरे ऊपर, तो ये आत्मा खुद कितने दर्द में होगी.
1: मुझे कभी उस दिन पंडित मिला था, वो कहने लगा कि सुरेश भाई ये जो ब्लैक मैजिक है वो हम दूसरे को घिराने के लिए करते हैं इलेक्शन में, लोग फलाना हारना चाहिए. मैं वो नहीं जानता कि वो जो मैजिक वैजिक करने वाले लोगों का क्या असर होता है, लेकिन करवा तो मैं रहा हूँ ना, तो मुझे उसका क्या मिलेगा?
2: जो आत्मा, जो व्यक्ति ये करने तक पहुंच जाता है, मतलब उसकी अपनी स्थिति की रिफ्लेक्शन तो आप देख लीजिए पहले. मैं आपका नुकसान करने तक सोच लू, अपने नुकसान से मैं दुखी हूँ, इज ओके. मुझे अपनी अप्राप्ति असफलता से आपसे ईर्ष्या भी हो रही है, विच इज ऑल्सो ओके. मुझे आपकी सफलता पसंद नहीं आ रही, तब तक भी ठीक है. लेकिन मैं आपकी सफलता को रोकने के लिए कुछ तरीके अपनाओ, विच मीन्स मेरी स्थिति कितनी कितनी लो चली गई है, तो मेरे मन की खुशी तो मतलब खुशी हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी नीचे तक सोच चली गई दूसरे को गिराने के लिए, तो अपनी स्थिति इतनी लो है. पहले तो स्थिति लो, उसके बाद कर्म में ले आए उसको. एक होती है सोच, एक होता है उसको कर्म में ले आना, जो हमने पहले देखा बीइंग, डूइंग एंड देन बिकमिंग. तो बीइंग तक था पहले, तो सोच में था. यहां तक भी सोच लेंगे इनका अच्छा नहीं होना चाहिए,
1: क्यों तो नष्ट कर दो इनको,
2: इन्होंने कुछ इतना नहीं,
1: खत्म हो जाए,
2: सोच हो
1: जाए, ये हो जाए, लॉस हो जाए, खत्म हो जाए,
2: इतना तक भी अगर सोच लिया. लेकिन अभी वो सोच लेवल पर है, लेकिन तो भी हम कहेंगे ना कैसा सोचते हैं किसी के लिए. लेकिन अगर कर्म में भी ले आए कि किसी के लिए गलत कर दिया, इतना असफल करने के लिए किसी को, मतलब मेरी अपनी स्थिति कितनी कितनी दर्द में है. एक तो अभी मेरी स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि मैंने उतना लो फील किया तब कर्म किया, फिर कर्म का मुझे फल तो मिलना ही है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मुझे मिलेगा. दूसरे की सफलता को ब्लॉक कर दिया, दूसरे को दुख दिया, उसके परिवार में, बिजनेस में, जीवन में कठिनाई अगर जान पूछ के डाली ताकि उनकी सफलता, उनकी खुशी में रुकावट आए, तो मैंने पता नहीं अपने कितने जन्मों के लिए खुशी और सफलता को ब्लॉक कर दिया.
1: इस जन्म में नहीं मिलेगा,
2: इस जन्म में तो अभी वो ऑलरेडी खुश नहीं है, तभी तो ये कर रहे हैं, नहीं तो कोई कर ही नहीं सकता ना ऐसे किसी के लिए. आप सोचो, इट रिक्वायर्स, मतलब आपकी लॉजिक आपको पूरी तरह से फिनिश करनी पड़ती है ऐसा कुछ करने के लिए. आपकी कॉन्शियंस को आपको टोटली विवेक तो अंदर आवाज तो देगा ना कोई, लेकिन उस विवेक को कम्प्लीटली हमने दबा दिया है कि मेरे को ईर्ष्या जो मेरी है उसने मेरी लॉजिक के ऊपर इतना हावी हो गई है, तो अभी तो मेरी स्थिति बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही खुशी और चैन नहीं हो सकता है.
1: हम लोगों को तो पता नहीं चलता कि अगला आदमी दुखी है.
2: जिसने कोई ऐसा कर्म किया, नॉट नेसेसरी ब्लैक मैजिक और एनीथिंग, लेकिन कुछ ऐसे ही कर दिया, किसी को बोल के किसी का काम रुकवा दिया, यू नो, इवन स्मॉलर थिंग्स लाइक दिस वो अपने जीवन में खुशी और सफलता को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट हो गया।
1: क्या ये आदमी जो ऐसे करते हैं, ब्लॉक करवाने वाले, ब्लैक मैजिक करवाने वाले, दूसरों को बद्दुआएं देने वाले, जलने वाले, वाकई अंदर दुखी होते तब करते हैं?
2: जेलेसी, ईर्ष्या एक अग्नि की तरह है अंदर। ईर्ष्या हो रही है दूसरे के सुख को देखकर। ईर्ष्या हमेशा दूसरे की सफलता को देखकर होती है ना, और किसी बात से ईर्ष्या कैसे होगी? सपोज कोई फिजिकली बहुत अच्छा है दिखने में, किसी के पास पैसा बहुत है, किसी के पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, किसी के पास अचीवमेंट्स बहुत हैं, मुझे किसी का सुख देखकर अच्छा नहीं लगता है, तो ये कार्मिक अकाउंट सिर्फ ईर्ष्या में ही क्रिएट होता है, ये किसी और इमोशन में नहीं क्रिएट हो रहा है। अब हमें ये समझना होगा, सपोज आई एम जेलस ऑफ यू, ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आई एम जेलस ऑफ यू, मैं आपके बारे में गलत बोलूंगी, कोई गलत बातें भी फैलाऊंगी, कोई एनर्जी क्रिएट करूंगी, तो आपको लगेगा आप विक्टिम है, क्या इतनी मेहनत करके इतना प्राप्ति हुआ फिर भी आपके बारे में मैं गलत फैला रही हूँ, तो आप विक्टिम है। एक्चुअली आप विक्टिम नहीं है, मैं विक्टिम हूँ, बिकॉज मेरी स्थिति कितनी कितनी कितनी दुखी है, मैं खुश ही नहीं रह पाती हूँ दूसरों की खुशी को देखकर। तो पहले अभी स्थिति कमजोर, फिर अगर उसको कर्म में ले आए कि आपकी सफलता को रोकने के लिए कुछ कुछ कर्म कर दिए, तो डीप कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर दिया। किसी के दुख में सहयोग देना, कहेंगे पुण्य का खाता जमा हुआ। किसी के सुख में रुकावट डालना,
1: ऑपोजिट खाता हुआ।
2: तो जितना गुणा पुण्य इसमें जमा होता है कि कोई तकलीफ में था आपने उसको सहयोग दिया, कोई सुखी था, सफल था, सब ठीक चल रहा है उनके घर में, आपने ईर्ष्यावश उसमें रुकावट डाली, ये कौन से खाते में जाएगा, ये किस कौन से लेवल का कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा? तो उस आत्मा के प्रति हमें कैसा सोचना चाहिए? कंपैशन अब नेचुरल नहीं है, कंपैशन अब उनसे क्या गुस्सा करे जो खुद ही इतने दर्द में है, उनसे क्या नाराज हो जो खुद अपने से ही इतने नाराज है।
1: वाह,
2: अपने से नाराज है ना? ऐसी आत्मा के प्रति कंपैशन क्रिएट करना नेचुरल होना चाहिए, और जैसे ही आप वो कंपैशन क्रिएट करना शुरू करेंगे, आप अपनी प्रोटेक्शन लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने कौन सा कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया? मैंने कौन सा क्रिएट किया? आपके सुख में
1: बाधा,
2: दुखी हुई बाधा डाली। आपने कौन सा कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया कि मैंने गलत किया आपके साथ,
1: फिर भी
2: आपने दुआ दी या अच्छा सोचा, तो आपका लेवल ऑफ कर्मा इतना ऊंचा चला गया कि फिर मेरी ये लो लेवल एनर्जी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगी, वो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। और जब आपने ये श्रेष्ठ कर्म किया, आपको भी अनेक आत्माओं से इतनी दुआएं मिलेंगी कि फिर कुछ आत्माओं की बददुआएं बहुत ज्यादा असर नहीं करेंगी। सो नो फियर।
1: थैंक यू सो मच। सो लेट्स क्लोज दिस एपिसोड ऑन नो फियर।
2: थैंक यू
1: सो मच सिस्टर, थैंक यू वेरी मच।
3: द थॉट्स पीपल क्रिएट अबाउट अस विल ऑलवेज रीच अस। एनी रॉन्ग कर्मा इनवाइट्स नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम पीपल टुवर्ड्स अस। If people are jealous of us, they will create negative thoughts for us. If we create fear, then we are creating negative energy, and we will become vulnerable to consuming their negativity. Be compassionate for them. They are jealous because they have achieved less than us. If we understand their pain and create pure thoughts for them, it will become a protective shield for us. If someone sends us negative energy, let us remember there are also a lot of people who send us blessings and pure energy. Focus your attention on the positive energy. Influence of the negative will

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। और खाबो के सफर में हम लोग 50s और 60s के गाने सुनाते हैं और अलग अलग अल्फाबेट से अलग अलग अल्फाबेट को लेकर हम लोग आपके पास आते हैं और पूरा ही एपिसोड उसी अल्फाबेट का गाना आपको सुनाते हैं। आज हम लोग डी अल्फाबेट से आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आइए आज डी वाले जो है सारे ही बहुत ही अच्छे अच्छे गाने जो हैं, हमारे अक्षय जी हमारे साथ है जो इन गानों का कलेक्शन हमारे साथ लेकर बैठे हुए हैं। तो अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है खाबों का सफर इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अक्षय हमारे साथ है, बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाले हैं और वो भी डी अक्षर से। और अक्षय वैसे प्रैक्टिस भी करता है गाने का, तो कुछ कुछ गाने जो है वो जो उसको अच्छा लगता है उसे गा के भी सुनाएगा स्थाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम लोग चांद पे कुछ बातें कर रहे थे पिछले एपिसोड में, वैसे ही एक चार लाइनें आपके लिए जरूर कहना चाहूंगा। आज फिर चांद इतना उदास है, आज फिर तारे सोने लगे हैं, आज फिर तेरी दी हुई तन्हाई है, आज फिर हम रोने लगे हैं। हेलो अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है खाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा कि आप कौन सा गाना अभी हमें सुनाने वाले हैं और आपका जो डी वाला कलेक्शन है 50s और 60s का, उसमें से पहला गाना कौन सा आप बताने वाले हैं? जी
1: जी सर, डी अक्षय से जो मेरा पहला गाना है जो मेरे पिटारे में, तो वो गाने का जो नाम है पहले वो डाल भी दे पलकों की छाव में, और इस गाने को गाया है रफी जी ने और लता मंगेशकर जी ने, और उस जमाने में उनके डुएट गाने बहुत ही ज्यादा हिट होते थे, तो ये बहुत रोमांटिक सॉन्ग है। और

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, लता और रफी का ड्यूट गाना आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से ये पुराने गाने जो हैं हमें भर देते हैं, और कहीं ना कहीं एक जो भी गीत बनते हैं वो हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं। तो आइए फिर से मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अक्षय, अब आपका दूसरा कौन सा गाना है आपके पिटारे में?
1: जी सर, मेरे पिटारे में अब दूसरा जो गाना है वो जितने भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके दादी के लिए मैं उनको डेडिकेटेड करना चाहता हूँ। तो दादी अम्मा मान जाओ, ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। और 1961 में जो घराना मूवी आई थी उसमें आशा भोसले जी के आवाज में गाना रिकॉर्ड किया गया था, तो ये गाना सारे बच्चों के लिए मैं डेडिकेटेड करना चाहता हूँ। तो ये दादी अम्मा मान जाओ, ये गाना मैंने अपने लिस्ट में ले लिया।
0: ओके अक्षय, बहुत ही प्यारा सा गीत है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आज के ज़माने में शायद दादी दादा जो है घर में बहुत मुश्किल से रहते हैं, और रहते हैं तो वो बहुत ही खुश नसीब हैं, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है और लोग

0: बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे परिवार बनते जा रहे हैं और बहुत खुश नसीब वो लोग हैं जिनके घर में दादा और दादी रहते हैं। तो शकील बदायूं का लिखा ये गाना आप आशा भोसले ने गाया था और बहुत ही अच्छा गीत है और सभी बच्चों की भी वॉइस है इसमें। एक एक अलग फील आता है जहाँ पर दादी को मनाने की कोशिश की जा रही है और घराना फिल्म से है 1961 का। तो मैं चाहूंगा आप अक्षय थोड़ा सा स्थाई इसका गुनगुना दीजिए।
1: जी सर, लेकिन मैं दादी मेरी दादी और मेरी नानी के लिए मैं शायरी कहना चाहता हूँ।
0: जी स्वागत है।
1: दादी माँ का क्या कहना है, सोने चांदी का गहना है, दया धर्म की सूरत है मेरी दादी, ममता की है मूरत मेरी दादी। दादी अम्मा मान जाओ,

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, जहां पर दादी रोती हुई है और पोते पोती मिलकर उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही खूबसूरत ये गाना था, जहां पर आप सभी लोग फील कर रहे होंगे कि किस तरह से दादी को मनाया जा रहा है। तो चलिए, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हमें बहुत पसंद भी आता है, और दादी का जो है नाराज होना भी हमारे लिए एक अलग खुशी देता है, ताकि दादी के साथ रहने का मौका मिल जाता है। जी हाँ, जिंदगी हर कदम पर एक नया मुकाम देती है। मुसीबत में गिरकर संभालना फिर हौसलों का इम्तिहान लेती है। जो भंवर को चीर कर निकलते हैं, ये दुनिया फिर उनको सलाम करती है, उनको सलाम करती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम में अक्षय हमारे साथ है, जो खूबसूरत गानों का कलेक्शन अपने साथ लेकर आया है। तो आइए, आपके पिटारे में अक्षय, आप कौन सा गीत है?
1: जी सर, अभी हमने दो गाने सुन लिए डीके ऊपर से, तो अब मेरे जहन में आ रहा है कि अब एक कव्वाली क्यों ना सुन ली जाए।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: मेरे पिटारे में अब एक कव्वाली है जिसका नाम है दैर ओ हरम में बसने वालों। ये बहुत ही इंस्पिरेशन वाली कव्वाली है, तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जो बच्चे बूढ़े उनको भी बहुत मजा आएगा, इसलिए इसको मैंने ले लिया। दैर ओ हरम में बसने वालों, दैर ओ हरम में बसने

ओके अक्षय, बहुत ही प्यारा सा गजल आपने हमें याद दिलाया है, प्यारा सा कवाली है और ये जगदीश सिंह साहब का गाया हुआ है और बहुत ही प्यारा सा उनके गजल्स रहते हैं, गीत रहते हैं, फेस टू फेस इस एल्बम से है। तो मैं चाहूंगा, खामोश गाजीपुरी ने इसे लिखा है, तो आइए इस गजल को हम लोग सुनते हैं अभी।

और बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी हम लोग सैड मूड में हो या मन उदास होता है तो कुछ गजलें जो हैं कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है। कभी कभी एकांत में बैठकर इन गजलों को सुनेंगे तो जीवन का जो मर्म है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास आ जाता है। तो गजलों को भी सुनना चाहिए और उससे जीवन का मर्म सीखना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और अक्षय बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपके पास है। कहते हैं जिंदगी काटने से बेहतर है जिंदगी जीना सीखो। जिंदगी जीना है मेरा ये पैगाम लिखो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, बस मेरे दोस्तों सिकंदर की तरह सोचना सीखो। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। जी हाँ, आइए, ये नरगिस और राज कपूर पर पिक्चराइज किया था उस जमाने में। दिल को चुरा के खो मत जाना, रहना जाना भूल, इन कदमों में कुचल न देना मेरे दिल का फूल, ये बात उन्हें समझा दे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। तो आइए, ये भी रूठने मनाने वाली बात आती है इसमें, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो,

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे हैं और हमारे अक्षय जी बहुत ही अच्छा कलेक्शन लेकर आप सभी के साथ है और बहुत ही अच्छा जो गाने हैं 50s एंड 60s के उनके पास है जो हम सुन रहे एक के बाद एक। वैसे कहते हैं कि इन नफरत की दीवारों को तोड़ेंगे कौन, अगर दिग्गज नहीं करेंगे तो पहल करेगा कौन। इस दुनिया में बहुत रास्ते हैं चलने के लिए, अगर आजादी से पहले मरना पड़ता है, अगर तू मरने से डर गया तो तुझे आजाद करवाएगा कौन। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्षय, मैं चाहूंगा कि अब कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं।
1: जी सर, अभी जो मेरे लिस्ट में है तो उसमें रफी जी का एक शेर सॉन्ग है और हुई है धूल का फूल। दामन में दाग लगा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे, हम प्यार में धोखा खा बैठे। दामन में दाग लगा बैठे हम।
0: आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है और धूल का फूल 1959 का ये एल्बम से ये गाना है। एन दत्ता के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म, साई लुधियानवी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ ये गाना है और बहुत ही अच्छा गाना है। कहीं ना कहीं ये हमारे निजी जिंदगी से जुड़ जाता है। जाने अनजाने हमसे जो गलती हो जाती है तब उसका पछतावा हम करते हैं, तो ऐसे में ये गीत बहुत ही हेल्प करता है। तो आइए, माला सिन्हा पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन जो डी अक्षर से है 50s 60s का वो हम सुन रहे हैं। तो आइए पर्वतों को काट के राह बनाने का दम रखते हैं हम, गिर के तूफानों से उन्हें मजा चकाने का दम रखते हैं हम। ये तो तरस आ जाता है आसमान की खामोशी को देखकर, वरना उसका भी सीना छीनकर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। तो आइए बहुत ही खूबसूरत गीत हम अभी सुनेंगे। अक्षय बताइए कौन सा गाना है अभी आपके पास?
1: जी अभी जो मेरे पास जो गाना है वो गांधी जी पर पिक्चराइज किया गया है। जैसे वो इस गाने का नाम है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और इस गाने को आशा भोसले जी ने गाया हुआ है। और गांधी जी ने जो हमें आजादी दिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उनको डेडिकेटेड करते हुए ये सॉन्ग आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किया गया है। और ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, मैंने इसको अपनी लिस्ट में। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबर।

0: मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
1: बहुत ही प्यारा सा गीत है, चलो इस गीत का आनंद उठाते हैं। बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल सॉन्ग है, प्रदीप जी का लिखा हुआ, आशा भोसले का गाया हुआ, हेमंत कुमार का संगीत से सजा ये गीत जागृति 1954 का। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। बहुत ही अच्छा सफर चल रहा है हमारा, जहां पर हम डी अक्षय से बहुत ही अच्छे अच्छे गीत सुन रहे हैं। और अभी जो गीत आपने सुना, ये आजादी की याद दिलाती है, महात्मा गांधी जी की याद दिलाती है। एंड थैंक यू अक्षय, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया और गाया भी इसको थोड़ा सा, और हमने उसको सुना भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही खुशी हो रहा है कि ऐसे ऐसे गीत हम सुन रहे हैं। तो अक्षय, अभी आपके पास कौन सा गीत है?
1: अभी जो मेरे पास जो सॉन्ग है सर, वो मेरे फेवरेट सॉन्ग में से एक है। तो ऑफकोर्स वो रफी जी ने ही गाया होगा, और उसमें हीरो थे शम्मी कपूर, और 1964 में जो कश्मीर की गली मूवी आई थी उसमें से ये सॉन्ग है। गाने के बोल है कुछ इस तरह, दीवाना हुआ बादल।

ओके अक्षय, बहुत ही अच्छा गीत आपने याद दिलाया है। और शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया गया था। शक्ति सामंत का ये फिल्म था और बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही ये, और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इसके सारे ही गाने हिट थे। कश्मीर की कली 1964 का SH बिहारी ने इस गीत को लिखा था, आशा रफी ने इसे गाया था और OP नैयर का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। आइए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे गीत आप सुन रहे हैं। जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखो मेरे दोस्त, ऐसे मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि समय हो चला है, और एक आखिरी गाना हमारे सभी श्रोताओं के लिए कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
2: जी सर, अभी अगर आखिरी गाना है तो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। तो 1960 में जो मूवी आई थी बम्बई का बाबू, तो उसमें से मैंने एक सॉन्ग कलेक्ट किया और सुना, तो मुझे वो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसको आखिरी गीत के रूप में ले लिया। और उस सॉन्ग के गीत के बोल कुछ इस तरह है, दीवाना मस्ताना हुआ दिल।
1: चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। सुचित्रा सेन और देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था, राज खोसला का ये फिल्म था और उस समय बहुत ही पॉपुलर हिट फिल्म साबित हुई देवानंद के लिए, बम्बई का बाबू। जी हाँ, और उनके करियर के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित हुआ ये फिल्म। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, आशा रफी का गाया हुआ, सचिन देव बर्मन का संगीत, बम्बई का बाबू इस फिल्म का ये गाना है। तो चलिए, इसी के साथ अक्षय थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी अच्छी गाने आपने हमें याद दिलाया।
2: जी सर, थैंक यू आपको भी।
1: ओके, चलिए दोस्तों, जाते जाते, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ मुझे और अक्षय को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खम्मा गनीसा।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ज्ञान की ज्योति से जग को अलोकित किया, अद्वैत वेदांत का सत्य सबको दिखाया, सनातन धर्म को फिर से किया जागृत, आदि शंकराचार्य ने युग का पथ प्रशस्त किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपके खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम, और आज हम लोग बात करेंगे आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य जिन्हें हिंदू धर्म के महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना जाता, इनका जीवन प्रेरणादायक और बहुत ही अद्भुत रहा है। उनके जीवन की कहानी और शिक्षाएं आज भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आइए आज उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ पहलुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं जन्म और परिवार की, आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके जन्म के पीछे एक दिव्य कहानी है, जिसमें भगवान शिव ने उनके माता पिता को स्वप्न में दर्शन देकर एक महान पुत्र का वरदान दिया था, और ठीक ऐसे ही हुआ। शंकराचार्य बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। मात्र 2 वर्ष की आयु में उन्होंने वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत को कंठस्थ कर लिया था। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान ने उन्हें कम उम्र में ही एक महान विद्वान बना दिया। तो है ना कमाल की बात, ऐसी बचपन, ऐसी सुंदर कहानी शायद आपने किसी और की नहीं सुनी होगी। लीजिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको, उसके बाद फिर हम लोग संन्यास और अध्यात्म की यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आदि शंकराचार्य जी का। आप सुन रहे हैं स्पेशल एपिसोड, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ब्रह्म के सत्य का दिया अद्भुत ज्ञान, आत्मा परमात्मा का बताया एक समान, हर हृदय में बसे उनके उपदेश, शंकराचार्य का जीवन है सच्चा प्रकाश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार स्पेशल एपिसोड में, और हम लोग बात कर रहे थे आदि शंकराचार्य जी के बारे में। जी हाँ, आदि शंकराचार्य जी का मन बचपन से ही संन्यास की ओर था। एक दिन नदी में नहाते समय मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। इस घटना का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी माँ से संन्यास लेने की अनुमति मांगी और उन्हें ये अनुमति मिल गई। आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक यात्रा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू है। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते हुए हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और अद्वैत वेदांत के दर्शन को प्रचारित किया। उनकी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए जो आज भी भारतीय संस्कृति और धर्म में गहराई से जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य जी ने अपनी यात्राओं के दौरान विभिन्न धर्म और दार्शनिक विचारधाराओं के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया। उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य विचारधाराओं के साथ संवाद स्थापित किया और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। उनके तर्क और ज्ञान ने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी और संबल प्रदान किया। शंकराचार्य जी ने भारत के मुख्य जो तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार भी किया। उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुरी और द्वारका जैसे स्थानों पर मंदिरों की स्थापना की और उन्हें हिंदू धर्म के केंद्रों के रूप में स्थापित किया। इन तीर्थ स्थलों ने हिंदू धर्म को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शंकराचार्य जी ने चार मठों की स्थापना की, मुख्य रूप से ज्योतिर्मय मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी मठ। इन मठों ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ में एक और चीज इन्होंने किया, पंचायतन पूजा का प्रचार। शंकराचार्य जी ने पंचायतन पूजा की परंपरा को बढ़ावा दिया जिसमें पांच प्रमुख देवताओं की पूजा की जाती है। ये परंपरा हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों को एकजुट करने में सहायक रही है। अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को प्रचारित किया जिसमें आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान दिया गया। उनकी शिक्षाएं आज भी अद्वैत वेदांत के लोगों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा आस्था का स्थान है। आप सुन रहे हैं स्पेशल एपिसोड आदि शंकराचार्य जी के जीवन से। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चार दिशाओं में मठों की स्थापना की, धर्म की धारा को शुद्ध और उज्जवल की, हर शब्द में उनका अद्वैत्व का संदेश, शंकराचार्य का युगों तक रहेगा परिवेश। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आदि शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़ी हुई खास बातें आपसे शेयर कर रहा हूं मैं, और शायद आपको अपनी बचपन की बातें भी कुछ याद आ रही होगी। जब भी हम लोग प्रचार की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें साहित्य का योगदान होता है। तो शंकराचार्य जी भी एक महान कवि और लेखक थे, उन्होंने भी अपने साहित्य का सहयोग लिया और साहित्य के माध्यम से काफी प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों पर भाष्य लिखे। उनकी रचनाओं में सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी और विवेक चूड़ामणि शामिल है, जो आज भी आध्यात्मिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथियों, साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार हम लोग जो साहित्य उपलब्ध है, शास्त्र लिखे हुए हैं या फिर धर्म के जो ग्रंथ है उसे लिखा गया है, लेकिन उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो लोग इस भाषा को समझते हैं संस्कृत को, तो वो लोग लोक भाषा में, जो हमारी बोलचाल की भाषा में, उस भाषा में जब उन्हीं चीजों का रूपांतरण करके साहित्य के जरिए हम सभी को देते हैं, तो हमें वो चीज समझ में आ जाती है। और साहित्य इसी कड़ी का एक सुंदर पुल बनाता है, जो मनुष्य को उनकी भाषा में धर्म ग्रंथों की बातें और शास्त्रों की बातें समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिवानंद लहरी, विवेक चूड़ामणि जैसे ये किताबें जो है इनकी, ये हमें वही बातें एक लोकल भाषा के माध्यम से समझाती है। तो ये साहित्य इसलिए भी पॉपुलर हुआ। शंकराचार्य जी की बात करें तो माँ के प्रति उनका प्रेम बहुत था। संन्यास लेने के बावजूद भी शंकराचार्य जी ने अपनी माँ के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाया। उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, जो एक संन्यासी के लिए बहुत मुश्किल था। ये उनके मानवीय गुणों को दर्शाता है और उन्होंने वो सारी चीजें किया। आप सुन रहे हैं विशेष शंकराचार्य जी की, आदि शंकराचार्य जी की कहानी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आदि शंकराचार्य विशेष इनके बारे में बातें हो रही हैं। जैसे मैंने कहा, इनका माँ के प्रति अति प्रेम जो उन्होंने अपने कर्तव्य में बताया। अब ये जो व्यक्ति रहे, बहुत कम जिए लेकिन बहुत अच्छा जिए, है ना। जीवन लंबा नहीं, छोटा हो पर महत्वपूर्ण हो, और छोटे जीवन में बहुत काम किया हुआ हो, है ना। छोटा जीवन भी अनेकों के जीवन में मार्गदर्शन बन पाए तो क्या बात है। तो बिल्कुल शंकराचार्य जी का जीवन भी बहुत कम था, लेकिन कम समय में उन्होंने अनेकों लोगों को धर्म के बारे में आस्था जगाई। मात्र 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने अपनी देह त्याग दी। उनकी शिक्षा और कार्य आज भी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में जीवित है। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। शंकराचार्य जयंती वैष्णव शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करने और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को अपनाने का अवसर प्रदान करता है। आदि शंकराचार्य का जीवन और कार्य हमें सिखाते हैं कि ज्ञान, समर्पण और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव करने की प्रेरणा देती है। उनके जीवन की कहानी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का सूत्र है। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रोग्राम, जी हाँ, आदि शंकराचार्य जी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार और कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग आ गए हैं। आशा करूंगा कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है शंकराचार्य जी के जीवन कहानी को सुनकर या उनके सिद्धांतों को समझकर, है ना। तो अद्वैत वेदांत का इन्होंने काफी प्रचार किया। सिद्धांतों को देखते हुए जैसे कि हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ नियम और संयम होने चाहिए जिससे उनकी जीवन की शोभा बढ़ती है। लेकिन आज के समय में हम जीवन की शोभा तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन नियम और संयम को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान जैसे शंकराचार्य जी ने दिया, उनकी शिक्षाएं आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा सूत्र है जो उन्हें पढ़ते हैं या उन्हें याद करते हैं या उनके अद्वैत वेदांत का पालन करते हैं। शंकराचार्य जी ने समाज में नैतिकता और करुणा और निस्वार्थता जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को एक नैतिक और जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। हिंदू धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास उन्होंने किया। उनके कार्य ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और धर्म को एकजुट किया। आदि शंकराचार्य जी की आध्यात्मिक यात्रा न केवल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी बल्कि ये भारतीय धर्म और संस्कृति के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान भी था। उनकी शिक्षाएं और कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें आदि शंकराचार्य जी के बारे में। आशा करूंगा उनकी कुछ मूल्यों को अगर हम अपने जीवन में आज भी अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे हम भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म की संस्कारों को अपनाते हैं और अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ वेदांत का अभ्यास करें, चिंतन करें, मनन करें और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं ताकि आपका और उनका जीवन सफल हो सके। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। मात्र 32 वर्ष में रचा जीवन का इतिहास, सत्य ज्ञान और धर्म का किया उजहास, संन्यास की राह पर चल दिए थे वो शंकराचार्य, युगो युगों तक अमर हो, अमर हो, अमर हो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं। सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: नमस्कार, ओम शांति, मैं हूँ बीके पलक, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में, करियर ऑप्शन जीवन कौशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को और बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय में जिसके बारे में आप बहुत जानते भी हैं और वो बिल्कुल आपके नजदीक का विषय है। जी हाँ, विषय है आज कलाकार, आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक के बारे में बात करेंगे। एक कलाकार के लिए अलग अलग तरीके के कलाकार होते हैं, और बात करें तो कलाकार के रूप में करियर बनाने के लिए कई रास्ते हैं, जैसे ललित कला, प्रदर्शन कला और डिजिटल कला में डिग्री या डिप्लोमा करना। आप एक आजाद कलाकार के रूप में भी काम कर सकते हैं, या मीडिया विज्ञापन या गेमिंग जैसे उद्योग में काम कर सकते हैं। सफलता के लिए रचनात्मकता के साथ साथ समर्पण और व्यावसायिक कौशल भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम लोग देखें करियर के जो विकल्प है वो बहुत ज्यादा है इसमें, जैसे आप किसी और चीज में देखेंगे उसमें विकल्प कम होंगे, लेकिन यहाँ विकल्प बिल्कुल ढेरों है। जैसे कि ललित कला, प्रदर्शन कला, डिजिटल कला, वाणिज्य कला या फिर अन्य कला। अब इसमें देखेंगे कि जैसे ललित कला की बात करें तो इनमें आता है पेंटिंग, मूर्तिकला, ड्राइंग, चित्रण आदि आदि। दूसरा विकल्प जो हमने बताया था प्रदर्शन कला, जिसमें आता है अभिनय, नृत्य, संगीत आदि आदि। तीसरा आता है डिजिटल कला, जिसमें आता है ग्राफिक डिजाइन, यूआई यूएस डिजाइन, गेमिंग में तकनीकी कला आदि। फिर आता है चौथा वाणिज्य कला, जिसमें विज्ञापन, प्रकाशन या ब्रांडिंग के लिए डिजाइन बनाना। और उसके बाद अन्य विकल्प ये है जहां पर आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी, सजावट कलाकार भी बन सकते हैं। तो अब इन सारी चीजों को आप समझ गए होंगे कि एक कलात्मक रुचि अगर आपके पास है तो आप बहुत सारे विकल्पों के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके मन में डांस के प्रति या संगीत के प्रति या अभिनय के प्रति अगर आपके अंदर रुचि है तो ये आता है प्रदर्शन कला में। अगर आपके पास ड्राइंग के साथ साथ चित्रण करना या फिर मूर्ति बनाना या फिर पेंटिंग बनाना तो ये आता है ललित कला में, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर आप अगर डिजिटल वर्ल्ड की तरफ चलते हैं जहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएस डिजाइनिंग, गेमिंग की बात करें तो ये सारी चीजें भी डिजिटल कला में आ जाता है। फिर जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल और मार्केटिंग में भी कला यूज होती है, जैसे कि विज्ञापन, प्रकाशन या ब्रांडिंग के लिए डिजाइन बनाना। और फिर एक कलाकार को सही ढंग से अपना करेक्टर बनाने के लिए जो काम करते हैं वो आते हैं मेकअप आर्टिस्ट, सजावट कलाकार। तो ये सारे विकल्प आज हम लोग इसके बारे में गहराई से जानेंगे और आपकी रुचि इनमें से कहीं है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद कमाल का होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में एक सुंदर सा गीत आपके नाम, उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे जीवन कौशल की। जी हाँ, वो भी कलात्मक जीवन कौशल की। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी को आज का विषय बड़ा अंतर से जो है स्पर्श कर रहा होगा, क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रदर्शन तो करना चाहते हैं, अपनी कला का कुछ न कुछ जो है प्रदर्शन या खुद को प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये पूरा कार्यक्रम आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आवश्यक योग्यता और कौशल की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है आप नॉर्मल एजुकेशन 10+2 पास कर लें, उसके बाद आप ललित कला में अप्लाइड आर्ट, विजुअल आर्ट्स या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री या डिग्री ले सकते हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल हैं, जहां पर अभिनय या रंगमंच के लिए विशिष्ट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी उपलब्ध है। कौशल की बात करें तो यहाँ रचनात्मक तकनीकी कौशल या व्यावसायिक ज्ञान का मिश्रण आवश्यक होता है, जो आपको कौशल में स्किल में दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको एक बार जो है यहाँ से गुजरना पड़ेगा। कलाकार आपके अंदर है, उसे प्रोफेशनली या फिर अपने रोजगार परक बनाने के लिए, रोजगार परक बनाने के लिए आपको इन सारी चीजों को सीखना होगा, इसमें आपको महारत हासिल करना। उसके बाद आपके लिए अवसर बहुत जगह मिलेगा। अगर मैं बात करूं, आप इन चीजों को करने में थोड़ा सा टाइम जरूर दें। कई बार आपके अंदर कला होती है लेकिन उसको हम प्रॉपर तरीके से एजुकेट नहीं कर पाते हैं या प्रॉपर तरीके से उसके लिए सर्टिफाई नहीं होते हैं, तो हमारी कला होते हुए भी हम नहीं कर पाते। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगा। एक लेडी है जिनका नाम रीना, और वो मेरे साथ एक कार्यक्रम में जुड़ी थी, और उनको मैंने उनका जब प्रोफाइल पढ़ा तो काफी यूनिक लगा। अभी 60+ है, देखिए 60 साल तक उन्होंने LIC में काम किया और रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद उनका कोई ऐसा पैशन नहीं था कि मुझे कहीं और कुछ करना है, लेकिन हुआ ऐसे उनके साथ, ये एक सीनियर सिटीजन के ग्रुप में वो जुड़ गई, और ग्रुप में मैसेजेस चलते हैं। जैसे आप सभी भी ग्रुप बनाते होंगे तो व्हाट्सएप में आपको अलग अलग टाइप के मैसेजेस आते हैं, ऐसे ही मैसेजेस उनके पास आए। और एक मैसेज ऐसा था कि पीजेंट जो कंपटीशन होता है, और उसमें जो है आपका चेहरा और ये सारी चीजें डिजाइनिंग वगैरह वो बहुत सारी जो एक्टिविटीज है उसमें देखा जाता है, तो उसके लिए उन्हें क्वालिफाई करने के लिए आमंत्रित। और फिर जब उन्होंने उसके लिए अपना रिक्वेस्ट भेजा तो उन्हें फिर कहा गया कि भाई आप इसके लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए आप थोड़ा सा ट्रेन हो जाए। फिर उन्होंने सोचा कि करे ना करे, फिर उन्होंने आखिर में डिसीजन ले लिया मैं करूंगी, तो उन्होंने काम यस कहा, और फिर उसके लिए 7-8 दिन तक उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की, और इस तरह से फिर उनका जो है नाम हो गया और वो पीजेंट में ज्वाइन हुई, और नंबर उनका 3रा आया। और फिर उसके बाद उनका जो है देहरादून से है, तो देहरादून में जहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो उनको बुलाने भी लगे। इस तरह से फिर जूरी में भी गई, जहाँ पर उनको बड़े कलाकारों के साथ रूबरू होने का मौका मिला, और फैशन शो में भी उन्होंने पार्ट किया, जहाँ फिर उन्होंने फोटोग्राफी उसके लिए की, खर्चा किया थोड़ा सा, और अपने पैशन को एक नए तरीके से 60+ के बाद, 63 एज होने के बाद भी उन्होंने उन चीजों को अच्छी तरह से किया। तो वो बताती है कि मेरा ये कोई मतलब पैशन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था इन सभी चीजों में, मैं तो रिटायरमेंट लाइफ अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है, अच्छे से हमारा काम हो जाता, लेकिन 60+ के बाद या आप बढ़ते उम्र में क्या होता है कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन इस लेडी के साथ थोड़ा रिवर्स हो गया कि वो अब इंडिपेंडेंट हो गई, वो अपना ध्यान रखने लगी, और इसके लिए उन्होंने अलग अलग योगा जो है थेरेपी सीखने लगी, उसके लिए टाइम देने लगी, तो इस तरह से वो खुद का खुद ध्यान रखने लगी, तो परिवार वालों को भी बड़ा अच्छा लगने लगा, और जहाँ तहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उसमें इनको बुलाया जाता है, और फिर ये अपना अनुभव भी शेयर करती है, और जहाँ फैशन की बात होती है तो ये खुद भी इसमें भाग लेती हैं, और इनका मानना है कि आने वाले समय में कुछ फिल्म या फिर ड्रामा या नाटक, इसमें भी उनको
ऑफर्स आ रहे हैं तो उसमें भी बकायदा 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग लेने के बाद वो एक्टिंग में भी जाना चाहती है। तो मैं ये स्टोरी इसलिए बताया, ये एकदम ओरिजिनल स्टोरी है। आप मेरे रेडियो मधुबन के यूट्यूब पे भी या फिर बातें मुलाकातें प्रोग्राम में स्टोरी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक मोटिवेशन रहा कि अगर 60 साल के बाद भी अगर आपके अंदर का प्रदर्शन यानी कलाकार जागृत होता है तो उसके लिए आप टाइम देकर उसको एक्सप्रेस करते हैं तो भी उतना ही सम्मान आपको प्राप्त होता है। तो क्यों ना इसके लिए हम पहले से तैयार रहे, अगर आपके अंदर इन चीजों की रुचि है तो, है ना। तो आइए इसमें कार्य क्षेत्र क्या है, अवसर क्या है, इस पर हम लोग बातें करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं जीवन कौशल करियर ऑप्शन, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन FM सुनने वालों को रोहिताश्व गौड़ का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, खमा गनीसा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नयन वरदानी हस्त वरदानी, नयन वरदानी हस्त वरदानी, दिव्य मुस्कान सजाए हैं, ममता की मूरत है, स्नेह की सूरत है, पल भर में सबको अपना बनाए हैं, पल भर में सबको अपना बनाए हैं। तेरे साथ हमने ईश्वर का साथ चख लिया, तेरे साथ हमने ईश्वर का साथ चख लिया, तुम्हें नहीं दी विदाई हमने, अपने दिल में है रख लिया, अपने दिल में है रख लिया।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जहां पर हम कलात्मक आर्टिस्ट एज ए करियर के बारे में बातें कर रहे हैं। जी हाँ, एक कलाकार को और क्या करना है और कहां कहां वो अपना प्रदर्शन कर सकता है। एक बार आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का डिग्री आ गया या मास्टर डिग्री आ गया, या फिर आप इन चीजों को अच्छा कहीं ना कहीं काम आप कर भी रहे होंगे, इसके बाद डिग्री ले सकते हैं या आप पहले डिग्री लेके फिर काम कर सकते हैं। तो पहले जमाने में हुआ क्या करता था कि उस समय तो ऐसे डिस्कोर्सेस नहीं हुआ करते थे। उस समय तो आपकी जो है रुचि के अनुसार आप असिस्ट करते थे लोगों को, जहां पर भी थिएटर ग्रुप होते हैं तो उस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप अपना करियर को बनाते हैं। आज भी बॉम्बे जैसे शहरों में, मेगा सिटीज, मेट्रो सिटीज में थिएटर ग्रुप होते हैं, तो उसमें जुड़कर भी आप छोटा मोटा प्रदर्शन करते करते करते करते जितनी बार आप थिएटर में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं उतना आप सीख पाते हैं। और ये एक तरह का पैशन होता था और धीरे धीरे इसमें डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेस निकले तो लोग इसको पढ़ने लगे, सीखने लगे और उसके बाद इस इंडस्ट्री में जगह बना ले। तो आइए अब बात करते हैं, जैसे कि आपके लिए फिल्म है, मीडिया या फिर मनोरंजन का क्षेत्र में आप एज ए कलाकार फिल्म, टेलीविजन, प्रकाशन और प्रसारण में काम कर सकते हैं। दूसरा है जो लोग डिजिटली या कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं या फिर विज्ञापन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए डिजिटल डिजाइन, विज्ञापन एजेंसी और मार्केटिंग कंपनियां हैं, वहां पर वो अच्छा खासा अपना काम कर सकते हैं। तीसरा, शिक्षा संस्थानों में भी एक शिक्षण के अवसर मिल जाते हैं। आप पढ़ लिए हैं, आपने कला सीख लिया है तो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग टीचर्स तो हमेशा रहते ही हैं। उसके साथ में आजकल जो है एक्टिंग के डिस्कोर्सेस भी स्कूलों कॉलेजेस में भी कुछ कुछ जगह पे इसको अलग सा सिखाया जाता है। और फ्रीलांस के रूप में भी आप खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जब आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आप अपने घर में अगर स्पेस है तो वहां पर ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप डांस एकेडमी शुरू कर सकते हैं, आप संगीत एकेडमी शुरू कर सकते हैं, आप एक्टिंग एकेडमी शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, जो कलाकार आपके पास आते हैं रुचि वाले, उनको आप अपना एक्सपीरियंस के साथ सिखाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो थिएटर ग्रुप में जुड़ जाएंगे, आपके ही ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और फिर आप उनको जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद का अपना सेटअप अच्छा शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग जैसे कि एक कलाकार की आय के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। जहां कलाकार की कमाई की बात करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कमाते हैं और कुछ लोग कम कमाते हैं, ऐसी सिचुएशन है। और यहाँ पर कोई ऐसा परमानेंट फिक्स अमाउंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जाता है कलाकार की आयु शुरुआत होती है 20,000 से 22,000 हर महीने हो सकती है, जो अनुभव और क्षेत्र के आधार पर बदलती रहती है और बढ़ती भी रहती है। आप देखेंगे, आप अनुभव की बात अगर कहें हम लोग, बहुत सारे कलाकारों ने छोटे स्तर से शुरू किया और फिर आज जो है बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गए। आप किसी भी छोटे कलाकार को भी देखें, कॉमेडी वाला जो कलाकार होते थे उस समय शायद ही कम मिलता था, लेकिन आज कॉमेडी करने वालों को, स्टैंड अप कॉमेडियन को अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, एक एक्टर से भी ज्यादा वो कमाते हैं। आप देखेंगे टीवी शोज भी बहुत सारे चलते हैं, जिनको होस्ट करने के कलाकार होते हैं वो काफी पैसे कमाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि अगर एक छोटे कलाकार का भी जब पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो कितना पैसा आप कमा सकते हैं, है ना? तो इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कितना कमा सकते हैं। काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बस। सफलता के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ कड़ी मेहनत और समर्पण और व्यवसायिक कौशल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डेडिकेशन से काम करते हैं तो चीजें अपने आप होने लगती है और लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। तो इसीलिए एक कलाकार बनने के लिए सीखते रहना जिंदगी भर जरूरी है, क्योंकि कला कोई सीमित चीजें नहीं, ये असीमित है, सागर की तरह है, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। संगीत के लिए भी उसको सागर कहा जाता है कि जहां पर आप का सीखना खत्म नहीं होता, लाइफ टाइम तक सीखते रहते हैं।
लेकिन सीखते सीखते ही आप कमा भी लेते हैं और आप पहचाने भी जाने लगते हैं। तो कलाकार जो है कमाने से ज्यादा जो है उसकी पहचान भी रीच अच्छी खासी हो जाती है, उससे भी इनका जो है अपने आप ही सब कुछ होने लगता है। एक बार अगर आप पॉपुलर हो जाते हैं तो फिर आपको काम करने से साथ साथ आपको कई जगह पे एज ए सेलिब्रिटी बुलाया जाता है। बहुत सारे लोग का अपने घर का उद्घाटन के लिए, अपने बिजनेस का, मॉल उद्घाटन के लिए, इस तरह से बहुत सारी चीजें की जाती हैं जिसमें आपको अच्छा खासा टोकन अमाउंट भी मिलता है। तो ये भी है। और इसके साथ में एक बार आप पॉपुलर हो गए तो उसके बाद नहीं भी काम करेंगे, लेकिन आपके साथ एक ग्रुप जुड़ जाता है और ग्रुप को लेकर आप जो है बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर सकते हैं विदेश में जाके। लोग जो डांस एकेडमी आपका पॉपुलर हो गया तो आपके पास अच्छा खासा अगर ग्रुप जुड़ जाता है तो आप उस डांस एकेडमी के माध्यम से अलग अलग तरह के आप जो है कुछ ऐसे अपने शोस बना के रख सकते हैं, ऐसे कुछ चीजें बना के रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। हमारे दिल्ली नोएडा से एक एकेडमी है उनका डांस एकेडमी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया था। तो उनका कहना था कि शुरू शुरू में उन्हें सीखने के बाद उन्हें छोटा सा एकेडमी अपने घर से ही शुरू किया। परिवार वालों ने उनको अच्छा सहयोग दिया तो बच्चे जुड़ते गए ज्यादा, तो एक अच्छी रीच उनकी बन गई। उसके बाद फिर

कैसे अपनी कला के साथ कितना समर्पण और कितना डेडिकेशन आप कर रहते हैं। तो आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आइए, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग आ गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम वापस विचार विमर्श करें। आपकी कला की दुनिया में सफलता की परिभाषा आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है, तो इसीलिए आपको सफलता पाना है तो आपकी अपनी एक व्यक्तिगत प्राथमिकता भी उसमें होनी चाहिए। अपनी कला को दुनिया के साथ साझा करने के तरीके खोजने और अपने दर्शकों को खोजना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता है कि लोगों को ये चीजें पसंद है, इस तरह के एक्टिंग पसंद है, इस तरह के गाने पसंद है, तो आप उसका एक बंच बनाकर लोगों के बीच में जाएंगे तो दर्शकों का बहुत प्यार मिलेगा और जहां दर्शकों का प्यार मिलेगा वही आप पॉपुलरिटी को हासिल करेंगे। कॉलेज की फीस और स्कॉलरशिप के बारे में तो आप अलग अलग संस्थानों में अलग अलग फीसेस हैं, वेबसाइट में जाकर आप इसका पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस आर्टिस्ट एज ए कलाकार के लिए क्या क्या अवसर हैं, इस पर हमने बातें की। एक कलाकार के रूप में कैसे चुनौतीपूर्ण लेकिन संतोषजनक आपका करियर हो सकता है। शुरुआत में हर चीज चैलेंजेबल होता है, लेकिन जैसे आप चैलेंज को पार करते हैं सफलता या संतोषजनक परिणाम आपको मिलता है। और जो लोग रचनात्मक अभिव्यक्ति और आजीविका कमाने का अवसर जो है खोज कर रहे हैं, तो उनके लिए सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण, उत्कृष्ट कौशल और व्यावसायिक समझ की आवश्यकता भी बहुत जरूरी है। तो फिर से मैं कुछ बातें आपको याद कराना चाहूंगा, जैसे कि विविध क्षेत्र, कलाकार कई अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। आपको मैंने बताया जैसे ललित कला, फाइन आर्ट्स, प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिजिटल कला, डिजिटल आर्ट, वाणिज्य कला, कमर्शियल आर्ट्स और बहुत कुछ इसके साथ में जुड़ा हुआ है। कार्य की प्रवृत्ति, कलाकार मौलिक कलाकृतियां बनाते हैं, मौजूदा कृतियों की नए तरीकों से व्याख्यान करते हैं या अवधारणाओं को और विचारों को विकसित करते हैं। और इसमें नौकरी के अवसर तो कलाकार आजाद रूप से फ्रीलांसर होता है पहली बात, या विभिन्न संगठनों जैसे विज्ञापन एजेंसियां, फिल्म और गेमिंग उद्योग, प्रकाशन गृह, संग्रहालय और शिक्षण संस्थाओं में काम कर सकते हैं। तो ये सारे आपके प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप डायरेक्टली अपना काम कर सकते हैं ज्वाइन करके। यहां पर मैं एक और बात जरूर बताना चाहूंगा कि आप 10th 12th के बाद भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप अपनी आगे की डिग्री भी इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। इसी में आप मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। तो 12वीं के बाद आप इस फील्ड में, आर्ट फील्ड में जा सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में जो हमने बातें की और जितना भी जहां पर भी आपको लगता है कि आपके अंदर एक कला है, और बहुत सारे बच्चों को ड्रॉइंग बहुत पसंद आता है बचपन में, जब आप टीचर को ड्रॉ करते देखते हैं तो आपके अंदर से वाह करके एक शब्द निकलता है। मेरे पास, मैं जब स्कूल में पढ़ता था मुझे याद है, ड्राइंग टीचर आते ही वो एक सुंदर सा ब्लैक बोर्ड पे वाइट चॉक से बहुत सारी चीजें बना देती थी। तो हर चीज पे हम बच्चे जो है वाह वाह करते थे, और वही चीज जब हम अपने बुक में उतारने की कोशिश करते हैं तो तभी समझ में आता है इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि आप एक अच्छे कलाकार बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए कला की बारीकियों को सीखे समझे पहले, और उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करें, और जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो सफलता आपके कलम को चूम लेगी। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपना अच्छा करियर बनाएं। जीवन कौशल के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ढेर सारी खुशियां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नए करियर में, तब तक

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आपने एकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: एक नंतर पुनः एकदा स्वागत करते।
2: आपण पाहत होतो की मनुष्याचा पुन्हा

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को जब एक नए परिपेक्ष में देखना शुरू किया, एक सबसे बड़ी बात जो रिश्ते आज कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होते जा रहे थे, लगता था कि उन पे बहुत काम करने की जरूरत है, कैसे ये रिश्ते सही हो सकते हैं, एक जो हमें स्ट्रेंथ मिली, जो ताकत मिली, वो ये कि जो इमेज मैं क्रिएट करना चाहता हूँ जिस रिश्ते में मैं हूँ, वो मैं खुद कर सकता हूँ। वो इमेज क्रिएट करने के बाद जो वाइब्रेशंस जानी शुरू होती हैं, तो अपने आप खुद ब खुद वो रिश्ते सुधरने लग सकते हैं। ये हमने कहा था हर बार की तरह कि अनुभव करके देखें, क्योंकि जो जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते जाएंगे उनका अनुभव हमें सुदृढ़ करता जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। आगे और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो रिश्ते जो इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए कैसे सुदृढ़ हो सकते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो हमें बहुत आश्वासन मिला है आपके साथ जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं कि वो रिश्ते जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता, चाहे वो बच्चे के साथ का रिश्ता, साथ का रिश्ता, एक जो हमें ये मिला कि उन्हें ठीक किया जा सकता है। जहां हम बिल्कुल हताश हो गए थे, हमें लगता था कि इसमें कोई चांस नहीं है, देयर इज नो अदर वे, आई डोंट हैव अ चॉइस, वहां ये रास्ता दिखा और अपने ही हाथ में होता हुआ दिखा। अब ठीक है, टाइम लगेगा, भी काम कर सकती हूँ मैं उसके ऊपर। आज थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
1: तो सबसे पहला सूत्र जो हमने देखा कि वेयर डज द रिलेशनशिप स्टार्ट, इट स्टार्ट्स इन माय कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में जब दूसरे का चित्र निर्माण करें तो ध्यान से करें कि कौन से कलर्स यूज करते हैं, और कोशिश करें कि उनकी एक एक विशेषताओं के रंग से Let us create that picture in our conscious.
0: मैंने देखा, हमने मतलब देखा है हमने जब, तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है जब हम दूसरे की इमेज गंदी वाली क्रिएट कर रहे हैं,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई इट मस्ट बी हैपनिंग बट इट मस्ट बी मे बी इट मेक्स मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ,
0: कि मैं ठीक
1: हूं। That could be the only logic. अदरवाइज और कोई लॉजिक ही नहीं उस पर बैठता। जस्ट बाय सेइंग कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इट गिव्स मी द फीलिंग दैट आई एम बेटर। और दूसरा, इट ऑल्सो शायद गिव्स मी द परमिशन टू रिएक्ट विद योर बिहेवियर, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जब मैं संपर्क में आ रही हूँ तो आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। मैं कभी गुस्सा हो रही हूँ आपके साथ, कभी आपके साथ मैं परेशान हो रही हूँ, कभी आप पर मैं चिढ़ रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ व्हेन आई कम इन इंटरेक्शन विद यू। लेकिन वो सब मेरा जो व्यवहार है वो जस्टिफाइड कब होगा?
0: जब मैं ये कहूँ कि आप तो हो ही खराब,
1: नहीं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप अच्छे हो और मेरा व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर कौन खराब हो गया?
0: मैं।
1: सो दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम।
0: तो दोनों में से एक तो खराब होगा ना,
1: क्योंकि मेरा व्यवहार मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरा व्यवहार ऐसा है क्योंकि आप ऐसे हो। सो दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है, उसके लिए पहले मुझे अपनी सोच को चेंज करना है, उसके लिए मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, क्योंकि समवेयर इट डिपेंड्स ऑन विच कलर स्पेक्स आई एम वेयरिंग। आपने तो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना मैंने कौन से रंग का चश्मा पहना।
0: अगर आपने लाल पहन लिया तो ये ग्रीन भी आपको लाल दिखे।
1: यस, एंड फिर आपको उस लाल रंग के चश्मे से देखते हुए मुझे आप लाल ही दिखाई देंगे, और फिर मेरा रिश्ता किस कलर से जुड़ा? रेड से जुड़ा, बट एक्चुअली तो आपने ग्रीन पहना है। तो समवेयर माई रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द राइट फाउंडेशन। सो इट्स नॉट अबाउट आप कौन से रंग के हैं, इट्स अबाउट मेरा जो परसेप्शन का चश्मा है वो कौन से कलर का है। और जैसे आपने कहा कि हम ज्यादा क्यों नेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि अगर हम जितना नेगेटिविटी का चिंतन करते जाएंगे तो हमारा चश्मा कौन से रंग का हो जाएगा?
0: नेगेटिव।
1: अब आपके अंदर हो सकता है बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मेरा चश्मे का रंग ही नेगेटिव है, तो आप मुझे कैसे दिखाई देंगे?
0: कंप्लीटली नेगेटिव।
1: एंड फिर मेरा जो रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ेगा वो किस आधार पर होगा? बेस्ड ऑन दैट कलर दैट आई हैव क्रिएटेड विथ यू। तो यस, बहुत ईजी है कहना कि वो है ही ऐसे, और थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने ऊपर बैठ कर वर्क करके अपने परसेप्शन को चेंज करना। चॉइस इज माइन। क्योंकि जितनी बार आई एम गोइंग टू से वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी and I am transmitting negative energy, and then I will receive नेगेटिव एनर्जी एंड देन आई विल स्टे इन पेन
0: एंड
1: ये पूरा प्रोसेस मैंने क्रिएट किया. अब अगर मैं दर्द की बजाय खुशी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ तो मुझे अपने चश्मे का रंग चेंज करना पड़ेगा. रिलेशनशिप मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो हर स्टेप पर चेक करते जाए मैं कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूँ. स्टॉप थिंकिंग वो कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं. लेट्स से कि आपके अंदर 99 कमजोरियां हैं, फिर भी एक विशेषता तो होगी. अच्छा, इफ यू आर फाइंडिंग समवन, होगा नहीं, लेकिन यू आर फाइंडिंग समवन जिसके अंदर कोई विशेषताएं नहीं है, तो भी मैं कौन सी एनर्जी फिर उसको ट्रांसमिट करता हूँ, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन माय कॉन्शियसनेस. हम जो दृष्टिकोण से दूसरे को देखते हैं वो उस पर भी डिपेंडेंट है कि मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, बिकॉज वो मेरे चश्मे का कलर है.
0: इनफैक्ट यस, मैं पूरी दुनिया को भी एक्चुअली किस कलर से देखता हूँ.
1: यस, एंड दैट्स व्हाई सेम दुनिया एंड समवन विल से द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल एंड समवन विल से द वर्ल्ड इज अ बिग मेस.
0: एक्चुअली यस, यू नो, अगर हम डीप में जाएं, जिसको बुराई देखने की आदत है, जो बुराई करता है वो सबकी ही बुराई कर रहा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता उन्हें,
1: तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग बुरे नहीं है, लेकिन मुझे ही देखने का नजरिया. और इसीलिए परमात्मा ने आकर हमें कहा कि स्व परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. हमें औरों को चेंज नहीं करना, हम अपने एटीट्यूड को, अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं तो वही लोग, वो वैसे के वैसे होते हैं, दे डोंट चेंज. वही लोग हमें अलग दिखाई देने लगते हैं. व्हाट हैज हैपेंड, वेयर हैज द चेंज टेकन प्लेस, इट्स हियर. So it is very easy to look outside, little challenging to look inside, lekin solution yahi
0: par hai. Inside, yes.
1: To agar koi apne upar sachmuch mein kaam karke result paana chahta hai, to usko fir kaam to wahi karna padega jahan kaam ho sakta hai. Aap opposite direction mein kaam kare, you work on the relationship there, and fir aapko result nahi mile, fir aap aur frustrate hote jaye, aur fir aap aur ek dusre se katte jaye. We are getting nowhere.
0: Actually, very true. You know, हम कोशिश जब हम करते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ आज आएंगे तो मैं ठीक रहूंगी, और फिर मैं ठीक ठीक बिहेव कर रही होती हूँ, मैं सही बातें बोलने का प्रयास कर रही होती हूँ और मैं बोलती भी हूँ सही, लेकिन तब भी वो रिश्ता ठीक नहीं हो पाता क्योंकि
1: सोचते. अब देखो, हम सब ने ये आर्ट सा मास्टर कर लिया है कि अंदर भले हम नेगेटिव सोचते हैं,
0: ऊपर से मैं कुछ
1: उसको कन्वर्ट करके हम पॉजिटिव बाहर देते हैं, क्योंकि हमने सोचा रिश्ता मतलब क्या, कम्युनिकेशन. रिश्ता मतलब जो मैं आपसे बोलती हूँ, रिश्ता मतलब जो मैं आपके साथ करती हूँ, रिश्ता मतलब जो हम एक दूसरे के प्रति सोचते हैं. तो कहीं भी, कोई भी रिश्ते में अगर कहीं ऊपर नीचे आ रहा है, जस्ट स्टॉप एंड सी कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं इम्पोर्टेंट. आप देखो, हम जब सोचते भी हैं सारा दिन तो हम ये सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ. बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज आई फील कि मैं अच्छा तब फील करूंगी जब आप मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे. बट एक्चुअली मैं अच्छा तब फील करूंगी जब मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ. नो, डिफिकल्ट?
0: नो नो नो, यस एक्चुअली
1: सी,
0: हाँ,
1: जस्ट सी द कनेक्टिविटी. आई एम थिंकिंग कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो, आप मेरे बारे में अच्छा सोचो तो मुझे अच्छा लगेगा. बट एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग लाइक दिस, एनर्जी इज फर्स्ट फ्लोइंग लाइक दिस. तो मैं अगर आपके बारे में अच्छा सोचूंगी तो सबसे पहले मुझे अच्छा फील होगा.
0: ऑफ कोर्स, अगर वेरी ट्रू, अगर कोई मुझे व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई देख के, मतलब इफ आई लुक एट यू एंड आई फील गुड अबाउट यू,
1: आई फील गुड.

0: तो हम दर्द को खत्म करना शुरू कर देंगे। अब आपने तो जो किया सो किया, बट इफ आई गेट हील्ड तो मेरा आपके साथ रिश्ता कैसा हो जाएगा?
1: हाँ बिल्कुल परफेक्ट।
0: एंड द रिलेशनशिप
1: आपके साथ मुझे वो खत्म हो जाएगा ना, आपसे जो उम्मीद थी या आपसे ये एक्सपेक्टेशन
0: और आपके ऊपर जो ब्लेम था।
1: हाँ
0: पहली बात, आपके ऊपर जो मैंने ब्लेम लगाया था कि आप मेरे दर्द का कारण है, वो खत्म हो जाएगा तो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। आई हैव टू ओनली फॉरगिव माइसेल्फ। एंड अगर हम दूसरे को भी देखते हैं कि दूसरा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये हमने पहले भी देखा कि आई क्रिएट माय पेन एंड इसी तरह यू क्रिएट योर पेन, मैं आपका भी पेन क्रिएट नहीं करती हूँ। सो सिमिलरली If I see you in pain,
1: because of me,
0: yeah, and अगर आप दर्द में बहुत कुछ ऊपर नीचे बोल रहे हैं, react कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये स्मृति है कि आप दर्द में हैं because of your own pain, तो मुझे stable रहना मेरे लिए आसान है। और उसके बाद अगर मैं stable रहूं, तो मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा हो जाएगा?
1: Normal, stable,
0: normal. So everything just seems to fall into place. Not that it will get done today, but it becomes easier. ये करना संभव हो जाता है जो मुझे ये पता चलता है मुझे सिर्फ अपने को हील करना है, दूसरा जैसा है वैसा ही है। लेकिन वो तो ऐसे बात करते हैं, करने दो, लेकिन वो तो मुझे अब्यूज करते हैं, ये करते हैं, करने दो। व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आएगी दूसरी तरफ। लेकिन एक साइड भी दर्द में जाता फिर दूसरी साइड भी जाता तो दर्द की फ्रीक्वेंसी सिर्फ बढ़ती जाती।
1: सो गुड, मैं बात करते करते आई कैन सी सो मेनी रिलेशनशिप्स बिकमिंग मच बेटर। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, बाप बेटे का रिलेशनशिप, यू नो, कहीं एक जो एक कहा जाता था एक चुप कर ले और दूसरा। It can
0: Absolutely.
1: happen. It happens.
0: And no one can hurt me. I met a brother and उसने अपनी मदर से बहुत सालों से बात नहीं की थी बिकॉज कुछ हुआ था, पास्ट इंसिडेंट। एंड फिर वो प्रोग्राम के एंड पर आए और उन्होंने कहा कि माई मदर इज इन लॉट ऑफ पेन एंड आई एम इन लॉट ऑफ पेन एंड अब मेरे फादर नहीं रहे एंड माई मदर इज अलोन एंड यू नो वट एवर। आई सेड आप अपनी मदर से जाके बात क्यों नहीं कर लेते, एवरीथिंग विल बिकम ओके। एंड ही सेज नहीं, बट आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। ऐसे लेकिन उन्होंने जो किया सो किया, हम अब क्या कर रहे हैं? आप इतना जो दर्द अपने अंदर अब क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले आपको मिल रहा है, फिर आपकी वाइफ को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। वो एक रिलेशनशिप में नहीं रहता है वो दर्द औरों में भी जाता है। टू फिनिश दिस हाउ मच टाइम विल इट टेक? हाउ मच टाइम? गो टॉक एंड इट्स फिनिश्ड। ही डिड इट। After the program, he went there. Next day, he came for another program. See, it was very easy. Because it happens, it's very easy, but we time lagta hai. That's okay. That is my journey. I can take my time.
1: Actually, jis din ye realize ho gaya ki wo karan hai hi nahi meri pain.
0: Main hu aur wo mere haath mein hai. Ab mujhe kitni jaldi usko finish karna.
1: To theek hai, fir main apni marzi se le raha hu. Mujhe 10 din chahiye, mujhe 1 din chahiye, mujhe 100 din chahiye, mujhe 1 second chahiye.
0: Whatever. That's my choice. But at least the power
1: is in my hand now.
0: अब मैं अपने रिश्ते को जब चाहूं तब ठीक कर सकती हूं। पहले आई वॉज अ विक्टिम, तो मैं वेट कर रही थी और फिर मुझे सारे रिश्ते उल्टा बिखरते हुए दिखाई दिए क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि दूसरे लोग उनको ठीक करेंगे। सो दैट इज द फीलिंग ऑफ अ विक्टिम कि मेरे साथ तो कोई भी ठीक नहीं है।
1: मुझे
0: तो,
1: कितने सारे जो सीन्स हैं वो रिवाइंड होके बेटर रिश्ते दिखते हुए नजर आते
0: हैं। इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। So the second important point is who hurts who. I have to always remember I hurt myself. तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो labels हम लोगों को लगा देते हैं, तो एक बार मैंने label लगा दिया कनुप्रिया ऐसी है, लगा दिया अब आपके ऊपर label. अब हर रोज के interaction के बाद मैं उस लेबल के अंदर
1: एक एक incident
0: baggage भरते जाती हूँ, भरते जाते। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला,
1: देखा ये जस्टिफाई हुआ, yes. ये पुख्ता हो गई मेरी बात, ये लेबल ठीक हो गया।
0: हाँ, तो मैं वो लेबल लगाकर रोज उसमें बैगेज बैगेज भरते जाती हूँ। एंड जितना समय हम इस बैगेज को पकड़ कर रखेंगे उतना वो बैगेज
1: भारी होता जाएगा।
0: एंड इट कैन रीच अ स्टेज वेयर आई कैन स्टिंक इनसाइड बिकॉज आई हैव सो मच बैगेज।
1: मुझे ले डूबेगा ना वो, भारी होगा कि मैं डूब जाऊँ।
0: Yes, absolutely. तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पहले तो अभ्यास कर दिया है लेबल्स लगाने का, तो कहीं ना कहीं तो वो लेबल्स ही हम लगाना बंद करें। लेकिन उसमें फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा अब टाइम लगेगा इस यात्रा पर, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं

0: कि हम हर रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि एक एक लेबल के साथ बैगेज आज हमने क्या ऐड कर दिया था. इज इट पॉसिबल कि मैं वो बैगेज निकाल कर फिनिश करूं, उसको हल्का करूं, क्योंकि वो निकालने से हु इज गोइंग टू फील बेटर.
1: Because
0: so this is more about, you know, holding things about other people. So if I keep holding those things, यहाँ बहुत भारी होता जाएगा और फिर मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि मेरा ये सारा बैगेज तो और लोगों से बहुत भर जाएगा. तो बहुत ईजी है इसको अगर सारा दिन में हम कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही हम कुछ भरने लगे, यहाँ ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, स्टॉप, नो, I don't need this. This is unnecessary weight. I am not going to carry so much weight. So end of the day, kaisa feel hoga?
1: Light.
0: I will feel very, very light. So baggage jo Paramatma Shiv Baba bhi kehte ki ye itna bada bojh jo lekar sara din chalte ho, isko halka karo. And baggage is always about
1: others.
0: Others. जो मुझे लगता है कि हाँ नहीं मुझे कैरी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो मैंने जस्टिफाई करते जाती हूँ अपने आप को कैरी करना. तो कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही वो बैगेज रखने लगे उसी टाइम ही, क्योंकि ये बैगेज इतना भारी हो सकता है कि यहाँ तो दर्द देगा ही देगा, लेकिन यही बैगेज एक ना एक दिन कोई फिजिकल बीमारी का भी कारण बनता है.
1: और इनफैक्ट आजकल हम जितनी भी फिजिकल बीमारियां हैं उसमें पीछे कहीं ना कहीं जो मेंटल इलनेस है वो है.
0: कोई ना कोई हर्ट, कोई ना कोई गिल्ट, कोई ना कोई रिजेंटमेंट ये पकड़ के रखा, 5 साल 10 साल 20 साल इसको पकड़ कर रखा हुआ है, आज वो बीमारी का रूप ले लिया. वो तो वही है, तो वाई है अब सफर किसको करना पड़ेगा? मी. वाई? जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम कैरिंग
1: सो मच बैगेज. यस.
0: तो क्यों ना रोज ही, इसीलिए हमने कहा कंप्यूटर की स्कैनिंग, इसलिए जो हम वो हर एक घंटे के बाद 1 मिनट करते हैं ना, तो रात को भी क्यों हल्का करना है? हर एक घंटे के बाद ही अगर कुछ ऐसा भर गया हो, स्टॉप, इट्स ओके, वो जैसे हैं वैसे हैं, आई डोंट नीड टू कैरी इट. नहीं तो आप देखो हमने अननेसेसरली बहुत लोगों का भर लिया है.
1: अच्छा, वो जैसे हैं वो अपने परिपेक्ष में तो सही है,
0: सही है.
1: हम हमेशा दूसरे को ऐसे
0: जजमेंटल.
1: हाँ वही, जो मैं एक्चुअली आई लाइक दैट थिंग, यू नो, कि जो चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही है उसको मैं एक जजमेंटल बन जाता हूँ कि वो चीज ही अच्छी नहीं है. यू नो दिस इज एक्चुअली द मोमेंट वी रियलाइज दिस डिफरेंस.
0: माय डिसलाइक एंड जजमेंट, ये दो डिफरेंट चीजें हैं.
1: आई डिसलाइक दैट थिंग बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स बैड.
0: इट्स बैड, या इट मे बी गुड फॉर देम.
1: इन फैक्ट इट्स अमेजिंग, यू नो, अगर हम रिश्तों को सचमुच में देखें कि हमने क्या किया हुआ है और उसको सॉर्ट आउट करने का भी प्रोसेस हमारे ही हाथ में है. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. हर बार हम देखते हैं कि जिंदगी आसान होने का एक माध्यम है कि अगर हम थोड़ा सा अपना जो कलर है वो एक सारे चश्मे उतार के, सारे लेबल्स उतार के क्लैरिटी से देख पाए, और वो हमें ज्ञान से मिल रहा है, परमात्मा का ज्ञान जो मिलता है. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, स्वागत करते हैं आपका. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन रिश्तों को एक नए रूप में देखने का ये प्रोसेस, ये खोज चलती रहेगी. अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: ये गंगा राम की समझ।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप सबका स्वागत। आप जानते हैं, इन दिनों हम जीवन को एक नए अंदाज से देख रहे हैं। अभी तक मन पर ध्यान दिया था और सोचा था कि मेरे रिश्तों में फर्क आ रहा है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो गई, मैं खुद अच्छा फील करने लग गया। लेकिन जब ये देखा कि यही शरीर पर भी कितना असर डाल रहा है, तो लगा कि इस पर काम करना ज्यादा जरूरी है। अब किया कैसे जाए, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम सीखकर लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं। आपको याद हो हमने बात की थी कि जो हम खा रहे हैं, यानी कि जो अन्न है, उसका मन पर कितना असर पड़ रहा है। इसीलिए सही खाना, डाइट एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन किस वाइब्रेशन के साथ, किस थॉट के साथ खाना और उसे बनाना, और साथ ही कई और एस्पेक्ट हमने लिए थे। आज इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बार रिकैप लेते हैं हल्का सा, क्योंकि इतना अभी तक जहां खाने की बात आती है, डाइट की बात आती है, हेल्दी फूड की बात करते हैं, कई बार ऑर्गेनिक फूड की भी बात करते हैं, और कई बार फिर कहते हैं कि जंक फूड। तो हम सब इस बात से अवेयर हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं और इनका हमें बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हम तीनों ही खा रहे हैं। ये जो मन की बात थी, उसका और खासकर अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो लाभ है हमारे जीवन में, उसको थोड़ा सा लेकर आते हैं।
1: जो बातों की हमने चर्चा की थी, एक तो खाने में जो वाइब्रेशंस हैं, वो जितने अच्छे होंगे उतना हमें भी अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। दूसरी बात कि जो बनाने वाला व्यक्ति है, उसकी मन की स्थिति कैसी है। अगर उसकी मन की स्थिति शांत है, पवित्र है, तो पवित्रता के वाइब्रेशन खाने में भी आएंगे, तो उस पर भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी जो बात थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड में हाई कोलेस्ट्रॉल है, कि जो बहुत ही हार्मफुल है। मांसाहार में भल ज्यादा प्रोटीन है, परंतु ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, उल्टा ज्यादा प्रोटीन नुकसान कर सकता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो ज्वाइंट पेन होने लगे, मसल पेन होने लगे। तो हमें थोड़ी सी प्रोटीन की आवश्यकता है, और वेजिटेरियन डाइट में जो प्रोटीन वो बहुत अच्छा है,

0: दालों में सोयाबीन का प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, इस बात को समझना चाहिए। साथ साथ यह भी बात कि हमारे शरीर की रचना ही वेजिटेरियन डाइट के लिए हुई है। हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, ऐसे जब हमारे यह शरीर ही वेजिटेरियन डाइट के लिए बना है तो हम नॉन वेज का उपयोग क्यों करें। और आप प्राणियों को देखो, जो वेजिटेरियन एनिमल है, जैसे कि हाथी मर जाएगा परंतु मांस नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा परंतु घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसके शरीर की रचना उसी तरह से हुई है। तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत
1: कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से या नेचुरल वे है उसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम निकले और हमने सिस्टम्स में गड़बड़ की है तो हम
0: बीमार भी होने लगे,
1: हम वो सफर करें। इनफैक्ट ये जो आई स्टिल रिमेम्बर एक बात जो कही थी आपने कि जब उसे किल किया जा रहा है तो वो जो टॉक्सिक हार्मोन्स वो हम कंज्यूम कर रहे थे। डॉक्टर पटेल, एक और जो एस्पेक्ट जहां हमने टॉक्सिक केमिकल्स की बात की है कि जब प्याज और लहसुन के साथ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि ये क्यों नहीं, क्योंकि प्याज के भी बहुत सारे यूजफुल मेडिकेशन में, मतलब मेडिकली भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, और लहसुन की तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं रिकमेंड किया जा रहा है। कई जैन लोग थे जिनको मेडिकली ये कहा गया कि आपको लहसुन खाना ही चाहिए, चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग था या सब्जी में डाल के या ये कुछ करके। तो हम जब खाने की बात करते हैं विद राइट केमिकल्स तो उसमें क्या इनका इफेक्ट है?
0: कनुप्रिया जी, मैं समझता हूँ इसको है ना एक होलिस्टिकली समझना चाहिए। हम थोड़ा उतना ही शॉर्ट चीज को ही समझते हैं। ये क्यों इतना इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि प्याज और लहसुन कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कम करते हैं, तो साथ साथ में उसकी दूसरी इफेक्ट को हम देखें कि जैसे प्याज को जब हम काटते हैं तो काटते समय भी आंखों से आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वोलेटाइल एसिड्स है, जो वोलेटाइल एसिड्स आंख में जाते और लैक्रिमल ग्लैंड बाहर है तो लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते और उसके कारण आंसू आने लगते। अब सोचिए कि जब सिर्फ आप तो काट रहे हैं, वो दूर से बहुत सूक्ष्म मात्रा में वॉलेटाइल एसिड्स आंखों में गए और इतना स्टिम्युलेशन हुआ, जब आप प्याज को खाते हो तो पूरा डायरेक्ट उसकी इफेक्ट होगी, 10 times more। जब वो नर्व्स के संपर्क में आएंगे तो कितना उससे स्टिम्युलेट करेंगे, तो वह स्टिम्युलेशन और भी हार्मफुल है। आप में इरिटेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, पेशेंस कम हो जाएगी, तो ये बातें मोर हार्मफुल है। लंदन में एक रिसर्च भी हुई है जिसमें यह देखा गया कि भल लहसुन खाने से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, परंतु उसकी तुलना जब एक्सरसाइज के लिए की गई कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज करो तो करीब 4 गुना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज क्यों ना कर ले। और बात है कि हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो उससे जो कोलेस्ट्रॉल कम होगा वह सेम है, और साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे फ्रूट्स के, सब्जियों के, और आपको बेनिफिट्स होंगे। तो ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है स्वास्थ्य के दृष्टि से भी।
1: डॉक्टर पटेल, लहसुन की जहां तक बात है उसका भी, उसके जो केमिकल्स हैं वो भी क्या हमारी सोच
0: पर आल्सो इवन, ये तो पूरा एक है कि टॉक्सिक शॉक कहते हैं उसको।
1: अच्छा,
0: जो नर्व्स की बात बताई ना कि उसमें केमिकल्स है वो ब्रेन पर बुरा असर डालते हैं, और रिसर्च भी हुई है कि इट कैन टेक यू इनटू टॉक्सिक शॉक, वो इरिटेशन होगा, और उस बात को किसी ने देखा ही नहीं। बस एक कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बस बहुत बड़ी पब्लिसिटी कर ले इस पर।
2: लेकिन अगर उससे वो इरिटेशन और एंजाइटी बढ़ता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल तो फिर बढ़ेगा भी।
0: हाँ, अल्टीमा ये भी बात ठीक है, क्योंकि लीवर प्रोड्यूस करता है,
2: कम इतना हो रहा है, लेकिन ठीक है अगर इतना 10% कम हुआ लेकिन इतना स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट किया 20% बढ़ गया तो भी स्टिल 10% अप ना, तो दैट वी हैव टू
0: ऑल्सो देखना। ये है कि लीवर सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है, खाने में तो हम थोड़ा सा ही लेते हैं, तो स्ट्रेस एंजाइटी आदि से लीवर ज्यादा फिर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगेगा। तो एक नहीं, होलिस्टिकली इस बात को देखा जाए तो प्याज और लहसुन से बचना ही सबसे अच्छी बात है। तो मन भी शांत रहेगा, साथ साथ हम अच्छा योग का अभ्यास भी कर सकेंगे।
1: हमने पिछले बार जब बात की थी कि खाना बनाते वक्त भी और जब खा रहे हैं तब भी, तो क्या पर्टिकुलर थॉट्स रखे, बिकॉज अब बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स आए, मेल्स आए इस बात को लेकर कि फिर क्या करें, कौन सा थॉट रखें, बिकॉज वो तो याद ही नहीं रहता। जैसे हम ऑटोमेटेड मोड में हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं और हम खाना बना रहे होते हैं, सी दोनों चीजें जो हैं, जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं तो हम याद थोड़ा

0: कि हम क्या सोच रहे हैं, या तो इसमें अगर इतना इफेक्ट है तो क्या थॉट्स रखें?
1: जैसे हमें ये समझ में आने लगता है कि जो हमारा मन की स्थिति है वो अन पर असर डालेगी, और जो अन हम स्वीकार करेंगे उसका मन पर असर होगा. नाउ वी बिकम वेरी केयरफुल व्हाइल कुकिंग. जैसे आपने कहा कौन सी थॉट्स क्रिएट करें, तो वी हैव अ होल रेंज नाउ फ्रॉम टॉक्सिक थॉट्स टू एलिवेटेड थॉट्स. तो अगर आपको एलिवेटेड भोजन खाना है तो आपकी थॉट्स भी कैसी होनी चाहिए उस समय? एलिवेटेड थॉट्स होनी चाहिए. तो द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड वुड बी कि हम सोल कॉन्शियस होके परमात्मा की याद में भोजन बना रहे हैं. दैट वुड बी एलिवेटेड थिंकिंग एंड दैट्स व्हाई एलिवेटेड एनर्जी दैट वुड गिव द बेस्ट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी. राजयोग मेडिटेशन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और नियमित रूप से हम अभ्यास कर रहे हैं सोल कॉन्शियस और परमात्मा को याद करने का, अब उसी का विशेष ध्यान रखें जब भोजन बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी थॉट्स हैं दे विल बी आउट. एंड उसके लिए थोड़ा सा और करना, द किचन शुड बी वेरी क्लीन, द एनवायरमेंट शुड बी वेरी प्योर. आप परमात्मा की याद के कुछ गीत बजाएं साथ में, तो एक पूरा एटमोस्फियर उस तरह से क्रिएट हो जाता है कि थॉट्स आपकी ऑटोमेटिकली फिर उसी तरफ चलती हैं. और अगर कोई बात परेशान कर रही है, अभी अभी किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ, डोंट गो टू कुक, सिट विद योर सेल्फ, रिजोल्व द इश्यू एंड देन गो इन टू द किचन, अदरवाइज गुस्से वाला खाना बनेगा.
2: जो शिवानी बेन ने बताया उसमें एक चीज में छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि खाना बनाने से पहले ही 15-20 मिनट अच्छे से मेडिटेशन कर लो फिर ही जाओ. इससे पहले होता था ना स्नान आदि करके फिर ही किचन में जाते थे, तो ऐसे इस बात को भी अगर ऐड किया जाए कि कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना है फिर ही खाना बनाना है.
0: अगर ध्यान नहीं लग पा रहा है तब क्या करें? मतलब ध्यान में ही नहीं जा पा रहे हैं हम, सारी चीजें ज्ञान समझने के बाद से शिवानी बहुत लोगों का ये भी बात आती है, उसमें भी क्या जो हम खाना खा रहे हैं वो कोई वजह बनती है?
2: तो दोनों चीजें हैं, एक तो कि भी आप ध्यान की विधि को बोले और अच्छा सीखो और फिर ध्यान करो, और साथ साथ ये भी चेक करो कि क्या आपका आहार सही है. मुझे याद आता है हमारे मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल शाह, वह जब अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में तब ही उनको ये ज्ञान मिला और वो योग का अभ्यास करने लगे, लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्होंने अनुभव किया कि अच्छे से योग लग नहीं रहा है. ध्यान में जो एकाग्रता बननी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव हो नहीं रहा है. तो उन्होंने वहां पर जो ब्रह्मा कुमारी बहन थी उनको पूछा कि बहन जी मेरा अच्छे से योग नहीं लगता है, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि आप खाना कहाँ खाते हो? तो नेचुरली तब तो मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में थे तो कहा मैं तो मैस में खाता हूँ. तो बहन ने कहा देखो यही मुख्य कारण हो सकता है कि आपका जो खाना है उसके वाइब्रेशन आपको असर कर रहे हैं और अच्छा योग नहीं लगता है. आप कोशिश करो कि अपने आप भोजन बनाओ, फिर भल सारी व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन उन्होंने सोचा कि योग का तो अच्छा अनुभव होना ही चाहिए, और थोड़ा प्रबंध किया अपने आप भोजन बनाने लगे. कहते बस थोड़े दिन में मेरा अच्छा योग लगने लगा.
0: दिस इज इवन माय एक्सपीरियंसेस, मेरा अपना भी अनुभव यही है कि अभी तक ज्ञान समझ में आया, हर चीज को इम्प्लीमेंट किया, ध्यान भी योग भी जो था वो लगा, लेकिन जो फीलिंग ऑफ एलिवेशन हर बार मैं प्रोग्राम में आती थी और मैं अच्छा फील जब मैं बात कर रही हूँ, आई कुड मेक इट आउट कि आई शुड फील दैट वे, लेकिन बाहर दिन भर में नहीं हो पाता था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा थॉट क्रिएट होता ही था. द मोमेंट आई हैव एक्चुअली, और अब मैंने रियलाइज किया कि कभी घर का कभी बाहर का, कभी घर का क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी बाहर का करना ही पड़ रहा था, लेकिन व्हेन आई चेंज दैट एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद लॉट ऑफ व्यूअर्स कि खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके खुद भोजन घर पे उस पर करने से एक परिवर्तन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा कि मैं हल्की होने लग गई. चाहे जिम्मेदारी भी लेनी है, मैं अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेस में आती थी, वो कम हुआ है.
1: बिकॉज़ ऑफ औरों का स्ट्रेस अब कंज्यूम नहीं कर रहे.
0: हाँ,
1: शायद एक पहले था आप मेहनत कर रहे थे लेकिन डिप्लीट भी कर रहे थे, अब क्या हुआ डिप्लीशन बंद कर दिया, तो कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट. अगर वैसे भी योग करने का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे धीरे होगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी.
0: आपको हर चीज पे एफर्ट था
1: क्योंकि आपने बहुत सारी अडल्ट्रेशन की है ना अपनी एनर्जीज के साथ, तो फिर वो सोल कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था. लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उन सब एनर्जी से और आपको विधि आ गई, तो यू आर एबल टू डू इट मच फास्टर एंड वो आप लाइटर फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज हायर लेवल की हो गई है। जैसे ये भोजन हम बना लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज जो बनी है, सपोज चार पांच चीजें बनी है, तो हर चीज में से थोड़ी थोड़ी थोड़ी एक थाल प्रिपेयर होता है छोटी छोटी डब्बियों में, और हर एक चीज में से उसमें से थोड़ी थोड़ी लेते हैं, फिर उसके साथ बैठकर फिर मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम कहेंगे परमात्मा को भोजन स्वीकार करना। बेसिकली इट इज योर हाईएस्ट एलिवेटेड थॉट्स कि मैं आत्मा उस परमात्मा से पवित्रता की शक्ति लेकर उस सारी चीजों में डाल रहे हो, ठीक है। दिस वुड बी फॉर अनदर 10-15 मिनट्स कि आप उस भोजन को, अगर मेरा बनाते समय कहीं कुछ, देखो दो चीजें है ना, बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो और अटेंशन होता है, कर्म करते हुए मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी और बातें आ जाती हैं। सपोज दो लोग किचन में बना रहे हैं, कुछ और बात हो गई, कुछ और माइंड में आ गई, तो उसी भोजन को लेकर अब बैठकर फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम कहेंगे भोग लगाना। तो तब फिर 15 मिनट उसके साथ बैठे योग में, फिर वो भोजन लेके जाते हैं और वो थोड़ी थोड़ी जो चीजें थी उसको वापस सारी डिश में मिक्स कर देते हैं। सो बेसिकली आपने वो प्योरिटी से भरा वाइब्रेशन उस आइटम का उस पूरी चीज में मिक्स कर दिया। फिर जब हर एक की प्लेट में आ जाता है डाइनिंग टेबल पर, हर एक 2-3 मिनट कम से कम पहले साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके उस भोजन को दृष्टि देता। दृष्टि देना मतलब फिर वाइब्रेशंस देना उसको। इतने स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन के बाद वो भोजन को अंदर स्वीकार किया जाता है, तब उसको कहेंगे सात्विक अन्न। सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन खाया वो सात्विक अन्न नहीं, सात्विक अन्न ये भी नहीं कि वेजिटेरियन लिया प्याज लहसुन नहीं लिया, वो भी नहीं। सात्विक मतलब जिसकी एनर्जी सात्विक है, दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और फिर प्रयास करते हैं कि भोजन करते समय वातावरण कैसा है, टेलीविजन डेफिनेटली नहीं, एंड कई बार आजकल होता है कि डाइनिंग टेबल पर ही सारा दिन की डिस्कशन हो जाती है क्योंकि सब लोग उसी टाइम मिलते हैं, तो कई बार उसमें घर में चलने वाली प्रॉब्लम्स, ऑफिस की बातें, नॉट द राइट एनर्जी वो 10 मिनट के लिए। तो प्रेफरेबल तो होता है 10 मिनट साइलेंस में भोजन, लेकिन डेफिनेटली नॉट डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, एंड डेफिनेटली नॉट टेलीविजन। 10 मिनट ही खाना खाना है, वी कैन डू इट विदाउट द टेलीविजन, नहीं तो फिर हम ही ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, पर फिर हम ही कह रहे हैं कि जीवन में ये स्ट्रेस इतना नेचुरल क्यों हो गया, ये छोटी छोटी छोटी छोटी बातें हैं।
2: राइट क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे,
0: नहीं तो कभी ज्यादा
2: करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है आप ज्यादा ही खा लेंगे, कुछ होगा डिप्रेस्ड हुआ, आपकी भूख ही खत्म हो जाएगी, तो इसलिए भी बहुत ही जरूरी है। केवल बात करनी है पहले कर लो या उसके बाद करो बेस्ट है। डाइनिंग टेबल बस परमात्मा की याद में साइलेंस में ही भोजन स्वीकार करो तो बेस्ट इफेक्ट।
0: एक और चीज मुझे आपसे जाननी है, इनफैक्ट ये भी मैं अपने सभी परिवार के लोगों के साथ शेयर करूं कि खाना बनाना मुझे बहुत मुश्किल क्योंकि टाइम नहीं होता था, बट आई रियलाइज इट्स ओनली वन माइंडसेट। यू नो आज मुझे 6 बजे, 6:30, 7 बजे भी निकलना है तो उससे पहले भी बनाया जा रहा है। इट्स जस्ट यू नो कि थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट का ही फर्क है उठने का और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। लाइफस्टाइल चेंज होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि खाना जब बनाते हैं, कई बार मैंने देखा है मदर्स के साथ जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाइफ्स के साथ भी, वो चाहती हैं कि हम अपने हाथ से खाना बना के दें, मैं बना दूं फटाफट, लेकिन उसमें जो हड़बड़ी है यू नो, और एक एंग्जाइटी रहती है कि अभी खा ले सही, ये खाएगा कि नहीं खाएगा, इसको ऐसे करो, ये थॉट्स क्या ये भी सही है? बिकॉज दे और माँ को समझ में भी नहीं आता शायद कई बार कि मैं क्या वाइब्रेशंस दे रही हूँ,
1: फियर की ना।
0: हाँ,
1: फियर की और इनसिक्योरिटी की और एंग्जाइटी की वाइब्रेशन
0: बना दूंगी, चला हाँ। ना जाए, यू नो ब्रेकफास्ट करके जाए, ओ वो चले ना जाए ये लोग, सो दीज वाइब्रेशंस।
1: और जब खाना खिला रहे होते हैं बच्चों को तब कैसे खिलाते हैं, कई बार तो आजकल डांट के भी खाना खिला देते हैं, कई बार तो हाथ उठ जाता है बच्चे पे अगर वो खाना नहीं खा रहा, क्यों? सारा फोकस ये है कि वो एक चपाती उसके अंदर चली जाए,
0: बच्चा रो रहा
1: होता है, चला जाए, पर बिकॉज द फोकस इज ओनली ऑन द फिजिकल कि ये फिजिकल चीज के फिजिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर चले जाए, ये कभी नहीं अटेंशन रहा कि ये कितने इमोशनल जो पेन है ये भी साथ में अंदर वो लेकर जा रहा है। कभी भी बच्चों को इस तरह से रुला कर मार पीट करके खाना नहीं खिलाना चाहिए।
0: बच्चे खाते नहीं फिर, ये बहुत बड़ा एक सवाल आता है, एक साइकोलॉजिकल है कुछ भी है, लेकिन बच्चे खाते नहीं। हम टेलीविजन के सामने बिठा के फेवरेट चैनल चला दिया जाता है एंड देन वो बच्चा देख रहा है टीवी और हम उसको खिलाते जाते हैं, यू नो, कुछ भी जो खाना है जो हम चाहते हैं कि वो खा ले।
2: उसकी मन की स्थिति को ठीक करो। आज बच्चों को प्यार चाहिए, है ना, फोर्स तो कर दिया लेकिन और आपने टाइम नहीं दिया। बच्चे के मन की बात आप सुन नहीं रहे हो तो उसके लिए सचमुच बच्चों के लिए टाइम दो। अगर वो आप टाइम देने लगेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे तो ऑटोमेटिक भूख लगेगी और बच्चे खाएंगे। फिर भी जो दूसरा प्रश्न आता है कि वो हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो बोले कुल चीजों को मिक्स भी की जा सकती है। फ्रूट जूस अच्छा है और उसके साथ और कोई चीज जैसे कैडबरी बच्चे को बहुत पसंद है, वो कोई तरीके से मिक्स कर दो और खाए तो बोल थोड़ा सा अनहेल्दी भी जा रहा है परंतु साथ साथ में 70% हेल्दी फूड जा रहा है, तो उसकी ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट होगी।
0: एंड देन बिना अगर हम डर बिना गिल्ट के, आई हैव जस्ट रियलाइज यू नो कि ये वाली चीजें भी तो हम दे रहे थे। गिल्ट होता था वो जब वो ये खाता था, या घबराहट होती थी, वरी करते थे, वो अगर नहीं करेंगे
1: ऑटोमेटिकली वो जितना खाएगा, लेकिन अगर वो राइट वाइब्रेशन के साथ जा रहा है तो वो उसके मन के और तन के लिए दोनों के लिए बहुत असरदार है।
0: दूसरी तरफ एक और बात जो जानना चाहेंगे डॉक्टर पटेल, खा रहे हैं उससे पहले हर रोज का रूटीन, हर रात का रूटीन कि एक ड्रिंक तो लेंगे ही, एक ग्लास तो होगा ही, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। पार्टी में जाना है तो इट्स एक्सपेक्टेड। या फिर दूसरी तरफ है स्मोक की बात अगर हम करते हैं कि वो भी तो कहीं ना कहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जानने के बावजूद हम नहीं उसको छोड़ते हैं। फिजिकल पे तो हम सब जानते हैं, मन पर भी इनका असर पड़ता है, हमारी थॉट प्रोसेस को भी कहीं ये एडिक्शंस इफेक्ट करते हैं।
2: दोनों इफेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा इफेक्ट अल्कोहल की है। अल्कोहल क्या करता है कि आमतौर पर हमें पता है कि भी मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जैसे खाने की बात कि मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हम लॉजिकली जानते हैं, और कुछ बातें कि भाई इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए। वो जो कंट्रोल है वो एक हमारी नर्वस सिस्टम है, भले आत्मा ही कराती है परंतु आत्मा उन नर्व्स का उपयोग करके उस कंट्रोल को लाती है। जब हम शराब पीते हैं तब यह कंट्रोल समाप्त हो जाता है और हमें यह सेंस नहीं रहती है कि कितना खाना चाहिए, व्यक्ति बहुत ज्यादा खा लेगा, ऐसे बोलना चाहिए वो बोल लेगा। इसीलिए देखो शराब पी हुई हालत में कैसे व्यक्ति गालियां देने लगता है, गुस्सा करता है, रैश ड्राइविंग हो जाता है और फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भल शराब की छोटी सी पॉजिटिव इफेक्ट हो लेकिन नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और शराब से तो ब्रेन भी डैमेज होता है, साथ साथ डायरेक्ट इफेक्ट है वो लीवर पर होती है, हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, एसिडिटी होती है। इन सब बातों को भी साथ में मिलाए तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इन एडिक्शन पर विजय प्राप्त करना चाहिए।
0: ऐसा भी कुछ है कि हम इमोशनली वीक हैं, हमारे पास यू नो वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो विल पावर नहीं है कि हम एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं।
2: हाँ, तो मेन कारण तो यही है, सभी को ये पता है कि टोबेको की क्या नेगेटिव इफेक्ट होती है, फिर भी ये व्यसन ले रहे हैं क्योंकि विल पावर में ही कमी है। एक बार मित्र ने कह दिया, व्यक्ति ने एक दो बार टेस्ट किया और फिर उसके वह संस्कार हो गए और सदा के लिए आदत हो गई। कोशिश करने के बावजूद भी, यहाँ तक आजकल जब सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, निकोटीन च्यूइंग गम्स दिए जाते हैं, निकोटीन पैच लगाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि विल पावर में बहुत बड़ी कमी है।
0: तो अगर हमने थॉट पर काम किया, इमोशन पर काम किया, तो एडिक्शन से जिनसे मतलब कितने कितना वक्त लग जाता है वो नहीं निकल पाते, निकल पाएंगे। एक बात और डॉक्टर पटेल, ये तो बात हमने मोटी मोटी एडिक्शंस की। कई बार एडिक्शन है मीठा खाने की, चॉकलेट की, और डायबिटीज है उसके बावजूद बार बार हम खाने की बात करें, मन कर रहा है कि वो खा लें, मतलब उसके बिना रहा नहीं जाता। ये भी क्या कहीं मेरे मनोबल को कम करती है और फिर इनका असर पूरे उस पर जाता है, पूरे सिस्टम पर जाता है?
2: डेफिनेटली ये भी एडिक्शन है, या तो इससे भी कह सकते हैं, आपने जैसे कहा कि डायबिटीज के पेशेंट है पता है फिर भी खा रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका नी रिप्लेसमेंट होना है, वेट बहुत ज्यादा है, फिर भी खाने के बाद फिर से मीठा खा रहे हैं, तो उनको तो ऑलरेडी हार्मफुल इफेक्ट हो गई। पता है कि भी नी रिप्लेसमेंट होना है, सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, सारे जीवन का सवाल है, फिर भी व्यक्ति मीठा खा रहा है, तो मीठे खाने का भी एक एडिक्शन हो जाता है। उस पर भी पहले से ही अगर हम थोड़ा सा काम करें कि यह कौन सी स्थिति है, मुझे कम करते जाना और फिर टोटली मैं समाप्त कर लूं। और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो खाने के ऊपर मीठा कभी नहीं खाओ, क्योंकि जो आप मीठा खाते हो उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के होता है, शुगर का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाने के ऊपर जब आप मीठा खाते हो तो वहां पर ही 3 घंटे रहेगा और उसमें जो परिवर्तन आएगा वह परिवर्तन बुरा होगा। तो जिनको डायबिटीज नहीं भी है, अगर मीठा खाना ही है तो लंच और डिनर के बीच में कभी खाओ कि जब आप खाली पेट हो तो तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा।
1: हम में से कितने ये खा रहे हैं?
0: और मैक्सिमम जो है वो ये था कि खाने के ऊपर, पर खाने के बाद जो गुड़ खाते हैं,
2: वह पहले गुड़ था अभी और चीजें हो गई,
0: लेकिन वो भी हार्मफुल है।
2: एडिक्शन,
0: हम कितने अनअवेयरनेस के साथ जी रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छा है कि खाना खाओ, रात को थोड़ा सा गुड़ खा लो, लेकिन
2: तो वो आदत हो गई।
0: हाँ, तो वो सही नहीं
2: सही
0: है,
2: बिल्कुल नहीं।
0: शिवानी, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि कहा जाता है जो मन कर रहा हो वो खाना चाहिए।
1: मन जो कर रहा हो, लेकिन एक बार नॉलेज है तो अपने मन को समझाना भी अब हम सीख रहे हैं। यू नो, मन तो गुस्सा करने के लिए भी कर रहा होता है, बट नॉट नेसेसरीली इट्स हेल्दी फॉर मी, आई एम रियलाइजिंग दैट। तो मन जो कर रहा है वो नहीं, जो मुझे ज्ञान समझ में आ गया है उस हिसाब से मुझे अपने मन को अब समझाना है कि मुझे, मेरे लिए क्या राइट है। ऐसे तो हमारे बच्चों का भी मन कर रहा होता है ना बहुत कुछ खाने के लिए, हम तो नहीं उनको वो देते सारा कुछ। वाई? इट्स नॉट गुड फॉर देम। सिमिलरली नाउ वॉट्स नॉट गुड फॉर मी, तो मुझे अपने मन को भी समझाना पड़ेगा। जितना जितना हम अपने मन को समझा पाएंगे शायद बच्चे हमारा कहना ज्यादा अच्छी तरह से मान लेंगे, बिकॉज हम अपने को ही नहीं समझा पा रहे तो उनको कैसे समझा पाएंगे। द एनर्जी वोंट वर्क देन दैट साइड। वन मोर थिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि कौन से धन से भोजन बनाया जा रहा है। सी, इट्स अ लिटिल डीपर, लेकिन धन कैसे कमाया गया, फिर वो धन से अन्न आया और फिर वो अन्न से मन पर असर आया। अगर धन कोई थोड़े भी गलत तरह से कमाया गया होगा, किसी को धोखा देकर या एनी माल प्रैक्टिसेस, तो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि आप कहाँ पर अन्न स्वीकार कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा कि वहां का धन कैसे कमाया जाता है। Be very careful.
2: आपने जो प्रश्न पूछा ना, वो पहले के जमाने में कहा जाता था कि भाई मन करे वो करो, वो सत्य भी है कि जब आपको जरूरत होती, कहीं बार मीठे की जरूरत होती, बॉडी में जब शुगर कम हो रही है उसकी जरूरत है, तो फिर हमें उसी प्रकार की इच्छा होती है। लेकिन वो कब, कि अगर आप सजगता से सब कुछ कर रहे हो। आज तो क्या है कि हम बहुत फास्ट लाइफ में है, सारा दिन खाते ही जा रहे हैं, और उसके बाद जब मन करे तो समझना चाहिए तो व्यसन है या सचमुच बॉडी की डिमांड नहीं है। अगर आप सही रूप से थोड़ा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आहार ले रहे हो तो जब शुगर लो होने लगेगी तो सचमुच बॉडी डिमांड करेगी और इच्छा होगी कि थोड़ी सी शुगर खानी चाहिए।
0: एक्चुअली हमें अपने मन की आवाज आती भी है कि हम गलत कर रहे हैं, बार बार एक नॉक है, हमने ही उसको सुनना बंद किया हुआ है। शिवानी, डॉक्टर पटेल, आज इनफैक्ट ना सिर्फ खाना, मतलब खाना कैसे है, क्या खाना है, बल्कि कहाँ खाना है, किस तरह, उस वक्त क्या थॉट्स रखने हैं, और बनाते वक्त जो आज आपने हमारे सामने, बहुत लोगों को ये था कि फिर हम क्या सोचें, क्योंकि ऐसा सोच नहीं पाते, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता, आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज हमने बहुत सी बातें समझी, इनफैक्ट अभी तक हम अवेयरनेस में ही नहीं थे कि किस तरह से, जहां से जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि धन जो हम कमा रहे हैं, कई बार हम ये भी तो कहते हैं ना कि बेकार इस तरह से कमाया गया धन जो है वो बीमारियों में ही जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें खाना जो है, जो पक रहा है उस धन से, वो हम खा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हम कोरिलेट करना शुरू करेंगे, जरा सोचना शुरू करें, जरा देखना शुरू करें, जरा से सजग हो जाएं, तो ये सारी बातें जो आज हमने की हैं, अपने लाइफस्टाइल, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, यही तो स्किल होगी कि आप एक डिफरेंट लाइफ जी पा रहे होंगे। कोई बात मन में है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल करें या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे मिलेंगे। ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: मध्य प्रदेश के अमझेरा राज्य के शासक थे राणा बख्तावर सिंह। उन्हें ये अधिकार 1854 में प्राप्त हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने 1857 के विप्लव को चिंगारी दिखाई, तो इस चिंगारी से प्रज्वलित क्रांति की मशालों में से एक मशाल राणा बख्तावर सिंह ने भी उठाई थी। राणा के नेतृत्व में अमझेरा के आसपास के इलाकों के फौजियों ने मिलकर भोपावर स्थित अंग्रेज छावनी को आग लगा दी और अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। षड्यंत्र की खबर लगते ही अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट परिवार सहित झाबुआ भाग खड़ा हुआ और फिर शुरू हुआ विप्लव का दमन। अंग्रेज एजेंट वापस भोपावर छावनी लौट आया और राणा के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राणा अपने कुछ फौजी साथियों सहित अमझेरा छोड़कर धार जिले में घुस गए। तब अंग्रेजों ने महू से ब्रिटिश फौज बुलाकर धार किले की दीवार तुड़वा दी। राणा और उनके साथी धार छोड़कर रतलाम से 3 मील की दूरी पर स्थित लालगढ़ किले में चले गए। ब्रिटिश फौज उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच गई। राणा और उनके साथियों को पहाड़ियों के जंगल में शरण लेनी पड़ी। जंगलों में भील भिलालों का राज था। अंग्रेजों ने साहूकारों के माध्यम से भील भिलालों से सुलह की बात चलवाई और राणा और उनके साथियों को अमझेरा लाने के लिए राजी कर लिया। राणा जब अमझेरा आए तो ब्रिटिश एजेंट धार के लिए रवाना हो गया। इस तरह मुलाकात के बहाने आगे आगे एजेंट और पीछे पीछे राजा महू पहुंच गए। महू में राजा को कैद करके इंदौर छावनी भेज दिया गया। 10 फरवरी 1858 को राणा बख्तावर सिंह को इंदौर छावनी में फांसी दे दी गई।

0: गजबई काका के खाने की बात ही कुछ और है।
1: यार खाना भले ही सादा हो लेकिन स्वादिष्ट खूब लगता है।
0: यहाँ आकर तो मुझे सुकून मिलता है।
1: ये बात है। आओ बेटा आओ, लगता है उस दिन का खाना और कहानी दोनों ही पसंद आई, इसलिए आज नए दोस्तों के साथ आए हो।
0: गजबई काका, अब जिसने तुम्हारे हाथ का लजीज खाना खा लिया हो वो भला यहाँ आने से कैसे बच सकता है।
1: अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, कमाल हमारे हाथ का नहीं है,
2: फिर
1: कमाल तो तुम सबके प्यार और मोहब्बत का है जो यहाँ चले आते हो।
0: वो तो ठीक है काका, शहर से इतनी दूर आकर थोड़ी शांति भी मिल जाती है, फिर तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें और स्वादिष्ट खाना, ये सब मिलकर ही तो हमें यहाँ आने के लिए मजबूर करते हैं।
2: और काका, सुना है तुम क्रांतिकारियों की कहानियाँ भी सुनाते हो।
1: अरे नहीं बेटा, उस दिन तो हमने ऐसे ही झोंक में सुना दी थी, पर आज नहीं सुनाएंगे।
0: अरे काका ये भी कोई बात हुई, काका हमें तो अब खाने से अच्छा कहानी सुनना लगता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
2: काका बैठ तो जाए, पर आज तुम किसकी कहानी सुना रहे हो पहले हमें ये बताओ, खाना हम तभी खाएंगे।
1: अरे आप तो हमें मजबूर कर रहे हैं बेटा।
0: ऐसा क्यों करते हो काका?
2: और काका ये देशभक्ति के गीतों की आवाज कम कैसे हो गई?
1: अरे बेटा अभी तेज कर देते हैं।
0: काका आज तो गीतों में कुछ अलग ही बात आ रही है।
2: हाँ।

0: अच्छा, अरे अब तो हम गैर फिल्मी गीतों का एल्बम भी लाए हैं, उनमें कुछ अलग किस्म के गीत हैं।
1: अच्छा लग रहा है काका, गीत सुनना भी हमें यहाँ पे आकर के।
0: बेटा हम ये बताना चाहते हैं।
1: क्या काका?
0: कि आज हमें जो आजादी मिली है ना,
1: हाँ,
0: उसे पाने के लिए न जाने कितनों ने अपना खून बहाया।
1: अच्छा,
0: कितनी माताओं ने अपने लाल खोए, कितनों ने भाई और न जाने कितनों ने अपने माँ बाप खोए हैं, ये सब हम कैसे समझाएं? देखो बेटा, हम तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी को जानते हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होगा तुमने।
1: तो अच्छा, आज आप किसके बारे में बता रहे हो ये भी बता दो।
0: आज हम बता रहे हैं हमारे ही मध्य प्रदेश के राजा बख्तावर सिंह के बारे में।
1: राजा बख्तावर सिंह के बारे में?
0: हाँ, जिसने राजा होकर भी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अंग्रेजों ने उन्हें बहुत सताया, लेकिन वो राजा थे और उनकी मौत भी बहुत ही भयानक थी। राजा यानी शान और शौकत में डूबा हुआ एक ऐसा शख्स जो हमेशा सुरा सुंदरियों के बीच घिरा विशाल राजमहल में रहने वाला प्रजा का मालिक। राजा कहने मात्र से एक ऐसी ही छवि हमारी आंखों के सामने उभरती है।
1: हाँ ये बात तो है,
0: लेकिन आज हम यहाँ जिस राजा की बात कर रहे हैं वो अपनी प्रजा को खूब चाहता था।
1: अच्छा,
0: हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में ही सोचता रहता। अमझेरा आज भले ही एक छोटा सा कस्बा है, किंतु 18वीं सदी में यहाँ जो राजा हुआ उसने अंग्रेजों के दांत ही खट्टे कर दिए, और इस राजा का नाम था बख्तावर सिंह।

0: अरे ये भी भला कोई बात हुई, हमारे यहाँ व्यापारी बनकर आए और हम पर ही राज चलाने लगे।
1: ऐसा ही होता है भाई, उंगली दो तो लोग पहुँचा पकड़ लेते हैं।
0: इसका कोई उपाय तो होगा ही।
1: हे, बिल्कुल है।
0: वो क्या?
1: इसके लिए विद्रोह करना पड़ता है।
0: यानी अपने राजा से विद्रोह?
1: अरे राजा से नहीं भाई,
0: हाँ,
1: बल्कि राजा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह।
0: ये विद्रोह भला क्या बात होती है?
1: ये अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना या लामबंद होना ही विद्रोह कहलाता है।

0: दीवान साहब
1: जी,
0: अब अंग्रेजों का ये जुल्म सहन नहीं होता, इन्हें मजा चखाना ही होगा।
1: और वो वक्त आ भी गया है राणा साहब।
0: कैसा वक्त?
1: यही कि अब अंग्रेज छावनी पर हमें धावा बोलना ही होगा।
0: आज ही है ना 2 जुलाई 1857?
1: जी हुजूर।
0: लगता है अंग्रेजों की शामत आ ही गई है।
1: अब देर नहीं करना चाहिए सरकार।
0: देर नहीं करना तो फिर बोल दो धावा अंग्रेजी छावनी पर। ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। जब तक भोपावर में इनकी सैन्य छावनी होगी ये हमारा शोषण ही करते रहेंगे।
1: तो धावा बोलने का आदेश दे सरकार।
2: आक्रमण। आक्रमण।
1: आज फिरंगी नहीं बच पाएंगे सरकार। एक एक को मार डालना है।
0: दीवान
1: जी,
0: आस पास की सारी रियासतों को खबर कर दो कि अब हमारा साथ देने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है।
1: जी सरकार, अब हमें अपना हमला बंद नहीं करना है।
0: हाँ, हमें यूनियन जैक को निकाल फेंकना है दीवान।
1: ये लीजिए राणा साहब, यूनियन जैक आपके कदमों पर।
0: शाबाश, लो ये तिरंगा फहरा दो।
1: लाइए।
0: इस यूनियन जैक को तो आज बर्बाद होना ही है।
1: राणा साहब, हमारे साथियों ने हुचिंस के बंगले को तहस नहस कर दिया है और लूट का सारा माल हाथियों और बैलगाड़ियों पर लाद कर अमझोरा रवाना कर दिया गया है हुजूर।
0: ठीक है, अब चलो, हमें सरदारपुर छावनी को भी इसी तरह तहस नहस करना है।
1: चलिए सरकार।
3: ठाकुर बख्तावर सिंह राठौड़ ने कंपनी सरकार को बता दिया कि विद्रोह क्या होता है। अंग्रेज अफसर उस समय तो भाग गए, पर वे जहां भी रहे सैनिकों को जमा करते रहे।
4: अच्छा।
3: इधर पूरे मालवा में विद्रोह का जोश था। अमझेरा के पड़ोसी राज्य धार के विद्रोही तो कुछ भी कर गुजरने की बात करने लगे। धार की रानी जीजाबाई भी कंपनी सरकार के खिलाफ किए जा रहे षड्यंत्र में शामिल थी। रानी का भाई भीमराव भोसले तथा धार राज्य का दीवान रामचंद्र बापू का भी इस काम में पूरा सहयोग था। इस तरह अमझेरा, धार और राजगढ़ के विद्रोही, विशेषकर भील, मकरानी, अफगोनी, विलायती प्रमुखता से विद्रोह में साथ देने के लिए तत्पर थे।
5: ये बख्तावर सिंह ने तो नाट में दम करके रख दिया।
6: अब वो एक आंधी है सरकार, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है।
5: चुप रहो। मालवा के हालात के बारे में गवर्नर जनरल के एजेंट ने भारत सरकार को जो लेटर लिखा है उसमें क्या खास बात है?
6: सरकार, पत्र में लिखा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा राज्य के हालात दक्षिण से बिल्कुल अलग हैं। अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह के कारण ही कैप्टन हैचिनसन को भोपावर छोड़कर भागना पड़ा। इन सब के पीछे अमझेरा का राजा ही है। पूरे राज्य में भारी खलबली मच गई है। राज्य के भीलों का पूरा सहयोग राजा बख्तावर सिंह को मिल रहा है सरकार।
5: तो फिर ठीक है, राजा बख्तावर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अमझेरा पर हमला बोलना ही होगा।
3: इस हमले से कंपनी सरकार को कोई लाभ नहीं हुआ।
4: अच्छा।
3: राजा बख्तावर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि राजा महल में थे ही नहीं। अंग्रेज सैनिकों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इधर भोपावर सरदारपुर से अंग्रेजों को भगाने के बाद राजा बख्तावर सिंह की हिम्मत बढ़ गई। इंदौर, नीमच, महितपुर में विद्रोह का श्री गणेश हो गया। इस विद्रोह में प्रजा का पूरा सहयोग प्राप्त था।
4: अच्छा।
3: वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने लगी। भील इलाकों में उत्पात जोर पकड़ता जा रहा था। धार की रानी जीजाबाई भी अब खुलकर राजा बख्तावर सिंह का साथ देने लगी। इस तरह से एक बार फिर कंपनी सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा।
2: क्या बात है।
3: इसके बाद आया दशहरे का दिन यानी 28 सितंबर 1857।
0: साथियों, आज है विजयादशमी यानी असत्य पर सत्य की विजय का दिन। जिस तरह से आज के ही दिन श्री राम ने रावण को मारा था, उसी तरह हमें आज ये संकल्प लेना है कि इन फिरंगियों को हमें अपने राज्य से ही नहीं बल्कि देश से ही निकाल बाहर करना है।
1: उसके लिए तो हम सब सदैव आपके साथ हैं राणा साहब।
0: इस बार फिरंगियों का मुकाबला करने के लिए हम अकेले नहीं हैं, बल्कि अब हमारे साथ धार्य राज भी है। इसलिए अब हम दुगने जोश के साथ आक्रमण करेंगे।
1: उधर फिरंगी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं राणा साहब।
0: क्यों, उनकी क्या तैयारी है?
1: सरकार इंदौर रेजिडेंसी छोड़कर सीहोर तथा होशंगाबाद पहुंचा ड्यूरेंट जनरल वुडबर्न की सैनिक टुकड़ी के साथ असीरगढ़ होता हुआ पिछले महीने की 7 अगस्त को महू पहुंचा है।
0: उसकी सैनिक टुकड़ी में कितने लोग हैं?
1: उसकी सैनिक टुकड़ी में 700 यूरोपीय तथा 1200 भारतीय नागरिक शामिल है सरकार।
0: इसका मतलब इस बार फिरंगी भी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं।
1: जी हुजूर। इसी बीच 86वीं पैदल सेना के 250 संगीन धारी सैनिक भी महू पहुंच चुके हैं, जिसमें निजाम के रिसाले के 300 सैनिक तथा बंबई की देशी पैदल सेना की एक कंपनी शामिल है।
0: समझ गया, महू में ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए बड़ी तादाद में सशस्त्र कुमुख जमा हो गई है।
1: जी,
0: हमें इसी सेना से मुकाबला करना पड़ सकता है।
1: हम भी पूरी तरह से तैयार हैं राणा साहब।
0: तो हमें भी अपनी रणनीति के तहत ही आक्रमण करना होगा। दीवान
1: जी,
0: तुम इस बात का ध्यान रखना कि हमारी रणनीति की किसी को कानो कान खबर न हो।
1: आपके आदेश का पालन होगा साहब। अब मैं पता लगाता हूँ कि फिरंगी क्या चाल चलने वाले हैं।
3: और वो दिन आ गया जब धार और अमझेरा राज्य की माटी एक बार फिर रक्त रंजित हो गई। 10 अक्टूबर 1857 को भोपावर की सरकारी फोर्स पर हमला बोल दिया।

एक बार फिर फिरंगियों के छक्के छूट गए। चूंकि फिरंगियों की सेना में भारतीय सैनिक भी थे, इसकी सूचना मिलते ही महू से 20 अक्टूबर को ब्रिटिश सेना ने कूच किया। विद्रोही सैनिक धार के किले में घुस गए। 24 से 30 अक्टूबर तक ब्रिटिश सेना ने किले की घेराबंदी की और उस पर तोपें दागी। इकतीस अक्टूबर को किले में छिपे 700 सैनिक एक गुप्त मार्ग से रतलाम की ओर निकल गए। ब्रिटिश सेना ने धार रियासत पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद ड्यूरेंट ने राजा बख्तावर सिंह को पकड़ने के लिए एक सैन्य दल भेजा, लेकिन राजा बख्तावर सिंह वहां नहीं मिले। वे वहां से 3 मील दूर लालगढ़ के किले में थे। फिरंगियों ने राजा बख्तावर सिंह को पकड़ने के लिए लालगढ़ पर हमला किया।

0: राजा बख्तावर सिंह भाग गए सरकार।
1: What? राजा बख्तावर सिंह भाग निकला?
0: जी सरकार, अब क्या होगा?
1: अब तो वो और खतरनाक हो जाएगा।
0: हमने भूखे शेर पर हमला किया है सरकार, वो हमें अब नहीं छोड़ेगा सरकार।
1: अब हमें कूटनीति से काम लेना पड़ेगा, उसे पकड़ने के लिए साजिश करनी होगी, तभी वो शेर पिंजरे में आएगा।
0: आप क्या करेंगे सरकार?
2: वो तुम इंडियन को नहीं बचाऊंगा,
1: इसे सीक्रेट रखना होगा। हाँ, इस शेर को पकड़ने के लिए हम वही नीति अपनाएंगे जो हम अंत में अपनाते हैं। जब दुश्मन से जीत ना सको तो उसे साजिश के तहत पकड़ लो। अब महाराजा होलकर से हमें सहायता मांगनी होगी, तभी शेर को पकड़ा जा सकता है।

0: राणा साहब ये देखिए, राजा होलकर का पत्र आपके नाम।
1: अच्छा, पढ़ो क्या लिखा है।
0: राणा साहब, राजा होलकर ने आपको बातचीत के लिए महू बुलाया है।
1: क्यों दीवान
0: जी,
1: वहां जाना उचित रहेगा?
0: राजा होलकर से कैसा अविश्वास सरकार।
1: अच्छा, तो फिर चलो उनसे मिल लिया जाए।
0: जी, मैं अभी तैयारी करके आता हूं। सरकार, लगता है हमसे फिरंगी हार गए। तभी तो राजा होलकर के माध्यम से हमसे बातचीत करने के लिए बुलाया है।
1: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
0: राजा होलकर के पत्र को हम फिरंगियों की तरफ से आई संधि प्रस्ताव मान सकते हैं।
1: ये फिरंगी इतनी जल्दी सुधर जाएंगे, मुझे विश्वास नहीं होता।
0: सरकार, मुझे भी नहीं होता। ये क्या हो रहा है?
2: आप सब बंदी बनाए जाते हैं।
1: किसने साहस है हमें बंदी बनाने का?
3: हम में है, हम बनाएंगे आपको बंदी।
1: तो संधि प्रस्ताव एक धोखा था।
3: यही समझो, अब तो आप पर मुकदमा ही चलेगा
1: और फांसी होगी, है ना?
3: हाँ।
1: इससे बड़ी कोई सजा है आपके पास?
0: तुम लोग धोखे से ही काम कर लेते हो। ये हमारी ही गलती है कि तुम पर विश्वास कर लेते हैं।
1: बहुत हो चुका ये खेल, बहुत हो चुका। अब अधिक समय तक नहीं चल पाएगा तुम्हारा ये खेल।
4: इस तरह धोखे से राजा बख्तावर सिंह को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तो राजा पर यातनाओं का लंबा दौर चला। झूठे मुकदमे चलाकर उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। ये थे दीवान गुलाब राय रावत, सलूक राव मंडलोई, मोहनलाल कामदार, ठाकुर भवानी सिंह और वकील चिमन लाल व्यास। इसके बाद राजा बख्तावर सिंह पर मुकदमा चला।
5: देखते हैं भाई, आज राजा बख्तावर सिंह के साथ क्या न्याय होता है।
6: अरे, इन फिरंगियों से न्याय की आशा रखते हो तुम? राजा को लड़ाई में मात तो नहीं दे पाए और चले हैं न्याय करने।
5: तो क्या ये अदालत भी सब झूठी है?
6: अरे, फिरंगियों की अदालत कभी सच्ची हुई है क्या?
5: तो फिर ये नाटक क्यों?
6: ये तो इन्हें करना ही पड़ता है, वरना ये हम पर शासन कैसे कर पाएंगे।
7: ऑर्डर, ऑर्डर, ये क्या हो रहा है?
8: योर ऑनर, यदि आपकी आज्ञा हो तो राजा बख्तावर सिंह पर लगाए आरोप पढ़ दूं।
7: आरोप पढ़े जाएं।
8: राजा बख्तावर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने भोपावर के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट तथा यूरोपियनों को भोपावर सरदारपुर से भागने के लिए मजबूर कर दिया। यही नहीं, भोपावर और सरदारपुर छावनियों को लूटा और उनकी संपत्ति नष्ट कर दी।
7: राजा बख्तावर सिंह, तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है?
1: मैंने अपने राज्य से दुश्मनों को भगाया है। अपने राज्य की रक्षा करने के लिए हर राजा ऐसा ही करता है। मैंने कोई गलत तो नहीं किया?
7: हम तुमसे जानना चाहते हैं कि क्या तुमने ऐसा किया।
1: हाँ, मैंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ऐसा किया। ये मेरा कर्तव्य था, इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं।
7: यदि तुम्हारे खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाएं, तो तुम्हें फांसी हो सकती है, जानते हो?
1: अच्छी तरह से जानता हूँ। इससे ज्यादा तो आप कुछ दे नहीं सकते।
7: क्या बकते हो?
1: बक नहीं रहा हूँ जज साहब, सच कह रहा हूँ। आप लोग किसी को जीवन तो दे नहीं सकते, पर उसे मौत अवश्य दे सकते हैं। इससे अधिक आप कुछ कर भी नहीं सकते।
7: तुमने विश्वासघात किया है, खुले आम विद्रोह किया है।
1: विश्वासघात आपने किया है जज साहब। संधि प्रस्ताव भेजकर मुझे धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर चुपचाप कोई भला विद्रोह होता है? मैंने तो अपना हक छीनने का प्रयास किया है। इसे विद्रोह आप कह रहे हैं, पर मैं नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूं कि ये विद्रोह नहीं है, बल्कि अपनी बात रखने का एक सशक्त माध्यम है।
7: क्या तुम फांसी से नहीं डरते?
1: वीर फांसी से नहीं डरा करते जज साहब। आपने इंदौर में मेरे कई साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया। मेरे किसी भाई के चेहरे पर आपने मौत का खौफ देखा जज साहब। इंदौर को फांसी घर बना दिया। मेरी फांसी बेकार नहीं जाएगी, देखना मेरा लहू एक दिन अवश्य पुकारेगा।
7: तो ठीक है, 10 फरवरी 1858 को तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी।
4: राजा बख्तावर सिंह को सुनाई गई फांसी की सजा की खबर पूरे मालवा में फैल गई। लोग तो जानते ही थे कि उनके वीर और प्रतापी राजा को इसी तरह सजा मिलेगी। वे फिरंगियों की चाल को भी समझते थे। राजा बख्तावर सिंह पर कई तरह की सख्ती बरती गई। उन्हें एक अंधेरी कोठरी में रखा गया। उन्हें जमीन पर सोना पड़ता था। उनके साथ कोई न था। उनके कई साथियों को मौत की सजा दी जा चुकी थी। उनके साथियों की संपत्ति राजसात कर ली गई। राजा को बेड़ियों से जकड़ दिया गया। इस तरह से यंत्रणाओं के बीच उनके दिन गुजर रहे थे कि एक दिन उनकी माताजी उनके पास आई।
9: ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना कुंवर सा?
1: हर वीर का यही हाल होता है मासा।
9: कुंवर सा, इस दिन के लिए तो हमने आपको जन्म नहीं दिया था।
1: मैं अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूं मासा। आप एक राजा की पत्नी होने के साथ साथ अब एक शहीद की मां के रूप में जानी जाएंगी मासा। इसके लिए तो आपको गर्व करना होगा मासा।
9: बेटा फांसी पर चढ़ रहा हूं और मां गर्व करे, ऐसा हो सकता है भला?
1: अरे आप रोए नहीं मासा, वीरों की मां रोया नहीं करती।
9: तो क्या करूं, खुशी मनाऊं? खुशी तो मना नहीं सकती ना मैं।
1: आपको खुशी मनानी होगी मासा। आप शहीद की मां बनने जा रही हैं। किसी भीरू या देशद्रोह की मां नहीं है आप। बस एक ही हसरत है कि एक बार मैं फिर आपकी गोद में अपना सर रखकर सो सकूं।
9: वो तो इन सलाखों के कारण असंभव है कुंवर सा, पर तुम्हें तुम्हें तो अब माँ, भारत माँ की गोद मिल रही है, बस इसी से खुश हो जाओ।
1: अब मुझे मेरी माँ पर गर्व हो रहा है कि वो एक वीर की माँ है। माँ अब आखिरी बार मेरा चेहरा देख ले माँ। मासा बहुत ही जल्द मैं भारत माँ की गोद में सोने वाला हूँ। माँ
9: ठीक है कुंवर सा, ठीक है, चलती हूँ। आज मैं अपना लाल भारत माँ को सौंपने जा रही हूँ। भारत माँ को सौंपने जा रही हूँ।
4: और वो ऐतिहासिक घड़ी आ पहुंची। 10 फरवरी 1858 के दिन राजा बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी की सजा दे दी गई। अपने राजा के अंतिम दर्शन करने के लिए जनता उमड़ पड़ी। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी शामिल थी। अपने राजा का ऐसा हश्र वे देखना नहीं चाहते थे। राजा बख्तावर सिंह का शरीर दिन भर लटका रहा। लोग उनके शव को देखकर दहल जाते थे। जवानों की नसें फड़फड़ा जाती थीं। उनका शव शाम को उतारा गया पर उसे धरती पर नहीं लिटाया गया, बल्कि उसके शव को फांसी के खंभे के साथ खड़ा कर दिया गया। ये दृश्य देखकर प्रजा का कलेजा मुंह को आ गया। कुछ घंटों तक शव ऐसे ही खंबे के सहारे खड़ा रहा। फिर अमझेरा राजमहल के दो नौकरों को उनका शव सौंप दिया गया। इस तरह से अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाला शख्स एक लाश बनकर रह गया। लेकिन अपनी वीरता की कई कहानियां छोड़ गया राजा बख्तावर सिंह।
10: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी इज विद अस हियर। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
2: थैंक यू
1: सिस्टर। लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट, हम अगले एपिसोड में इसको दोबारा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मेरे मन की थॉट दूसरे के मन में पहुंच जाती है और दूसरे के मन की थॉट मुझ पर पहुंचती है, तो क्या जो नाराजगी भी है एक दूसरे के साथ, मतलब इतनी आसान है दूर करना या मुश्किल है?
2: नो, इट्स वेरी इजी, प्रोवाइडेड दोनों में से एक कॉन्शियसली डिसाइड कर ले कि मुझे इस रिश्ते की क्वालिटी को चेंज करना है, और फिर उसके लिए एक जो अटेंशन रखना पड़ेगा कि हमने सामने वाले के लिए एक भी गलत थॉट नहीं क्रिएट करनी है। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि सामने से एक स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। सी, एक है सिर्फ मेरी थॉट्स आपके बारे में, वो भी कई बार नेगेटिव चल रही है बिकॉज ऑफ माय संस्कार। सपोज मेरे अंदर क्रिटिकल होने का संस्कार है, मेरे अंदर जेलस होने का संस्कार है, तो फिर मेरी थॉट्स आपके लिए थोड़ी सी उस क्वालिटी की चल रही है। अब उनको ही चेंज करना, अटेंशन काफी रखना पड़ रहा है कि नहीं, ये संस्कार है लेकिन न्यू बिलीफ सिस्टम, ये है लेकिन न्यू। लेकिन जब सामने वाला भी हमारे लिए बहुत पावरफुल नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा हो, तो एक मेरी नेगेटिव एनर्जी, मेरे अपना वो संस्कार, फिर वहां से भी नेगेटिव थॉट्स। अब ये दो फोर्सेस में फिर कॉन्शियसली अटेंशन रखकर एक अच्छी थॉट क्रिएट करना, ये थोड़ा सा मेहनत ज्यादा।
1: जैसे समझो आप मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिले, ठीक है, आपने मेरी 100 फिल्में देखी हैं और कॉन्स्टेंटली आपको मुझसे नफरत है, आप मुझे कॉन्स्टेंटली कुछ नेगेटिव थॉट्स भेज रही हैं, बेकार है, कैसे रोल करता, ये आदमी भी खराब, इसके बारे में भी पढ़ा है, तो तब क्यों नहीं आती मुझ में?
2: आती है आपको तब भी।
1: कैसे आई? जब मैं आपको जानता ही नहीं।
2: आप जानते
1: आप नहीं, मुझे नहीं जानते, आपने सिर्फ मुझे सिनेमा में देखा, मेरे बारे में पढ़ा, फिर
2: लेकिन आपके बारे में सपोज, इसीलिए सेलिब्रिटी जिसको हम कहेंगे पब्लिक फिगर, जिनके बारे में बहुत लोग चिंतन करते हैं, एनी प्रोफेशन, एनी पर्सन जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग चिंतन करते हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपना। क्योंकि आपको सपोज आपके बारे में आज 500 लोगों ने सोचा, ठीक है, एक है तो 50 लोग जो आपके क्लोज कॉन्टेक्ट है, लेकिन एक है कि आप पब्लिक फिगर हैं, या आप एक टीम के लीडर हैं, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं। सपोज आप एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरपर्सन हैं, आपकी कंपनी में 1,00,000 लोग काम करते हैं। अब 1,00,000 लोगों से आप मिलते नहीं हैं, वर्कर है, सिक्योरिटी है, स्टाफ है, मैनेजर है, फिर सीनियर मैनेजमेंट है, तो बीइंग अ चेयरमैन आप सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट से मिलते हैं, लेकिन आपकी पूरी जो 1,00,000 की टास्क फोर्स है वो आपके बारे में चिंतन करती है। जो वो आपके बारे में सोचते हैं वो सारी एनर्जी आप तक पहुंचती है, वो आपके लिए क्रिएट की गई है। इट्स लाइक सेंडिंग अ मैसेज, एसएमएस किया, तो अगर 1,00,000 लोगों ने आज आपके बारे में सोचा तो 1,00,000 लोगों ने आपको एसएमएस किया।
1: सबको मैं अगर बोनस प्रॉमिस कर दूं और बाद में लगे कि इतना सारा पैसा मैं क्यों दूं 1,00,000 आदमी को, अगर इतने 10,000 भी दूं तो 10,000 लाख हो जाए, नहीं छोड़ो, नहीं दूं, और सब मुझे कुछ उम्मीद में थे, कुछ लोगों की ड्रीम्स थी या शादियां थी, ये थी, प्रॉमिस करके नहीं दूं, तो सारे जब कोसने लग जाएंगे तो उसका इफेक्ट आएगा मुझ पर?
2: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये
1: तो बिना मुझे कभी मिले भी
2: तो सब थॉट्स पहुंचेंगे आपको, सारे एसएमएस रीच करने वाले हैं, मतलब सारे मैसेजेस रीच करने वाले हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग रखते हैं और कितनी आप एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, या कितना आप अपनी स्थिति को ऊंचा रखते हैं कि आप उस एनर्जी का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। लेकिन इसका सबसे इजी तरीका है श्रेष्ठ कर्म करें, ताकि ये जो लाखों से आपको एनर्जी मिलने वाली है, क्योंकि ऑपोजिट भी तो सच है ना, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो लाखों से मिलेगा, लेकिन अगर अच्छा सोचेंगे
1: तो
2: वो भी तो लाखों से मिलेगा ना, तो वो भी तो लाखों से मिले, दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए ऐसी पोजीशन में होना, ऐसे प्रोफेशन में होना, जैसे हम लोगों ने कई बार अवेकनिंग पे भी डिस्कस किया है, जैसे मीडिया है, पॉलिटिशियंस है, कोई स्पेसिफिक पॉलिटिशियन है, कई बार कंट्री का जो लीडर है, लाखों लोग चिंतन करते हैं उनके बारे में, करोड़ों लोग चिंतन करते हैं, उसी पर मैसेजेस भी बन रहे हैं, जोक्स भी बन रहे हैं, वो डिस्कशन का एक टॉपिक बन चुके हैं, सारी एनर्जी पहुंचती है, सारी एनर्जी उस आत्मा तक पहुंचती है, ये फैक्ट है, क्योंकि दैट पर्सन इज ऑन द माइंड ऑफ सो मेनी पीपल, तो वो तो एनर्जी पहुंचेगी ही। अब डिपेंडिंग ऑन उस आत्मा ने जिस तरह का कर्म किया होगा, उनको इतने आत्माओं से उस क्वालिटी की एनर्जी मिलेगी,
1: फिर क्या होगा,
2: तो एनर्जी तो पहुंचेगी ही, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं।
1: जिन्होंने यहाँ इतनी बड़ी बड़ी टेररिस्ट की एक्टिविटीज की बॉम्बे में और कितने लोगों को, मासूम बच्चों को मार दिया, उनको करोड़ों लोगों की बैड एनर्जी पहुंची,
2: वो तो पहुंचेगी ही,
1: फिर
2: तो वो उनको अब उसको भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी ना, उस आत्मा को जिसको इतनी आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, वो आत्मा अशांत रहेगी, दुखी रहेगी, एक तो कर्म किया, एक तो वैसा कर्म किया, तो उस कर्म का फल, एंड फिर उस कर्म ने इतनी आत्मा

0: चाहे वो श्रेष्ठ कर्म है चाहे कोई और कर्म है, उनको हमेशा एनर्जी मिलने वाली है। तो वो तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हम मासेस से कैसी एनर्जी ले रहे हैं, हम जिस प्रोफेशन में हैं हम सारा दिन कैसी एनर्जी ले रहे हैं। एक टीचर है स्कूल में, वो जिस तरह के कर्म करेगी उसको कितने सारे स्टूडेंट से एनर्जी मिलती है। एक डॉक्टर है, वो जिस तरह के कर्म करेगा उसको सारे दिन में कितने पेशेंट से एनर्जी मिलती है।
1: दुआएं भी तो मिलती है ना।
0: डॉक्टर एनर्जी मींस दोनों,
1: नर्सेस को, टीचर्स को, इनको कितनी
0: एनर्जी मींस दोनों, दुआएं भी। लेकिन यही प्रोफेशन थोड़े से वल्नरेबल होते हैं कि थोड़ा सा टिप ऑफ कर जाएगा दूसरी साइड पर। एक डॉक्टर को बहुत दुआएं मिलेंगी, लेकिन वही डॉक्टर अगर थोड़ा इरिटेट हो जाए, उनमें से ठीक से बात नहीं करे, व्हेन आई एम इन पेन, अनएथिकल हो जाए, फिर उसको ऑपोजिट एनर्जी भी मिलेगी। तो एनर्जी तो वो चीज है जो सारा दिन ट्रांसमिट हो रही है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इसमें हमें और एक ध्यान रखना चाहिए कि हमें, हम औरों को एनर्जी भेज रहे हैं, हमें भी सारा दिन औरों से एनर्जी मिल रही है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जितना हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे, आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करते जाएंगे। लेट्स से मेरे बारे में 50 लोग अच्छा नहीं सोच रहे आज, ठीक है। अब वो 50 लोग अच्छा जो नहीं सोच रहे, उनके पास अलग अलग रीजंस होंगे। ये हो सकता है मैंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से 50 लोग अच्छा नहीं सोच रहे। एक हो सकता है उन 50 लोगों के अपने कोई संस्कार है,
1: जेलेसी,
0: एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, जिसकी वजह से वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे। बट एनीवेज वो एनर्जी तो मेरे पास आ रही है। अब अगर मैं वीक हो जाऊं, वल्नरेबल हो जाऊं, तो फिर वो सारी एनर्जी मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी एंड आई विल फील वेरी लो। अब मुझे ये ध्यान रखना है ना, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं नजर लगी, किसकी नजर लगी, ये ऐसा हुआ ना क्योंकि किसी की नजर लगी। नजर लगी मतलब क्या, किसकी नजर लगी मतलब किसी ने मुझे देखकर या मेरी सफलता को देखकर या मेरी किसी प्राप्ति को देखकर एक अच्छी थॉट नहीं क्रिएट की। ओके फाइन, आप दूसरे की नजर को नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि नजर लगी। अगर किसी ने अच्छी नजर नहीं क्रिएट की, हमने अपने को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया था।
1: ये कैसे करना है,
0: जितना पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि मुझे नजर लगी, नजर लगी मतलब आई एम सेइंग कि मैं तो हूं कमजोर, वल्नरेबल, जो जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचेगा वो मेरे ऊपर प्रभाव डाल देगा। यही पहली बात, मैंने अपने आप को वीक कर दिया। अब दुनिया की सोच को तो नहीं बदल सकते। अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ अचीव कर रहे हैं, हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट भी करें साथ में कि सब लोगों को उस चीज को देखकर खुशी होनी चाहिए। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा ना कि कंपटीशन लोग फील करते हैं, कंपैरिजन फील करते हैं, तो वो औरों की सफलता को देखकर अच्छी थॉट नहीं क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि उनको नहीं मिली वो। अगर उनको भी मिल जाती वो हमारी खुशी में खुश होते, लेकिन उन्हें नहीं मिली तो उनका जो फेलियर है वो उन्हें हमारी सक्सेस को देखकर खुश होने नहीं दे रहा है। अब उनकी सोच हमारे लिए ये है कि क्यों इतना इनको मिला, इन्होंने इतनी मेहनत भी नहीं की, ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। अब अगर मैंने भी ये थॉट क्रिएट कर ली कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, लोग मुझसे जेलस हैं, तो मेरी भी स्थिति कैसी हो गई, वीक। व्हेन आई बिकम वीक, अदर पीपल्स वीक एनर्जी विल अटैक मी। अगर कोई मेरे पर कुछ फेंक रहा है, मुझे अपना दरवाजा नहीं खोलना है। सपोज मैं आपके घर के बाहर खड़े होकर कोई जोर से चीज फेंक, तो आप एक ही ध्यान रखना है, अपना दरवाजा खिड़की
1: बंद करें,
0: बंद रखना है। आप दरवाजा खिड़की खोलेंगे और कहेंगे कोई लोग मेरे ऊपर कुछ फेंक रहे हैं, और बाहर झांकने जाएंगे देखने के लिए कि क्या लोग फेंक रहे हैं, देन इट हिट्स, देन इट विल हिट। लेकिन वो जब हिट करेगा, वो थॉट हमने क्रिएट की विच विल बिकम अ रियलिटी फॉर मी। मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन नजर लगी है, इसलिए अच्छा नहीं होने वाला है, इसीलिए अब प्रॉब्लम आने वाली है, इसीलिए
1: सिर्फ इतना ही सोचना कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगती है, ऐसे सोचने से थोड़ी रुक जाएगा वो।

0: कोर्स रुकेगा।
1: मैं सिर्फ खिड़की बंद नहीं करूं, बोलो बंद है बंद है बंद है।
0: खिड़की तो बंद कैसे करें? खिड़की बंद करना मतलब मेरी एक भी नेगेटिव थॉट नहीं होनी चाहिए। मीन्स व्हाट? आई विल फोकस ऑन माय वर्क, व्हाटएवर वर्क, मनी, पोजीशन, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है मैं अपने उस पे करूं। अगर दूसरों को देख उसको देखकर अच्छा नहीं भी लग रहा, आई अंडरस्टैंड दे आर नॉट हैप्पी, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको नहीं मिला है तो उनके प्रति कोई
1: नफरत
0: नहीं,
1: कंपैशन होना चाहिए।
0: कंपैशन नहीं होना चाहिए कि दूसरे को नहीं मिला वो?
1: हाँ,
0: कंपैशन नहीं होना चाहिए कि सामने वाला
1: मेहनत की।
0: सपोज आप एक एक्टर बने लेकिन दूसरा नहीं बना, वो आपको देख रहा है बार बार, उसने भी बहुत मेहनत की, उसके अंदर भी एक डीप डिजायर थी वो बनने की, उसने भी सब कुछ अपना घर छोड़ा, सब किया, आया, आपकी तरह ही मेहनत की, लेकिन वो नहीं अचीव किया तो वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन मतलब लो फीलिंग में चले गए कि मैंने आई एम अ फेलियर इन लाइफ, मेरे से नहीं हुआ, इनको कैसे मिला, मुझे भी मिल जाता जो इनको मिला है, इन्होंने तो उतनी मेहनत भी नहीं की, ये तो उतने नहीं अच्छे केपेबल है जितना मैं केपेबल, यू नो दिस इज नजर, ये नजर ये होती है, ये नजर है। तो ये थॉट्स लोग हमारे लिए क्रिएट करेंगे, कैन वी स्टॉप देम फ्रॉम थिंकिंग लाइक दिस?
1: तो इसका कवच कैसे पहने?
0: इसका कवच है कि हम उनकी क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं क्रिएट करें। एनर्जी को एनर्जी काटेगा, एनर्जी को एनर्जी काटेगा। अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव सोच रहा है, मुझे उसकी क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है, विच मीन्स फियर नहीं, फर्स्ट फियर नहीं, दूसरा उसके प्रति नफरत नहीं। एंड अगर फियर की बजाय कॉन्फिडेंस कि हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, वी विल पुट इन आर बेस्ट एनर्जी, एंड उनके प्रति कंपैशन, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जब स्ट्रांग हो जाएगा तो बाहर की एनर्जी की इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। प्रोटेक्शन पर फोकस रादर देन वल्नरेबल कि क्या करे। अच्छा, नजर लगी, काला टीका लगाओ। काला टीका क्या करेगा? काला टीका क्या करेगा? सोच को रोक देगा, ये करो वो करो। वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग फिजिकल, चलो करो करो सारी फिजिकल चीजें, लेकिन साथ में यहां भी तो चेंज करो ना। सिर्फ फिजिकल चीज तो नहीं प्रोटेक्ट करेगी। आज ये लाओ, ऐसे करो, नजर उतारो, नजर ऐसे नहीं उतरेगी, ये नजर नहीं उतरेगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जिसने नजर लगाई थी, मतलब जिसने गलत सोचा था, वो अभी भी सोच रहा है। अगर आपको उसकी सोच को ब्लॉक करना है ना, बेसिकली आपको वो सोच को ब्लॉक करना है, तो सोच को ब्लॉक करने के लिए सोच ही भेजनी पड़ेगी। सोच कोई फिजिकल चीज से नहीं ब्लॉक हो सकती। हाँ, जो चीजें हैं उनकी एक एनर्जी फील्ड होती है, लेकिन वो कितनी एनर्जी फील्ड होगी उसकी? मोस्ट पावरफुल एनर्जी फील्ड तो मेरी अपनी सोच है। हम क्या कर रहे हैं, जो फिजिकल चीजें वो यूज तो कर रहे हैं, विच इज ओके, लेट अस यूज कि क्या हमें फिजिकल, लेकिन साथ में हमारी एनर्जी फील्ड कौन सी है? हमारी भी नेगेटिव है। जब हमारी एनर्जी फील्ड नेगेटिव होगी, मतलब फियर की है सपोज, तो हम अगर ये फिजिकल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगाएंगे भी, ये कितना इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे ऊपर, ये कितना प्रोटेक्ट करेंगे हमको? तो अगर जो भी हम कर रहे हैं, यू नो रिचुअल या जो भी मेथड फिजिकल प्रोटेक्शन का, वो तभी यूजफुल होगा जब उसके साथ साथ सोच को ब्लॉक करने के लिए सोच भी उतनी पावरफुल होगी।
1: अगर मुझे विश्वास है कि ये मुझे यहाँ धागा बांध देंगे या एक तावीज पहना देंगे तो मुझे कोई असर नहीं हो सकता, 100% मुझे विश्वास है, तो मेरा विश्वास काम नहीं करेगा?
0: आप पहन लेंगे ना, इट्स ओके। अगर कोई भी चीज आप पर फेथ है कि ये पहनने से मुझे नहीं होगा, आप पहन लीजिए।
1: पहनने के बाद मेरा जो विश्वास है,
0: absolutely,
1: मेरी एनर्जी बदल जाएगी,
0: परफेक्ट,
1: अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता,
0: अब मुझे कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन कॉन्स्टेंटली अपनी थॉट्स को चेक करना, एक
1: डाउट तो नहीं?
0: नहीं, उस पे डाउट नहीं होता है। जो किया उस मेथड पे डाउट नहीं होगा, बिकॉज आपने कहा उस पर कम्प्लीट फेथ है। लेकिन एक फियर कि वो लोग कुछ और तो नहीं अब करेंगे, वो कुछ और तो नहीं कर देंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं,
1: क्या तकलीफ है, मैंने क्या बिगाड़ा?
0: यस, एंड वो इतने बुरे हैं, आपको वो लोग अच्छे तो नहीं लगेंगे ना जो आपको कर रहे हैं। फिर तो फिर हमारी सोच कैसे हो गई? इसीलिए जो कर रहा है उसके प्रति जब तक कंपैशन नहीं क्रिएट होगा तब तक हमारी सोच ऊंची नहीं उठेगी. सी बेसिकली सामने वाले की जो सोच है उसकी क्वालिटी बहुत नीचे चली गई है ना. दूसरे के सुख में दुखी होना मतलब हमारी एनर्जी बहुत लो लेवल की हो गई है. अब मुझे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी लेवल को नॉर्मल की डेफिनेशन से थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ेगा, विच मीन्स कोई मेरे लिए अगर गलत सोच रहा है मैं उसके लिए भी अच्छा सोचूं. ये है अपनी थिंकिंग को ऊंचा उठाना. जिसने ये कर लिया उसके ऊपर नजर नहीं लगेगी और उस वो आत्मा क्या करेगी, क्योंकि ये करने के लिए हम मेडिटेशन यूज करते हैं. अपने आप से हम अपनी थिंकिंग को इतना ऊपर नहीं ले जा पाते तो हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं. जैसे ही आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा तो आपके ऊपर किसकी नजर पड़ी?
1: परमात्मा की.
0: अब अगर आपके ऊपर परमात्मा की नजर पड़ चुकी तो आपको किसकी नजर लग गई?
1: परमपिता परमात्मा की.
0: परमात्मा की नजर लग गई, अब किसकी नजर लगेगी उसके बाद?
1: पावर मिल गया.
0: वाई ऑलवेज लुक एट ऑल द पीपल जिनसे हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है. हमारे को बहुत सारे लोगों से पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, पर हमारा फोकस कहाँ जाता है? लेट्स से आज आपके घर में कुछ अच्छा हुआ है ना, एक अचीवमेंट, एक सफलता, एक कोई भी चीज, आपको सक्सेस मिली है इन एनी वे. आपके आसपास लेट्स से 100 लोग हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब. अब 100 में से 80 लोग, 80 पीपल आर वेरी हैप्पी फॉर यू. वो बहुत जेन्युइनली अंदर से खुश हैं आपकी खुशी को देखकर. 20 पीपल लेट्स से आर लिटिल नॉट हैप्पी बिकॉज उनको नहीं मिली है. उसमें से भी हो सकते हैं 4-5 लोग जिनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है. लेकिन अब आप देखो हमारी अटेंशन किस तरफ जाती है. हमारी अटेंशन जाती है उन लोगों की तरफ जिनकी नजर हमारे लिए अच्छी नहीं है. अब वो थॉट क्रिएट करने से हमारी अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. नेगेटिव नेगेटिव. जब हमारी स्थिति नेगेटिव हो जाएगी, जो 80 लोग हमारे लिए अच्छा भेज रहे हैं उसकी एनर्जी को तो हमने रिसीव ही नहीं किया ना. फिर हमारा सारा फोकस किसकी तरफ चला गया? जो हमारी तरफ नेगेटिव भेज रहा है. क्रिएट अ थॉट. ठीक है, कुछ लोगों को खुशी नहीं हुई है, लेकिन व्हाट अबाउट वो 80 लोग जो मुझे इतनी दुआएं भेज रहे हैं आज? क्या वो नजर मेरे ऊपर काम नहीं करेगी? अगर नजर लगती है, अगर
1: तो दुआ भी लगती है.
0: नजर वो भी तो एक नजर है. ये एक अच्छी नजर है, ये थोड़ी सी नॉट अच्छी नजर है. अगर हम इस बात में बिलीव करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नजर लगती है तो सबकी नजर लगती है. फिर
1: लास्ट टाइम आपने कहा था कि कुछ भी किसी को देने के समय पहले वो क्रिएट हम करते हैं, प्यार हो, नफरत हो, गुस्सा हो. जब मैं प्यार क्रिएट करता हूं तो सबसे पहले मुझे मिलता है, जब गुस्सा क्रिएट करके आपको देता हूं तो सबसे पहले मुझे लगता है. तो इसी तरह जब मैं बुरी नजर किसी को देता हूं तो क्या वो सबसे पहले मुझे नहीं लगेगी?
0: वो सबसे पहले हमें ही लगेगी ना.
1: अगर वो सबसे पहले मुझे लगेगी तो मैं ये कंपैशन करूं कि यार ये इतनी बुरी सोच मेरे बारे में सोच रहा है, ये कितना दुखी होगा अंदर से, और इसके बाद इसको वो जब लगेगी उसकी और कितना पाप क्रिएट कर रहा है कार्मिक अकाउंट. भगवान इसकी मदद करो, मैं इसे माफ करना चाहता हूँ.
0: इज दैट ओके? दिस इज परफेक्ट. अब आपने क्या किया कि जिसने आपके लिए अच्छा नहीं सोचा आपने उसको दुआ दी. ये दुआ करे ना उसके लिए कि ये आत्मा खुद कितने दर्द में होगी जो वो इस तरह से ऐसा सोच रही है मेरे लिए, कुछ कर भी रही है गलत मेरे ऊपर, तो ये आत्मा खुद कितने दर्द में होगी.
1: मुझे कभी उस दिन पंडित मिला था, वो कहने लगा कि सुरेश भाई ये जो ब्लैक मैजिक है वो हम दूसरे को घिराने के लिए करते हैं इलेक्शन में, लोग फलाना हारना चाहिए. मैं वो नहीं जानता कि वो जो मैजिक वैजिक करने वाले लोगों का क्या असर होता है, लेकिन करवा तो मैं रहा हूँ ना, तो मुझे उसका क्या मिलेगा?
0: जो आत्मा, जो व्यक्ति ये करने तक पहुंच जाता है, मतलब उसकी अपनी स्थिति की रिफ्लेक्शन तो आप देख लीजिए पहले. मैं आपका नुकसान करने तक सोच लूं, अपने नुकसान से मैं दुखी हूं इज ओके. मुझे अपनी अप्राप्ति, असफलता से आपसे ईर्ष्या भी हो रही है, विच इज ऑल्सो ओके. मुझे आपकी सफलता पसंद नहीं आ रही, तब तक भी ठीक है, लेकिन मैं आपकी सफलता को रोकने के लिए कुछ तरीके अपनाओ, विच मीन्स मेरी स्थिति कितनी लो चली गई है, तो मेरे मन की खुशी तो मतलब खुशी हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी नीचे तक सोच चली गई दूसरे को गिराने के लिए. तो अपनी स्थिति इतनी लो है, पहले तो स्थिति लो, उसके बाद कर्म में ले आए उसको. एक होती है सोच, एक होता है उसको कर्म में ले आना, जो हमने पहले देखा बीइंग, डूइंग एंड देन बिकमिंग. तो बीइंग तक था, पहले तो सोच में था, यहां तक भी सोच लेंगे इनका अच्छा नहीं होना चाहिए,
1: क्यों नष्ट कर दो इनको,
0: इन्होंने कुछ इतना नहीं,
1: खत्म हो जाए,
0: सोच हो जाए,
1: ये हो जाए, लॉस हो जाए,
0: इतना तक भी अगर सोच लिया, लेकिन अभी वो सोच लेवल पर है. लेकिन तो भी हम कहेंगे ना, कैसा सोचते हैं किसी के लिए. लेकिन अगर कर्म में भी ले आए कि किसी के लिए गलत कर दिया, इतना असफल करने के लिए किसी को, मतलब मेरी अपनी स्थिति कितनी दर्द में है. एक तो अभी मेरी स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि मैंने उतना लो फील किया तब कर्म किया, फिर कर्म का मुझे फल तो मिलना ही है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मुझे मिलेगा. दूसरे की सफलता को ब्लॉक कर दिया, दूसरे को दुख दिया, उसके परिवार में, बिजनेस में, जीवन में कठिनाई अगर जान पूछ के डाली, ताकि उनकी सफलता, उनकी खुशी में रुकावट आए, तो मैंने पता नहीं अपने कितने जन्मों के लिए खुशी और सफलता को ब्लॉक कर दिया.
1: इस जन्म में नहीं मिलेगा,
0: इस जन्म में तो अभी वो ऑलरेडी खुश नहीं है, तभी तो ये कर रहे हैं, नहीं तो कोई कर ही नहीं सकता ना ऐसे किसी के लिए. आप सोचो, इट रिक्वायर्स, मतलब आपकी लॉजिक आपको पूरी तरह से फिनिश करनी पड़ती है ऐसा कुछ करने के लिए. आपकी कॉन्शियंस को आपको टोटली, विवेक तो अंदर आवाज तो देगा ना कोई, लेकिन उस विवेक को कम्प्लीटली हमने दबा दिया है कि मेरे को ईर्ष्या जो मेरी है उसने मेरी लॉजिक के ऊपर इतना हावी हो गई है, तो अभी तो मेरी स्थिति बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही खुशी और चैन नहीं हो सकता है.
1: हम लोगों को तो पता नहीं चलता कि अगला आदमी दुखी है.
0: जिसने कोई ऐसा कर्म किया, नॉट नेसेसरी ब्लैक मैजिक और एनीथिंग, लेकिन कुछ ऐसे ही कर दिया, किसी को बोल के किसी का काम रुकवा दिया, यू नो, इवन स्मॉलर थिंग्स लाइक दिस, वो अपने जीवन में खुशी और सफलता को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट हो गया.
1: क्या ये आदमी जो ऐसे करते हैं, ब्लॉक करवाने वाले, ब्लैक मैजिक करवाने वाले, दूसरों को बद्दुआएं देने वाले, जलने वाले, वाकई अंदर दुखी होते तब करते हैं?
0: जेलेसी, ईर्ष्या एक अग्नि की तरह है अंदर. ईर्ष्या हो रही है दूसरे के सुख को देखकर. ईर्ष्या हमेशा दूसरे की सफलता को देखकर होती है ना, और किसी बात से ईर्ष्या कैसे होगी? सपोज कोई फिजिकली बहुत अच्छा है दिखने में, किसी के पास पैसा बहुत है, किसी के पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, किसी के पास अचीवमेंट्स बहुत हैं, मुझे किसी का सुख देखकर अच्छा नहीं लगता है, तो ये कार्मिक अकाउंट सिर्फ ईर्ष्या में ही क्रिएट होता है, ये किसी और इमोशन में नहीं क्रिएट हो रहा है. अब हमें ये समझना होगा, सपोज आई एम जेलस ऑफ यू, ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आई एम जेलस ऑफ यू, मैं आपके बारे में गलत बोलूंगी, कोई गलत बातें भी फैलाऊंगी, कोई एनर्जी क्रिएट करूंगी, तो आपको लगेगा आप विक्टिम है, क्या इतनी मेहनत करके इतना प्राप्ति हुआ फिर भी आपके बारे में मैं गलत फैला रही हूँ, तो आप विक्टिम है. एक्चुअली आप विक्टिम नहीं है, मैं विक्टिम हूँ, बिकॉज मेरी स्थिति कितनी कितनी कितनी दुखी है, मैं खुश ही नहीं रह पाते हूँ दूसरों की खुशी को देखकर. तो पहले अभी स्थिति कमजोर, फिर अगर उसको कर्म में ले आए कि आपकी सफलता को रोकने के लिए कुछ कुछ कर्म कर दिए, तो डीप कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर दिया. किसी के दुख में सहयोग देना, कहेंगे पुण्य का खाता जमा हुआ. किसी के सुख में रुकावट डालना,
1: ऑपोजिट खाता हुआ.
0: तो जितना गुणा पुण्य इसमें जमा होता है कि कोई तकलीफ में था आपने उसको सहयोग दिया, कोई सुखी था, सफल था, सब ठीक चल रहा है उनके घर में, आपने ईर्ष्यावश उसमें रुकावट डाली, ये कौन से खाते में जाएगा, ये किस कौन से लेवल का कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा? तो उस आत्मा के प्रति हमें कैसा सोचना चाहिए? कंपैशन अब नेचुरल नहीं है, कंपैशन अब उनसे क्या गुस्सा करे जो खुद ही इतने दर्द में है, उनसे क्या नाराज हो जो खुद अपने से ही इतने नाराज है.
1: वाह,
0: अपने से नाराज है, ऐसी आत्मा के प्रति कंपैशन क्रिएट करना नेचुरल होना चाहिए। और जैसे ही आप वो कंपैशन क्रिएट करना शुरू करेंगे, आप अपनी प्रोटेक्शन लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने कौन सा कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया, मैंने कौन सा क्रिएट किया, आपके सुख में
1: बाधा,
0: दुखी हुई बाधा डाली, आपने कौन सा कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया कि मैंने गलत किया आपके साथ,
1: फिर भी
0: आपने दुआ दी या अच्छा सोचा, तो आपका लेवल ऑफ कर्म इतना ऊंचा चला गया कि फिर मेरे ये लो लेवल एनर्जी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगी, वो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। और जब आपने ये श्रेष्ठ कर्म किया, आपको भी अनेक आत्माओं से इतनी दुआएं मिलेंगी कि फिर कुछ आत्माओं की बददुआएं बहुत ज्यादा असर नहीं करेंगी। सो नो फियर।
1: थैंक यू सो मच। सो लेट्स क्लोज दिस एपिसोड ऑन नो फियर।
0: थैंक यू
1: सो मच सिस्टर। थैंक यू वेरी मच।
2: द थॉट्स पीपल क्रिएट अबाउट अस विल ऑलवेज रीच अस। एनी रॉन्ग कर्मा invites negative energy from people towards us. If people are jealous of us, they will create negative thoughts for us. If we create fear, then we are creating negative energy, and we will become vulnerable to consuming their negativity. Be compassionate for them. They are jealous because they have achieved less than us. If we understand their pain and create pure thoughts for them, it will become a protective shield for us. If someone sends us negative energy, let us remember there are also a lot of people who send us blessings and pure energy. Focus your attention on the positive energy. Influence of the negative will reduce.
3: Manan se manobal tak, aastha se astitv tak. Puneri Awaaz 107.8. Khush raho, khushiyan baato.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, रियलिटी सच्ची रॉयल्टी है। आधुनिक जगत में क्या होता है कि महंगे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगा खान पान और बड़े बड़े महंगे घरों में रहने वाले लोग जो होते हैं, वही समझते हैं, उनके मन में यही होता है कि हम रॉयल बन गए। अपने आप को रॉयल बनाने और दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं आजकल, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की सोचते हैं। कभी कभी तो इंसान इसके लिए भी अपने नैतिक मूल्यों के साथ भी समझौता कर बैठते हैं। इंसान सोचता है कि जिसके पास सारी सुख और सारी भौतिक सुविधाएं हैं, वही रॉयल हो सकता है, उसी का समाज सबसे अधिक आदर सम्मान करता है। लेकिन सच्ची रॉयल्टी यह नहीं है। विचार कीजिए, कोई व्यक्ति इज्जत पाने के लिए, स्वयं को रॉयल दिखाने के लिए, अधिक धन कमाने की लालसा में गलत मार्ग पर चलता है, किसी को दुख देता है, व्यापार में किसी को धोखा देकर आगे जाने की कोशिश करता है। यदि उसके पास अथाह धन मतलब आ भी गया हो और उसके कारण समाज में ऊंचे व्यक्ति का दर्जा मिल भी गया हो, तो भी वह खुद की दृष्टि में कभी रॉयल नहीं बन सकता। बंद कमरे में वो व्यक्ति कभी खुद से नजर नहीं मिला सकता, अंदर आत्मा ने उसको संतुष्टता का अनुभव नहीं होगा। नैतिक मूल्यों की बलि देकर कोई भी यदि रॉयल बनने या दिखने का प्रयास करता है, तो वह वास्तविक रॉयल्टी नहीं है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए ये सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हम चर्चा कर रहे थे रियल्टी ही सच्ची रॉयल्टी है, इसके विपरीत क्या होता है कि सादा जीवन और उच्च विचार। जो होता है रियल्टी, वो रियल्टी ही सच्ची रॉयल्टी है। रियल्टी अर्थात सच्चाई, नैतिक मूल्यों में जो होता है मर्यादा में रहकर कर्म करना ही रियल्टी है। मर्यादा से बाहर रहकर किए गए कर्म आज नहीं तो कल दुख और पश्चाताप में बदल जाते हैं। व्यक्ति जो है स्वयं को वो दिखाने का प्रयास करता है जो वो है नहीं। कहते हैं कि मतलब वो जो भी सुखी होना इतना मुश्किल नहीं है जो जितना कि सुखी दिखना। एक कहावत है कि सदा ही सादा जो जीवन होता है और उच्च विचार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। वास्तव में जो महान और रॉयल होते हैं वे जो है वो सादगी को अपनाते हैं, अपने सादे जीवन और ऊंचे विचारों से समाज में प्रतिष्ठा बनाते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना, गुण धारण कर हर कर्म करना है। सच्ची रॉयल्टी हमारी रियलिटी अर्थात सत्यता अथवा वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है? स्वयं को, स्वयं के गुणों की, स्वयं के कर्तव्यों की। हर कर्म के तीन चरण होते हैं। पहला होता है संकल्प करना, दूसरा है उस कर्म के अच्छे बुरे परिणाम के लिए निर्णय करना, तीसरा चरण में हम उस कर्म को अंजाम देते हैं। यदि हमें रॉयल बनना है तो वह हर कर्म जो है वो पहले चरण से ही श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। और रियल अर्थात जो वास्तविक गुण है आत्मा के, उसको धारण करके उसके अनुसार हर कर्म करना पड़ेगा। आत्मा के मूल गुण जो स्वयं परमात्मा ने बताए हैं वे है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। यदि इन गुणों को धारण करके इनके अनुसार हम कर्म करें, अपना जीवन भी ऐसा ही बनाए, तो हम रॉयल बन जाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सरल व्यक्ति आडंबर से दूर होता है। अपने मन में हम अपनी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी छवि, जो अन्य व्यक्ति है उसकी एक ऐसी छवि बनाए कि जिसका स्वभाव बिल्कुल शांत है, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान अनुसार जीवन बिताता है, प्रेम भाव से सबको सुख देता है, किसी के कठिन समय में हिम्मत, शक्ति और सहयोग देता है, अपना हर संबंध पवित्रता से निभाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को रॉयल दिखने के लिए धन वैभव की आवश्यकता होगी? नहीं, उसका जो व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। रॉयल बनने के लिए उपरोक्त गुणों के साथ साथ एक और गुण है सरलता का। जो व्यक्ति ये रहन सहन, बोल, चेहरे और चलन, जीवन यापन के तरीके को और भी महान बनाता है, सरल व्यक्ति आडंबर से बहुत दूर होता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार। तो फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस कार्यक्रम में। और आज जो हम चर्चा कर रहे थे, आज का हमारा विषय है रियलिटी सच्ची रॉयल्टी है। तो आइए आगे की चर्चा हम जारी रखते हैं।

हाँ ना भी हो, पर उसका सरल और शांत स्वभाव दिव्यता की झलक दिखाता है। अगर शाही सुख सुविधाएं ना भी हो, हाँ तो भी वो व्यक्ति जो है संतुष्ट रहता है। लेकिन जो भौतिक सुख सुविधाओं की संपत्ति को ही रॉयल्टी समझते हैं, उनके मन में सदा और अधिक धन अर्जित करने की कामना रहती है। ऐसे कुछ व्यक्ति अपने से कम संपन्न लोगों से हीनता का व्यवहार रखते हैं, लेकिन जो रियल में ही रॉयल व्यक्ति होता है, उसका व्यवहार छोटे बड़े सबके साथ सभ्यतापूर्ण होता है। उनके हर कर्म में सभ्यता और सत्यता दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति के मन में सबके प्रति रहम भाव और प्रेम का भाव होता है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए उदाहरण मूर्त होगा। दुनिया में जो शाही और नवाब लोग हैं, वे महंगी वस्तुओं के बहुत शौकीन होते हैं, किंतु परमात्मा हमें बताते हैं कि महंगी वस्तु नहीं बल्कि महंगे विचारों के शौकीन बनो, यही तुम्हारी रियलिटी रॉयल्टी है। हाँ, जो रियल रॉयल्टी है वो हमें क्या करता है, हमें ऐसी रॉयल्टी धारण करने करके सबके लिए सैंपल बनना है। तो इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप नहीं कटाए रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लता किसी तारीफ के नहीं बल्कि परस्तिश के काबिल हैं। उनकी आवाज सुनने के बाद कुछ ऐसा आलमतारी हो जाता है जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। यूं समझिए जैसे कोई दरगाह या मंदिर में जाए तो वहां पहुंचकर इबादत के लिए खुद ब खुद सर झुक जाता है और आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं।

दैया री दैया।

श्याम की जय हो सियाराम की और जय हो बंबई धाम की। यह है

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में

हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम

0: होते हैं।
1: अरे वाहे मजनू,
0: लैला लैला करेगा लैला, ओ लैला लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दिवा।

0: बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत

जैसे परी, ये सुबह मस्ती भरी, यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

0: के तो ना टोटका, सब तूने हिम्मत हारी। बस में तेरे आज तक आई ना चंचल नारी। दे दे साड़ी एक छपा के बात बने अलबेले,
1: हर बात बने अलबेले।